शुभ प्रभात दोस्तों, एक नई सुबह, नई रोशनी और नए विचारों के साथ आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच, मन की स्थिरता और दिन की शुरुआत शांति और ऊर्जा के साथ करने की। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, मन को हल्का कीजिए और हमारे साथ इस सुंदर सुबह की यात्रा शुरू कीजिए। और आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य दर्शन।

0: नमः।
1: दिव्य दर्शन के इस बहुत ही पवित्र, बहुत ही सुंदर, बहुत ही महकते हुए प्रोग्राम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, टाइम एंड अगेन मैंने ये बात कही है कि ये प्रोग्राम मजाक नहीं है, ये प्रोग्राम फन नहीं है, ये प्रोग्राम हम अपने को समझने के लिए करते हैं। दिस इज सीरियस। वी शुड डाइव इनटू आवर ओन एग्जिस्टेंस एंड इन द एग्जिस्टेंस ऑफ आवर गॉड हूसोएवर इजी। आप किसी भी डेटी को चाहते हैं, पूछते हैं, वी ऑल रेस्पेक्ट दैट, बट द वेरी फर्स्ट थिंग इज अपने को तो पहचानिए, हु आर यू। सो हम लोगों को इस दुनिया में जीने के लिए, जिंदगी को चलाने के लिए, चाहे तो कह लें प्रोटोकॉल हो या सिस्टम हो या ऊपर कोई शक्ति है या एक संभावना कह लीजिए या व्यवस्था कह लीजिए, उन्होंने कुछ चीजें बनाई, उन्हीं को समझने के लिए आज हम बात करने वाले हैं ललिता लक्ष्मी नारायण मैम से। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, साधुवाद देता हूं ललिता मैम का, वेलकम करता हूं जो उन्होंने हमारी बात मानी, हमारी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। मैं ललिता मैम से रिक्वेस्ट करूंगा, मैम अपने बारे में थोड़ा सा हमारे सुनने वालों को बताएं, आप कहाँ हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू समीर जी फॉर गिविंग मी द प्रिविलेज टू बी इन दिस शो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इनिशियली मेरा जन्म पुणे में हुआ, एजुकेशन लिविंग एवरीथिंग वाज इन पुणे, गॉट मैरिड एंड सेटल्ड इन मुंबई फॉर 20 इयर्स। उसके बाद पति के जॉब के वजह से वी ऑल ऑफ अस शिफ्टेड टू बेंगलुरु। एट प्रेजेंट हम सब बेंगलुरु में हैं, बच्चे लोग यही है। एंड पर्सनली आई ऑलवेज वाज अ होममेकर, दैट इज अ वेरी वेरी रिस्पांसिबल जॉब। एंड थोड़े बहुत बच्चों को पढ़ाती भी थी, जो अगल बगल में थे वो आते थे। एंड मेरे साथ थोड़ा म्यूजिक में इंटरेस्ट है, वो भी कर लेते हैं।

0: So generally, I am leading a very peaceful life now, retired life. I pursue my passion and happy with my life. And now I have got this privilege of coming to a radio show. And that's also a big blessing from that Almighty.
1: Wow. Thank you so very much. Thank you, ma'am. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. सीरियसली पिछले दो सालों से ढाई सालों से मैं रेडियो स्टेशन को चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ. अब मुझे खुशी होने लगी है कि आप जैसे प्रबुद्ध और समझदार लोग, इंटेलिजेंसिया हैज स्टार्टेड कमिंग ऑन माय रेडियो टॉकिंग टू मी, और आप लोगों की जो बातें हैं वो अब लोगों तक पहुंच रही हैं. तो चलिए, खैर एनीवेज, इस विषय में बात करते हैं जिस विषय के लिए आज हम आपको इन्वाइट किया है हमने. सो ललिता मैम, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि स्पिरिचुअलिटी यानी कि आध्यात्म क्या मतलब है इसका? व्हाट एग्जैक्टली डू यू अंडरस्टैंड अबाउट स्पिरिचुअलिटी?
0: आध्यात्म, इट स्टार्ट्स विद समथिंग टू डू विद आत्मा. आत्मा जो हमारे अंदर है, दैट इज द लाइफ फोर्स इन आवर बॉडी, एंड वी हैव टू ऑलवेज think inwards, that is adhyatma. Go inside you and apne thoughts ko samajna. Bahar ek samaj mein aata hai, lekin andar jo hota hai wo humko khud samajna chahiye. Kyun hum aisa kar rahe hain, kyun aise log behave kar rahe hain, kyun aisa ho raha hai. That answers and all you will get from within you if you go into spirituality. For example, suppose somebody hurts you with their words or with their actions, instead of directly blaming them, aisa socho, unke jagah mein khade raho aur socho kyun aisa kar raha hai. Then you will get an answer for their behavior, and that keeps you in peace. Shanti se jee sakte hain. That is actually adhyatmic in my parlance. It may be different for different people. And it is just search peace, calm, rather than hunting for it outside you. वो मेरे हिसाब से आध्यात्मिक वो है, समीर जी.
1: ठीक है मैम, मुझे बिल्कुल ठीक से समझ में आया और हमारे सुनने वालों को भी बिल्कुल समझ में आया होगा कि जो मेरे को मिला अभी तक आपने जो कहा उसमें, कि अगर कोई व्यक्ति आपके साथ कुछ गलत कर रहा है या जैसा भी वो बिहेव कर रहा है, मे बी इरिटेटिंग, मे बी डिस्कस्टिंग, मे बी यू नो अपमानजनक कुछ हरकत है या कुछ बदतमीजी है, आपने कहा कि हमें सोचना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है. शांति से सोचिए, व्हाई दिस पर्सन इज बिहेविंग इन दिस मैनर. अब मैम, होता क्या है कि हम, मैं अपनी बात करूं एक सेकंड के लिए, मैं बहुत सीधा साधा आदमी हूं और मुझे कोई इस तरह से करे तो बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर गुस्सा ना कंट्रोल नहीं होता मैम. तो क्या होता है कि मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है ये समझने के लिए कि वो व्यक्ति ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहा है करके, उसके साथ क्या कंडीशन है, मे बी दूसरा व्यक्ति जो है वो डिस्टर्ब होगा, माइट बी फ्रस्ट्रेटेड अबाउट समथिंग एंड ही इज जस्ट ट्राइंग टू हर्ट मी. लेकिन मैम, मैं नहीं समझ पाता तो मैं गुस्से में फिर रिएक्ट करता हूँ, रिस्पॉन्सिबल नहीं होता हूँ, रिएक्ट कर देता हूँ. मैं उसको भी दो गाली दे देता हूँ, लड़ जाता हूँ. सो वहां पर हम क्या करें मैम, मुझे ये प्रैक्टिकल बताइए ना, व्हाट शुड आई डू?
0: ठीक है, अगर आप इमीडिएट रिएक्ट करते हैं ना तो बाद में आपको गिल्ट आता है,
1: आएगा,
0: पछतावा
1: आएगा.
0: तो पछतावा अगर नहीं आना है तो यू हैव टू वेट, डोंट रिएक्ट इमीडिएटली. थोड़ा शांति से वो बकने दो, जो बकते हैं बकने दो. जस्ट लिसन टू दैट एंड आफ्टर सी इट इज अ वेरी क्लोज पर्सन लाइक योर फैमिली मेंबर, फिर जाके उनको बोल सकते हैं, सी आई डिडंट लाइक व्हाट यू आर टेलिंग बट देयर मे बी सम रीजन दैट यू हैव टोल्ड. सो बाय दैट टाइम वो जो घर वाले हैं वो शांत हुए रहेंगे तब तक, एंड देन दे विल गिव अ प्रॉपर कन्विंसिंग आंसर फॉर इट. Then everything is solved. But if it is an external person whom you are not very close to और वो बोलता है, तो बोलने दो, वो बोलने दो, उसकी अपनी सोच करके छोड़ देना है. That is my way of responding. It keeps you cool. वो guilt जो होता है ना, पछतावा होता है, that is very very hurting. तो पछतावा से अलग रहना है, तो यू थिंक दैट इज वाई यू नीड दैट इंटरनल थिंकिंग. हम शांत रहे, वाई शुड आई स्पॉइल माई मूड बिकॉज समबडी इज टेलिंग दैट आई फील दैट. हर एक आदमी होने हो दैट कम्स विथ सम स्पिरिचुअल नॉलेज बिकॉज यू लर्न टू बी कंपैशनेट, यू लर्न टू बी गुड इन योर वर्ड्स डीड्स एवरीथिंग. And most of the things, all these things, we respond not because they are hurting us. We may be having some tension or stress, and at that moment we can't decipher wo kyun bol rahe hai. Hum immediate react karna hai, wo hamara soch hai, not the opposite party. To ye guilt se avoid karna hai and to proper thinking. It will give us an exact thinking, the way how we should proceed with that. That comes with adhyatmic knowledge. Normal man wo nahi aata. It comes with spirituality.
1: Okay, I get it. I get it, ma'am. Plain and simple, I'm really sorry. I would like to apologize here with my most sincere efforts. मुझे आपने जो अभी बताया उसमें मुझे मेरे काम की एक बात सुनाई थी. देखिए मैं एक्चुअली बहुत ही नॉर्मल रूटीन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मेरे रेडियो पर. तो मुझे सुनाई दिया कि अगर किसी तरह से कोई आदमी आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है सो आई शुड नॉट रिएक्ट इमीडिएटली, आई शुड जस्ट वेट. अपने एंगर को, अपने फ्रस्ट्रेशन को, अपने गुस्से को मेरे को दबा के पकड़ के बस थोड़ा सा वक्त गुजारना है. आई शुड जस्ट let this time pass for you know Correct. couple of hours maybe or couple of minutes maybe couple of days Correct. maybe
0: Correct.
1: and then somebody would come to me and some situation would happen where the things would actually be explained to me ki aisa actually is wajah se ho raha tha, acha kiya aapne react nahi kiya. This thing sounds good to me ma'am, this thing sounds good to me, ye ek achhi teaching mere ko mili, thank you so much for that. ओके अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिकल बात करते हैं. थियोरेटिकली आपने हमें बता दिया.
0: हाँ जी.
1: आपने तो इतनी प्यारी सी खूब बड़ी सी जिंदगी जी और अभी बहुत बड़ी जिंदगी और आपके सामने है. तो आपकी स्पिरिचुअलिटी की जो जर्नी थी वो कहाँ से शुरू हुई? हु टोल्ड यू अबाउट स्पिरिचुअलिटी?
0: अच्छा अभी ये ना, इट इज नॉट अ वेरी इजी क्वेश्चन एंड इजी पाथ. इट कम्स राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इन विच फैमिली यू आर बॉर्न इन टू. ये मैं अपने जिंदगी के बारे में बोल रही हूँ, इट मे नॉट अप्लाई टू एवरीवन,
1: सॉरी,
0: बट इन माई केस इट स्टार्ट फ्रॉम होम.
1: ओके.
0: मेरे घर में दादी माँ थी, पापा मम्मी, तो इन दैट फैमिली रोज पूजा पाठ करते थे. एंड जनरली समझ जी ऐसे सिखा देते थे घर में कि यू मस्ट नॉट हर्ट एनीबडी, यू मस्ट नॉट डू बैड टू एनीबडी, कुछ गलत किया तो भी एक सॉरी बोल दो. इट इज थॉट एंड इट इज नॉट बाय एग्जाम्पल, बिकॉज व्हाट द एल्डर्स डू अ चाइल्ड लर्न्स फ्रॉम दैट लुकिंग एट इट.
1: ओके.
0: तो वो सीख देख देख के हमने सीख लिया. इट इज जस्ट प्लेन सीखना, नो क्वेश्चन asked, सीख लिया. फिर बड़े होते गए, देन वी रियलाइज देर आर सर्टन टाइम्स व्हेन वी हर्ट के बाद में सॉरी बोल देते हैं. बट इन स्पिरिचुअल नॉलेज यू कम टू रियली सीरियसली थिंक ऑफ व्हाई वी शुड नॉट डू दैट, व्हाई वी शुड नॉट हर्ट, व्हाई वी शुड नॉट टेल अ लाइक, वो स्पिरिचुअल नॉलेज से मिलता है. कभी कभी झूठ ना, अच्छाई के लिए भी झूठ बोलना पड़ता है,
1: बोलना पड़ता है.
0: नहीं को महाभारत में अश्वत्थामा अतः बोला ना, अतः कुंज रहा, सो दैट वाज एक्चुअली अ लाइव लॉर्ड कृष्णा टोल्ड, बट समहाउ ही हैड टू मेक द पांडवास विन.
1: करेक्ट.
0: तो वो हुआ. तो ऐसे जगह में हम बोल देते हैं, बट लेटर ऑन वी रियलाइज दैट वो झूठ इट वाज नॉट हर्टिंग एनीबॉडी एज सच. ठीक है, बोल दिया. अभी बहुत बार बोल देते हैं हम सोचो समीर जी बोलना नहीं चाहिए. अभी किसी ने हमको बुलाया 8 बजे आओ, और हम 7:30 बजे तक घर में बैठे हैं. फिर वो लोग बुलाते हैं, बेचारे कहाँ हो, ऐसे झूठ मूठ बोल देते हैं, ट्रैफिक में फंसे हैं. बोलते देते बट वो गिल्ट होता है क्यों यार बोलना, बोलना था ना देर से उठे हुआ नहीं सॉरी बोलना था बट वो होता नहीं इमीडिएटली वी टेल दैट. व्हेन वी थिंक अबाउट ऑल दोस थिंग्स इन स्पिरिचुअलिटी वी लर्न कब झूठ बोलना है, विच झूठ इज नॉट हर्टिंग एनीबॉडी और एंड व्हाई डू वी हैव टू से दैट. सच बोल दो ना क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वो ऑब्जेक्ट पर थोड़ा डांट लेंगे हमको ये बंदा को टाइम पे आना नहीं होता है उतना ही बोलेगा ना, बट वी विल बी फ्री ऑफ दैट गिल्ट क्यों मैंने झूठ बोला. तो ये सब स्पिरिचुअल नॉलेज से आता है.
1: लेकिन मैम मतलब मैं आपसे मतलब मैं ये एक्चुअली जानना चाह रहा था कि आपको कैसे मालूम पड़ा, वेयर डिड यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग स्पिरिचुअलिटी, मॉम ने मम्मी पापा ने बोला, रिलेटिव ने या कोई गुरु कहीं पर मिल गया?
0: नहीं जी मम्मी पापा ने कुछ नहीं बोला है. सी व्हेन वी ग्रो ओल्डर वी कम अक्रॉस वेरियस पीपल एंड आवर लाइफस्टाइल चेंजेस.
1: ओके
0: अभी मम्मी पापा के घर में एक टाइप ऑफ लाइफस्टाइल होता है, शादी होने के बाद यू आर पुट इनटू अ डिफरेंट फैमिली ऑल टुगेदर, तो तभी यू मस्ट चेंज योर वेज ऑफ बिहेवियर, चेंज योर वेज ऑफ थिंकिंग. वो सब होता है, गुस्सा आता है बट वी शुडंट शो अवर एंगर टू एनीबॉडी. वो तो सी हमारे टाइम के लड़की लोग छोटे उम्र में शादी हो जाते हैं, यू हैव टू एडियर टू सर्टेन प्रोटोकॉल्स आफ्टर मैरिज. तो प्रोटोकॉल बनते रहते हैं, दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. अंदर जो स्ट्रेस होता है ना विच विल मेक यू अनहैप्पी सैड ऑल दीज थिंग्स, तो होता था. बट लेटर ऑन वी गॉट वन, हम कांदिवली में रहते थे, बॉम्बे में एक जगह है, वहां एक योगा मास्टर था.
1: ठाकुर विलेज या ठाकुर कॉम्प्लेक्स?
0: ठाकुर में नहीं, वेस्ट में थे हम.
1: अच्छा ओके,
0: कांदिवली वेस्ट में.
1: ओके
0: वो हाँ, तो योगा मास्टर के पास गए थोड़े दिन हेल्थ रीजंस के लिए गए, बट देयर आई लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक मेडिटेशन, हाउ थिंकिंग कंट्रोलिंग योर थॉट्स कैन डू वेरी मच गुड टू योर लाइफस्टाइल. तो उसमें आया, सो यू कंट्रोल योर थॉट्स, बी कूल, तो स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है और कामनेस आता है बॉडी में. तो उससे स्टार्ट हुआ. फिर बाद में आई स्टार्टेड रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स, फिलोसॉफिकल बुक्स लाइक देयर वर ग्रेट सेंट्स लाइक शिरडी के साई बाबा, उनके उस सच्चरित में बहुत सारे वेज लिखे हैं वेयर यू कैन लीड अ वेरी वेरी कंफर्टेबल लाइफ, नॉट मटीरियल थिंग्स, थॉट वाइज. सो इफ योर थॉट्स आर क्लीन देन योर लाइफ विल बी वेरी पीसफुल. सो दैट इज हाउ आई केम इन टू दिस. एंड नाउडेज आई रीड अ लॉट ऑफ बुक्स. Not that some, see, वो क्या होता है, कभी कभी books read करते हैं, but to be frank, I don't follow anyone blindly. I apply it in my life. If it is really beneficial, then I adopt it. नहीं तो मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ, ठीक है रेडी क्या हो गया. So that is continued.
1: All right. I get it. This is certainly a beautiful journey in anyone's life. Lalita ma'am jo hai yahan par hame apni life ki story bata rahi hain, lekin hum sab relate kar pa rahe hain ki kahin na kahin hum bhi wahin the, humne bhi wo saman dekha tha, samaj dekha tha, aasman dekha tha, pareshaniyan jheli thi, meditation kiya tha, somebody came into our life and then is tarike se humko samajh mein aaya. I get it. चलिए ललिता मैं आपसे परमिशन चाहूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, जिसे हम एक प्यारा सा भजन यहां पर सुन सकें और आपकी बातों पर मेडिटेट कर सकें, थोड़ा सोच सकें.

0: मैं किसी भी डेटी की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी भगवान पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमें धर्म समझाइए मैम, धर्म क्या है और वो क्या आध्यात्मिकता यानी कि स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है, सेपरेट है, व्हाट अबाउट इट? मतलब स्पिरिचुअलिटी और धर्म, रिलीजन, दोनों को जरा एक बार कनेक्ट कीजिए मेरे लिए.
1: ओके. एक्चुअली वो एक नहीं है, लेकिन आप बोले ना वो कनेक्टेड है. धर्म इज मोर ऑफ रिचुअल्स एंड रूल्स. एक एक धर्म में एक एक रूल्स होता है. इस टाइप से पूजा करना चाहिए, इस हवन करना चाहिए, ये मंदिर जाना चाहिए, वो मंदिर के डीटी में ऐसा पूजा होना चाहिए. दीज आर ऑल फिक्स्ड रूल्स विच रिलीजन टेल्स अस. स्पिरिचुअलिटी हैज नो फिक्स्ड रूल्स. इट इज इंटरनल. यू गो इनसाइड एंड सर्च फॉर पीस. धर्म अपने आप में दे शो द रूट. वो राह दिखाता है, बट स्पिरिचुअलिटी राह दिखाता नहीं है. इट मेक्स यू गो इनसाइड एंड यू फाइंड आउट द पीस. व्हाट इज गिविंग यू द पीस? दैट इज धर्म. धर्म इज डेफिनेटली, आई डोंट से इट इज सेपरेट. बोथ लीड.

0: फॉर पीसफुल लाइफ हैप्पीनेस दोनों एक ही है, बट बोथ मीन द सेम, बट द रोड इज डिफरेंट. रोड ऑफ धर्म इज यू फॉलो गुड कॉन्डक्ट, गो टू योर मंदिर जाना, हवन जाना, वो करना, ये करना, वो सब एक एक धर्म वो बोलता है. सम धर्म डोंट बिलीव इन आइडियल वर्शिप एट ऑल, दे ओनली फॉलो सर्टन सेट रूल्स. तो धर्म इज मोर ऑफ सेट ऑफ रूल्स विच यू फॉलो. स्पिरिचुअलिटी इज द इनर सर्च फॉर दैट ट्रूथ. हम क्यों है, मैं कौन हूं, वॉट इज द एम ऑफ माई लाइफ, वाई एम आई हियर, तो वो स्पिरिट आता है. धर्म विल नॉट टीच यू दैट. इट इज बाय बर्थ यू बिलोंग देयर एंड यू फॉलो सर्टेन रूल्स. वो है स्पिरिचुअलिटी, यू कैन अडॉप्ट एट एनी टाइम. धर्म इज यू आर बॉर्न विद दैट.
1: ऑलराइट जी, आई गेट इट. बहुत ही सिंपल सी शब्दों में मैम ने जो चीज बताई है, दोस्तों देखिए मैं अपना इंटरप्रिटेशन साथ साथ यहां पर बताता चल रहा हूं. एक बिल्कुल साधारण मनुष्य होने के नाते मैंने क्या समझा वो बता रहा हूं. मैम ने बताया कि धर्म जो है रास्ता है एक अच्छी जिंदगी जीने का, और स्पिरिचुअलिटी है अपने अंदर झांकना, अपने को पहचानना. मैम ने कहा ना हम कौन है, यहां क्यों है, क्या कर रहे हैं हम, ये सब जो है ये स्पिरिचुअलिटी में आ गया, आध्यात्म में, और जीवन जीने का अच्छा तरीका, स्वच्छ सुंदर पावरफुल प्योर पायस तरीका जो है वो है धर्म. धर्म हमें बताता है, मैम ने बताया धर्म के साथ हम पैदा होते हैं और स्पिरिचुअलिटी हम कभी भी अपना सकते हैं. आई फाइंड दैट इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटिफुल. दिस इज क्यूट कि हम स्पिरिचुअलिटी कभी भी अपना सकते हैं. अमेजिंग. तब बिल्कुल प्रैक्टिकल बात का एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में यहां पर आता है. मैम हम कोशिश करेंगे कि हम प्रैक्टिकल बात करें जिससे साधारण लोगों को भी ये प्रोग्राम सुन के समझ में आए, उनको ऐसा ना लगे कि कोई साधु संत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, है ना. प्रैक्टिकल बात जो मेरे दिमाग में आई मैम, आपने कहा कि स्पिरिचुअलिटी हम जिंदगी में कभी भी अपना सकते हैं, ठीक है. धर्म हमारे साथ पैदा हुआ था, उसने हमें रास्ता बताया, ठीक है. नाउ प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसकी, मैं आपकी बात सुनकर आज बहुत इंप्रेस हो गया और इस प्रोग्राम को सुनकर 10 लोग और बहुत इंप्रेस हो गए और उन्होंने डिसाइड किया ऑल राइट ललिता मैम ने कहा है चलो लेट्स बी स्पिरिचुअल. ऐसा फैशन नहीं, एक ट्रेंड की बात नहीं कर रहा हूं, सचमुच उनको लगा अपनी जिंदगी को शांत करना है, यार बहुत गुस्सा आता है, लेट मी जस्ट बी पीसफुल एंड काम. तो मैम मेरे को प्रैक्टिकल स्टेप्स बताइए, हाउ कैन आई बी स्पिरिचुअल, 1 2 3 बेबी स्टेप्स मुझे बताइए ना, क्या करूं मैं.
0: ओके, द फर्स्ट स्टेप इज व्हाई डू यू वांट टू बी स्पिरिचुअल. वो क्वेश्चन पहले अपने आप से पूछ लो, व्हाई डू आई वांट, वो तो आंसर मिल जाएगा. आपको हैप्पीनेस चाहिए, स्ट्रेस फ्री चाहिए, देन व्हाट गिव्स यू हैप्पीनेस वो ढूंढो. किसी को म्यूजिक में हैप्पीनेस मिलेगा, म्यूजिक सुनने में मिलेगा, किसी को खुद गाने में मिलेगा, किसी को कुकिंग में मिलेगा. तो यू ऑप्ट फॉर समथिंग विच गिव्स यू प्योर हैप्पीनेस. उसके बाद दिस इज फॉर अ ले मैन. मैं बोलती हूँ कि ऑरेंज वस्त्र पहन के हिमालय में जाके बैठ के जप करो, दैट इज नॉट स्पिरिचुअलिटी इन माई पार्लेंस. मेरे हिसाब में घर में बैठे बैठे हाउ टू मेक योर लाइफ कंफर्टेबल एंड स्ट्रेस फ्री. तो चूज समथिंग विच गिव्स यू इमेंस प्लेजर, स्टार्ट डूइंग दैट वन बाय वन. ऐसा नहीं मुझे म्यूजिक पसंद है, खाना बनाना पसंद है, बाहर घूमना पसंद है. यू कैनॉट डू एवरीथिंग एट वन गो. स्टार्ट एट बेबी स्टेप्स. अगर म्यूजिक पसंद है, लुक आउट फॉर अ टीचर, सीखो अच्छा म्यूजिक एंड गिव अ फ्यू आवर्स और इवन अ फ्यू मिनट्स टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट म्यूजिक. वॉट इज मेडिटेशन, इट इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन ऑन समथिंग.
1: ओके,
0: अभी हमारे गुरु जी सब क्या बोलेंगे, द ओनली थिंग दैट इज परमानेंट इज अपना श्वास, ब्रीदिंग. यू नीड नॉट सर्च फॉर ब्रीदिंग, अपने आप में ब्रीदिंग होता है. बट हाउ मेनी ऑफ अस कॉन्सेंट्रेट ऑन अवर ब्रीदिंग, करते नहीं है। सांस तो हम सोने के टाइम भी सांस लेते हैं, जागते भी सांस लेते हैं, काम करके भी सांस लेते हैं, बट हाउ मेनी ऑफ अस पे अटेंशन टू अवर ब्रीदिंग। तो वो पहले सिखाते हैं पे अटेंशन ऑन योर ब्रीदिंग। ब्रीथ करते टाइम 50 जगह में थॉट जाएंगे, वापस लाओ ब्रीदिंग में। तो सेम वे व्हेन यू आर डूइंग समथिंग, कुकिंग हो, सिलाई हो, कुछ भी हो, कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। आधा घंटा अगर कुक कर रहे हैं तो उसमें कॉन्सेंट्रेट करो। मैकेनिकल जाना नहीं, इसमें हल्दी डालना, नमक डालना, मैकेनिकल है। लेकिन कॉन्सेंट्रेट अगर करते हैं तो उसमें एक जो जान डालते हैं ना कुकिंग, तो वॉट एवर यू डू कॉन्सेंट्रेट एंड डू, पुट योर हार्ट एंड सोल इन टू वॉट यू डू, दैट विल गिव यू मोर हैप्पीनेस। तो पहला सवाल है हैप्पीनेस।
1: ओके,
0: वंस यू गेट दैट हैप्पीनेस, स्ट्रेस भी निकल जाएगा। स्ट्रेस मेक्स यू अनहैप्पी, अनहैप्पीनेस गिव्स यू स्ट्रेस, तो हैप्पी हो जाएंगे। अगर हम हैप्पी है सकते हैं और बना भी सकते हैं, तो दिस इज फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप इज डू वॉट इज योर ड्यूटी। ऐसा नहीं बोझ करके वो ड्यूटी नहीं करना है। अगर हमारा ड्यूटी ये है तो करते रहो, एंड इफ यू पुट योर हार्ट एंड सोल इनटू इट, थॉट्स इनटू इट, बिकॉज फॉर मी स्ट्रेस फ्री शांत लाइफ इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पिरिचुअलिटी गिव्स यू दैट, इट गिव्स यू कॉन्सेंट्रेशन एबिलिटी। तो इट इज प्रैक्टिकल, यू डू यू विल नो इट। ये अभी सिखा नहीं सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन, यू हैव टू डू इट। बैठे रहो एक जगह में, कुछ नहीं, सुबह बैठो एक जगह में बैठो, हाउ मेनी ब्रेथ यू आर टेकिंग इन 1 मिनट, तो कॉन्सेंट्रेशन है। तो हर जॉब में, हर काम में अगर आप कॉन्सेंट्रेशन के साथ करते रहो तो ऑटोमेटिकली यू विल बी हैप्पी। हैप्पीनेस अगर आ गया तो स्ट्रेस भी नहीं रहेगा।
1: ऑफ कोर्स,
0: तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप।
1: ठीक है मैम,
0: नेक्स्ट स्टेप, सपोज यू नीड मनी। अभी मुझे मनी चाहिए चाहिए, ट्राई मींस ऑफ मेकिंग दैट मनी, फाइंड आउट व्हाट यू आर गुड एट। भगवान ने सबको कुछ ना कुछ हुनर तो दिया ही है, उन्होंने किसी को ऐसे नहीं भेजा है। कुछ टैप दैट, फाइंड आउट व्हाट यू आर गुड एट, वो करो, मनी भी मिल जाएगा। तो एनीथिंग दैट डन विद पैशन एंड द एम, क्यों चाहिए ये, तो आपको वो भी अचीव होगा। मेरे पास नहीं है, ऐसा बोल के बैठने से नहीं होगा। आई विल ट्राई टू मेक इट, आई विल वर्क हार्ड टू मेक। दिस आर स्मॉल स्टेप्स बिफोर यू रियली गो इन टू दैट स्पिरिचुअलिटी, सिट इन वन प्लेस एंड मेडिटेट फॉर हाफ एन आवर। इन एनी फैमिली वन पर्सन कैन नॉट रन अवे एंड डू दिस, बट आधा घंटा तो मिल जाएगा ना दिन में, उसमें करते रहो। तो दीज आर स्मॉल स्टेप्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑन वन थिंग, डू एवरीथिंग विद पैशन। अगर आपको अच्छा नहीं लगा करना तो उस समय मत करना, देयर विल बी अ टाइम यू विल लाइक टू डू दैट, तब करना। हर बार मूड नहीं होगा करने के लिए। अभी बैठे रहो आपको गाना गाओ बोलेगा तो नहीं गाएंगे, नहीं गाते। पोएट्री जो लिखते हैं ना, किताब लिखते हैं, उनको भी टाइम होता है। रात के टाइम पेंटिंग करते हैं, नहीं तो दे विल, वो मूड आते हैं तभी वो लोग, दे विल डू देयर बेस्ट। तो टू डू योर बेस्ट यू मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन सर्टेन थिंग। तो वॉट आई डू इज, अभी मुझे नहीं करना है, आई विल गिव माई सेल्फ टाइम, अपने आप को मैं टाइम देंगे। आई वर्शिप माई सेल्फ, वर्शिप योर सेल्फ, बी हैप्पी विथ योर सेल्फ, डोंट वरी अबाउट वॉट द अदर पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू। लोग तो सोचेंगे, वाई शुड यू वरी,
1: राइट?
0: समीर जी ये सब मेरे उम्र में मैं बोल लूंगी, बट फॉर अ यंगस्टर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस। टू स्लोली स्लोली विद स्मॉल स्टेप्स कॉन्सेंट्रेट ऑन योर जॉब, डू वॉट यू लव टू डू, इट इज हाफ एन आवर ए डे, पूरा दिन में आधा घंटा निकालो अपन जो बहुत अच्छा लगता है, विच गिव्स यू हैप्पीनेस, डू दैट। किसी किसी को ऐसे चुपचाप कुर्सी में बैठे रहेंगे, कुछ न करेंगे, उनको आराम मिलता है, दे फील फ्री, स्ट्रेस फ्री, वो भी करो। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. तो दैट इज हाउ इट बिल्ड.
1: ओके, ऑलराइट, आई गेट इट. सिंपल मेथड है, उनको ललिता मैम ने थोड़ा सा डिस्क्राइब करके एक्सप्लेन किया है दोस्तों, विच एक्चुअली मेक्स आवर थॉट प्रोसेस इजी, सिंपल एंड क्लियर. जैसा उन्होंने कहा कि अपनी पसंद का कुछ भी काम, चाहे दिन में 5 मिनट भी मिले, करिए. इस बात को तो मैं भी बहुत बहुत अप्रिशिएट करता हूँ. मैं कई कई मित्रों को बोलता रहा जो लोग गाते हैं, म्यूजिक में इंटरेस्टेड है, गुनगुनाते हैं, तो मैं उनसे बोलता हूँ, अरे यार ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि आज की दुनिया में पूरे दिन काम करते रहते हैं बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ रीजंस, फिर भी अपने लिए 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट्स यार, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू दैट 5 आवर्स, 5 मिनट किधर पे भी कोने में ऑफिस में बैठ जाओ एंड देन डू व्हाट यू लाइक, मे बी सिंगिंग है ना, थोड़ा सा गुनगुनाइए, बस उतना ही बहुत है.
0: बिल्कुल बिल्कुल.
1: और आई मस्ट थैंक यू ललिता मैम टू यू नो एनलाइटन मी फॉर दिस रीज़, फॉर दिस यू नो थिंग, बिकॉज आई एम हैप्पी अबाउट इट. मेरे को जो पसंद है ना मैम, मैं ऑलमोस्ट पूरे दिन करता हूँ, तो आई एम वेरी हैप्पी लाइक टॉकिंग टू यू, टॉकिंग टू द पीपल लाइक यू.
0: एब्सोल्युटली,
1: मुझे बहुत अच्छा लगता है. आई एम मेकिंग रेडियो प्रोग्राम्स एंड टॉकिंग टू पीपल, लिसनिंग टू देम, लर्निंग समथिंग न्यू.
0: So, and also, yeah. समीर जी मैं बोलती हूँ, मेरी बेटी तो बहुत सारी चीज करती है. उसने बोला अम्मा आप करोगी ये? मैं बोले हाँ बिल्कुल करूंगी. एंड विदाउट एनी थॉट बिल्कुल करूंगी बोल दिया. फिर बाद में आई हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट बिकॉज क्या पूछने वाले हैं आप, तो मुझे समझना आना चाहिए. एंड अनदर थिंग लैंग्वेज, देन शी सेड नहीं अम्मा हिंदी यू नीड नॉट टॉक फुल्ली इन हिंदी, इंग्लिश हिंदी मिक्स करके बात कर लो चलेगा. सर ओके होता है, बट नाउ आई एम फीलिंग वेरी वेरी रिलीव्ड. सचमुच समीर जी आपसे बात करके बहुत हल्का महसूस करती हूँ.
1: वाओ थैंक यू. अच्छा मैम सीरियसली आई एम गेटिंग अ मैसेज इन योर मैसेज फ्रॉम यू कि अगर मेरे से बात करके कोई भी थोड़ा सा रिलैक्स हो पा रहा है, रिलीव हो पा रहा है, थोड़ा सा पीसफुल हो पा रहा है, देन आई कंसिडर माई लाइफ इज वर्थ इट. हो गया,
0: एब्सोल्युटली
1: बाबा भोलेनाथ ने मेरे को सही जगह दे दिया. ओके आई एम डन, थैंक यू. चलिए
0: थैंक यू
1: मैम, थोड़ा सा रुकते हैं, विल टेक अ पॉज एंड विल लिसन टू दिस ब्यूटीफुल काम पीसफुल भजन, विल कम बैक.
0: श्योर.

0: बहुत बढ़िया मैम, थैंक यू सो मच. आपने हमें आध्यात्मिकता यानी कि स्पिरिचुअलिटी का डेफिनेशन बताया, धर्म का डेफिनेशन बताया, दोनों के डिफरेंसेस बताए, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी बताए धर्म का और आध्यात्मिकता का. देन मैंने आपसे रिक्वेस्ट की बेबी स्टेप्स बताने के लिए कि हम स्पिरिचुअल कैसे हो जाएं, वो भी आपने हमें सजेस्ट किया कि ऐसे ऐसे करें. एंड देन यू एक्चुअली मेड अस फ्री. किसी भी आपने मेरे को प्रोटोकॉल में बांधा नहीं. आपने कहा जब भी दिन में फील करो कि ये करना है उधर करो.
1: बिल्कुल.
0: गरुआ वस्त्र पहन के पहाड़ पे जाके बैठने की जरूरत नहीं है स्पिरिचुअल होने के लिए, है ना. बी अ नॉर्मल रूटीन पर्सन, काम पीसफुल पर्सन. गुस्सा आए उसको थोड़ी सी देर के लिए पोस्टपोन करो. ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात मेरे को समझ में आ रही है. आई रियली लाइक इट. एंड दोस्तों, आप लोगों के लिए भी मैं सजेस्ट करूंगा कि ये तीन चार प्रैक्टिकल एडवाइसेस जो ललिता मैम ने दी हैं, दीज आर अमेजिंगली ब्यूटिफुल टिप्स टू लिव योर लाइफ ब्यूटिफुली. अब एक और वर्ड आ रहा है मैम मेरे दिमाग में, जो आपने अभी भी थोड़ी सी देर पहले बोल भी दिया, तो आई वांट टू नो अबाउट इट.

0: मेडिटेशन ध्यान, ठीक है, मेडिटेशन ध्यान हो गया, हम ओम ओम ओम करके बैठ जाएं, वो भी एक, आई मीन आई डोंट नो, अभी आप मुझे बताएंगी। एंड प्रेयर, प्रार्थना करना, है ना, आरती गाना या कीर्तन करना या जो भी है। सो मेडिटेशन और प्रेयर में अंतर बताइए मैम, एंड क्या ये दोनों चीजें हमारे लिए जरूरी है, हमारे लिए क्यों बेनिफिशियल है, व्हाई?
1: ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। प्रेयर जो है वो भगवान से बातें करना है, एक्चुअली दिस प्रेयर। प्रेयर में हमारे स्कूल में सिखाया, इट इज अ कॉन्वर्सेशन विथ योर गॉड। अभी भगवान को कौन सा, अभी प्रेयर को एक भाषा नहीं होता है, यू ऑलवेज टॉक टू द लॉर्ड इन योर कंफर्ट लैंग्वेज। अभी माय मदर टंग इज तमिल, बट भगवान से जब बात करते हैं तो इंग्लिश में ही बात करते हैं। God give me this, God hope everything goes well, इंग्लिश में आता है, तमिल में नहीं आता है, बिकॉज एडुकेशन इंग्लिश में हुआ है ना, तो वो भाषा आता है। एंड वी हार्डली वी रियलाइज भगवान का भाषा क्या है। डज भगवान हैव अ भाषा? नो, वी जस्ट पुट अवर थॉट्स, अवर फीलिंग्स, सब भगवान के पास। व्हेनेवर वी गो टू द लॉर्ड, मोस्ट ऑफ द टाइम बिफोर, सी stage comes when first you thank the Lord for everything.
0: Correct.
1: नहीं तो हमेशा बचपन से क्या है, you go only for asking something. बच्चे लोग परीक्षा में easy paper आना चाहिए, pass होना चाहिए, मुझे अच्छा नौकरी मिलना चाहिए, घर में सब सुख शांति होना चाहिए, we only keep asking. So prayer is just talking to the Lord, give your feelings to the Lord. वो है, एंड वी हैव फुल कॉन्फिडेंस वो भगवान बेचारा वो सुन लेगा, एंड ही विल वर्क टुवर्ड्स इट, शांति देगा, एंड वी गेट दैट पीस, दैट कॉन्फिडेंस दैट भगवान हमको ठीक करेगा, दैट इज प्रेयर। यू आस्क द लॉर्ड, ही इज जस्ट लाइक अ बेचारे, तो वैसा है भगवान के साथ बात करना, द कॉन्वर्सेशन विद द लॉर्ड इज प्रेयर फॉर मी।
0: ओके,
1: मन दुख हुआ, कुछ बुरा हुआ, तो जस्ट दिया जला और भगवान को बोलो, भगवान ये हुआ है, वो है प्रेयर।
0: ओके,
1: मेडिटेशन जो है वो भगवान से कुछ मांगते नहीं है, हम अपने अंदर के थॉट्स को खोज लेते हैं, वी सर्च व्हाई दीस थिंग्स हैपन, व्हाई वी हैव टू डू सर्टेन थिंग्स, एंड देन वी ओनली of mind when we meditate, because we are concentrating only on one thing. अभी हमारे मन बहुत चंचल होता है, वो एक बार अमेरिका में होता है, अभी इधर होता है, तो it is a very very चंचल बोलते हैं ना, you can fickle. But if you meditate, that fickleness will go away. You will start thinking only on one point.
0: Okay.
1: So slowly slowly it will go on increasing. Meditation आज 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, बट इट विल लीड यू टू द सेम हैप्पीनेस एंड पीस एंड ऑल दीज थिंग्स एज अ प्रेयर। बट दोनों अलग तरीके हैं जो शांति खोज करते हैं ना, जो शांति, अभी प्रेयर ना, आज सुबह में प्रे करो, दोपहर में जाके झगड़ा भी कर सकते हैं, होता है। इन मेडिटेशन पीपल हु आर रियली मेडिटेटिव स्पिरिचुअल वो नहीं करेंगे, अपने आप में अंदर से एक कूल काम बिहेवियर आ जाता है हमें, तो उन लोग उतना रिएक्ट नहीं करेंगे, शांति से रहेंगे। प्रेयर में ऐसा नहीं होता है, सुबह वो बगल में छुरी मुंह में राम राम की जगह है, प्रेयर करेंगे, पूजा करेंगे, फिर बाद में
0: झगड़ा करेंगे,
1: नॉर्मल लाइफ दे विल लीड। बट स्पिरिचुअलिटी इज नॉट दैट, इट इज मच मच डीपर थिंग, है बहुत बहुत अंदर खोज करना पड़ता है। एंड इन स्पिरिचुअलिटी इट इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग, ये है लाइफ चेंज, इट लास्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। प्रेयर इज मोमेंटरी, अभी प्रे करो, भजन करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, इट इज मोमेंटरी, अभी खुश होते हैं, 2 दिन खुश रहते हैं, देन यू विल नीड दैट सेम भजन एंड कीर्तन एंड प्रेयर फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ हैप्पीनेस एंड शांति। मेडिटेशन इज नॉट दैट, अंदर से आता है ना, तो आप अंदर से ठीक हो जाएंगे, यू डोंट नीड एन एक्सटर्नल फैक्टर टू और सम मटेरियल टू मेक यू हैप्पी, दैट इज द स्पिरिचुअलिटी एंड प्रेयर।
0: ओके, अमेजिंग, फाइन, गुड। अगेन दोस्तों, आपने अगर गौर किया हो, ध्यान से सुना हो, तो मैम ने अगेन बहुत प्रैक्टिकली बात कही है। कोई माथे पर बहुत सारा त्रिपुंड लगाकर और टीका लगाकर बैठकर और बड़ा बड़ा धूप बत्ती जलाकर बात करने की बात नहीं की है कि प्रेयर क्या है एंड मेडिटेशन क्या है। बहुत सिंपल सी बात है। बड़ी प्यार से ढंग से उन्होंने बताया कि प्रेयर में हम मांगते हैं भगवान हमें ठीक कर दो, भगवान हमें ठीक कर दो, एंड सो मेनी थिंग्स। और मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, मेडिटेशन बहुत प्यारे बड़े खूबसूरत तरीके से उन्होंने शब्दों को कहा कि प्रार्थना इज अ डायलॉग टू द गॉड। मुझे उस बात से मैम याद आया कि वन ऑफ माय फ्रेंड लॉन्ग बैक, हिज नेम इज आनंद श्रीनिवासन अय्यर, तो वी यूज टू लिव इन, वेल, इन दैट टाउन, कानपुर में रहते थे, तो वहां पर एक टेम्पल था। सो वो कभी भी परेशान होता था, गुस्सा होता था, कुछ फ्रस्ट्रेशन होता था, वो जाके उस टेम्पल में बैठ के एंड भगवान के ऊपर, अब कौन सा भगवान उसको जाने दीजिए, इट्स नॉट वेरी यू नो रेलेवेंट हियर, वो भगवान के ऊपर खूब गुस्सा करता था, वो खूब चिल्लाता था कि बस कर लिया, आर यू हैप्पी नाउ, मेरे को परेशान कर दिया ना, अब थोड़ा मजा आ रहा होगा ना आपको। सो अभी मेरे को ख्याल आ रहा है जब आप कह रही हैं दैट ही एक्चुअली हैड बीन कम्युनिकेटिंग विद द गॉड, वो बात कर रहा था, कह रहा था मैं आपका बच्चा हूं, आई एम सैड नाउ, आर यू हैप्पी, मेरे को दुखी देख के आपको मजा आ रहा है, क्या कर रहे हो आप, व्हाई डोंट यू, यू नो, आई मीन ही वाज टॉकिंग। तो मुझे अभी
1: करेक्ट, और समीर जी ये बोलो, जब ना वो शांत हो जाएगा,
0: राइट,
1: तो ही दैट इज द मीडियम ऑफ letting out,
0: करेक्ट,
1: वो है,
0: That's the beauty. अभी मेरे को समझ में आ रहा है। Oh God, amazing. That's so beautiful. तो दोस्तों बस एक ब्रेक लेते हैं, छोटा सा, एक छोटा सा भजन के मुखड़े सुनते हैं, एंड देन वी विल कम बैक टू ललिता मैम हियर।

0: अमेजिंग, ब्यूटिफुल। तो फाइन, यहां तक हम लोगों की बात हो गई स्पिरिचुअलिटी की, रिलीजन की, प्रेयर की, मेडिटेशन की, अमेजिंगली ब्यूटिफुल। मैम बस अब हम लोग अपने प्रोग्राम के आखिरी पादान पे हैं, लास्ट स्टेज में हैं। सो आई वुड जस्ट लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि चलते चलते हमें, हमारी बात शुरू हुई थी ना मैम अध्यात्म की, यानी कि आत्मा का अध्ययन, रीडिंग अवर सेल्फ, स्टडीइंग अवर सेल्फ, हू वी आर वगैरह वगैरह। तो लास्ट में बस मुझे ये बताते चलिए कि आत्मा क्या है, व्हाट डू आई अंडरस्टैंड बाई आत्मा। कोई ऐसा अंदर टॉर्च है या दिया है या इज देयर अ पावर व्हिच विल जस्ट गो अवे व्हेन आई डाई, क्या है आत्मा, इज व्हाट?
1: ओके, आत्मा, आत्मा जो है वो अनंत है। एक्चुअली इट इज अ लाइफ गिविंग फोर्स इनसाइड एनी बॉडी। अभी इंसानी ने सब जीव में आत्मा होती ही है, होता है। ओके, so that atma is a life force.
0: Okay, okay,
1: within a body life is there. When the atma leaves, there is no life. So it is just a life giving force which moves from one body to another body. So it, as learned people said, I have read somewhere, the atma knows how long it has to stay in one body.
0: Oh, okay.
1: So wo jab, it will decide when I can leave this body. अगर वो decide कर लिया ये time में मैं body छोड़ दूंगा, so it will go and that person is no more.
0: Okay.
1: सिर्फ body रह जाता है, आत्मा चले जाता है. But it will never die. It will search for another body.
0: Oh, all right.
1: So आत्मा है. That is आत्मा. It is a life force with which every body moves, it runs, it works, it operates. That is आत्मा.
0: I get it. I get it. Oh, सच में मैम ऑन अ लाइटर पार्ट ऑफ इट, लेकिन एक साधारण इंसान को समझने के हिसाब से बोल रहा हूं, आई एम रियली रिलीव्ड एंड आई एम रियली हैप्पी टू लिसन टू दिस दैट आत्मा इज अजर अमर, इट इज नॉट गोइंग टू डाई, इट विल एक्चुअली सर्च फॉर अनदर बॉडी, राइट?
1: करेक्ट।
0: सो आई एम रियली हैप्पी दैट समीर गोयल विल ऑलवेज लिव।
1: यस, डेफिनेटली वी समीर गोयल विल लिव।
0: Wow.
1: But with another name. Samir Goyal's Atma will live with another name, okay, and another body.
0: Good. तो दोस्तों, टेक दिस मैसेज, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व हैं, आत्मा है। सो यू आर नॉट गोइंग टू डाई, यू विल ऑलवेज ऑलवेज बी हियर। अब इस पूरे प्रोग्राम को सुनकर, ललिता मैम की सारी बातें सुनकर, आप क्या बनना चाहते हैं? एक अच्छे व्यक्तित्व जो हमेशा जीने वाला है या कुछ और? डिसीजन आपके हाथ में होगा। ललिता मैम से तो सारी टीचिंग्स हमने ले ली, हम उनके बारे में सोचें, गुने, मेडिटेट।

दिव्य दर्शन को यहीं विराम देते हैं। आशा है कि ये कुछ पल आपके मन को सुकून और दिन को सकारात्मक दिशा देंगे। मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करें, अच्छे विचारों को साथ रखें और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन FM रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। एक छोटा सा चर्च और एक बड़ा सपना। स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई कहानी में। आज की ये कहानी थोड़ी अलग है, ना ये फिल्मी है ना ड्रामेटिक बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ है, लेकिन फिर भी ये कहानी इतनी पावरफुल है कि सुनते ही दिल से सीधा आसमान की तरफ देखने का मन करेगा। 1962, एक अलग इंडिया। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, साल 1962, एक नया देश अभी अभी आजादी के बाद खुद को संभाल रहा है। लोगों के पास बेसिक चीजें तक नहीं है, कई जगह लोग दो वक्त की रोटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, और ऐसे वक्त में अगर कोई बोले हमें स्पेस प्रोग्राम शुरू करना चाहिए, तो आप क्या कहोगे? सीरियसली क्या कहोगे अभी इस टाइम में? लेकिन कुछ लोग अलग सोचते हैं दोस्तों। हर जमाने में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसे वो है, बल्कि वैसे देखते हैं जैसे वो हो सकती है। और ऐसे ही एक इंसान एक दिन चलते हुए पहुंचते हैं केरला के एक छोटे से फिशिंग विलेज में, जिसका नाम है थुम्बा। एक शांत जगह समुन्दर के पास, और वहां एक छोटा सा चर्च। एक अजीब सी रिक्वेस्ट, वो इंसान अंदर जाता है और बिशप से मिलता है, और फिर वो एक ऐसी रिक्वेस्ट करता है जो शायद आपने कभी सुनी नहीं होगी। वो कहता है, क्या मैं ये चर्च बोरो कर सकता हूँ? बिशप थोड़े हैरान होते हैं। प्रेयर के लिए चाइल्ड? वो कहता है, नहीं, रॉकेट्स के लिए। सोचिए, चर्च और रॉकेट्स एक साथ। जी हाँ, एक साथ। और फिर हुआ कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अब नॉर्मली क्या होता है? इम्पॉसिबल, राइट? इम्पॉसिबल साउंड करता है। ये जगह प्रेयर के लिए है, ये काम कहीं और करो। लेकिन उस दिन एक अलग डिसीजन लिया गया। बिशप ने कहा, ठीक है, 100 दिन, और सब बदल गया। सिर्फ 100 दिन के अंदर फिशरमैन को रिस्पेक्टफुली रिलोकेट किया गया। उनके लिए नया चर्च बना, और पुराना चर्च बदल गया इंडिया के पहले स्पेस रिसर्च लैब में। प्रेयर हॉल लैब बन गया, प्रीस्ट का घर डिजाइन ऑफिस बन गया, और चर्च के पास का कैटल शेड रॉकेट वर्कशॉप बन गया। दोस्तों, ये सिर्फ जगह का चेंज नहीं था, ये सोच का चेंज था। रिसोर्सेस

कम लेकिन जुनून अनलिमिटेड। ना कोई एडवांस्ड मशीन्स, ना कोई बड़े लैब्स, ना कोई फैंसी टेक्नोलॉजी। रॉकेट्स के पार्ट्स साइकिल पर ले जाए जाते थे, हाँ साइकिल पर। आज के टाइम में जहां हम डिलीवरी 10 मिनट लेट हो जाए तो कंप्लेंट्स करते हैं, वहां रॉकेट पार्ट्स साइकिल पर ट्रांसपोर्ट हो रहे थे। सोच के देखिए दोस्तों, एक यंग साइंटिस्ट की कहानी। एक यंग साइंटिस्ट रात भर काम करता था। एक बार उसने पूरी रात एक नोज कोन को हाथ से फाइल किया ताकि प्ले लोड परफेक्टली फिट हो सके। सोचिए, मशीन नहीं हाथ से। और क्यों? क्योंकि उनके पास ऑप्शंस नहीं थे, लेकिन जुनून फुल ऑन था। 21 नवंबर 1963, एक हिस्टोरिक दिन। और फिर वो दिन आया, 21 नवंबर 1963 का दिन। पहली बार इंडिया की जमीन से एक रॉकेट उड़ा, नाइक अपाचे रॉकेट। आसमान को चीरते हुए वो ऊपर गया और ग्लोइंग सोडियम क्लाउड से रिलीज हुआ, जो पूरे केरला के आसमान में दिखा। लोग रुक गए ऊपर देखने लगे, हैरान, खुश और प्राउड। असेंबली भी रुक गई। केरला लेजिस्लेटिव असेंबली में 20 मिनट के लिए प्रोसीडिंग्स रुक गई। क्यों? ताकि सब बाहर जाकर हिस्ट्री देख सके। और ये सब कहां से शुरू हुआ? एक छोटे से चर्च से, एक फिशिंग विलेज से और एक आइडिया से। एक इंसान जो सपना देख रहा था इस सब के पीछे, जिसने गवर्नमेंट को कन्विंस किया कि एक गरीब देश भी सपने देख सकता है, एक नया देश भी स्पेस प्रोग्राम डिजर्व करता है। और हम सिर्फ जमीन तक लिमिटेड नहीं हैं, हम आसमान में चमकेंगे। सपने का स्केल बड़ा था, वो सिर्फ रॉकेट्स नहीं बना रहा था, वो एक जनरेशन बना रहा था, एक माइंडसेट बना रहा था, एक बिलीफ क्रिएट कर रहा था कि हम कर सकते हैं। और फिर कहानी थोड़ी इमोशनल हो जाती है। वो इंसान अपने सपनों का फ्यूचर देख नहीं पाया, सिर्फ 52 इयर्स की एज में वो चला गया। लेकिन उसने जो बीज बोया ना दोस्तों, वो आज भी ग्रो कर रहा है। लेगेसी जो रुकती नहीं। उसने इंस्पायर किया यंग साइंटिस्ट्स को, ड्रीमर्स को, और उनमें से एक थे एपीजे अब्दुल कलाम। और आज भी जब इंडिया आसमान की तरफ देखता है, जब भी रॉकेट लॉन्च होता है, जब भी हम स्पेस मिशंस की बात करते हैं, तो कहानी वहीं से शुरू होती है। थुम्बा, आज की सबसे बड़ी बात, ये कहानी रॉकेट्स की नहीं है दोस्तों, ये कहानी है सोच की। अगर उस वक्त लोग सिर्फ प्रॉब्लम्स देखते तो ये सब कभी नहीं होता। लेकिन किसी ने पॉसिबिलिटी देखी। और एक सवाल आपके लिए छोड़ के जाती हूं, आपकी लाइफ में कोई चर्च है, कोई सिंपल सी जगह, कोई छोटा सा रिसोर्स जिसे आप इग्नोर कर देते हो या इग्नोर कर रहे हो? क्या पता वही आपका रॉकेट लैब हो। हम बोलते हैं, यार मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, टाइम नहीं है, परफेक्ट सेटअप नहीं है। और वहां लोग साइकिल पर रॉकेट ले जा रहे थे। दोस्तों, बड़े सपने के लिए बड़ी जगह नहीं चाहिए, बड़ी सोच चाहिए। और कभी कभी एक छोटा सा चर्च भी स्पेस लैब बन सकता है। मैं हूं आपकी दोस्त, और अगली कहानी तक के लिए सपने जरूर देखिए, लेकिन सिर्फ देखना मत, उन्हें सच करने की हिम्मत भी रखना। क्योंकि याद रखिए, आसमान उनका होता है जो जमीन से उठने की हिम्मत रखते हैं। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारी हंसने का समय।
1: इंसान प्रोडक्ट नहीं खरीदता, कहानी खरीदता है। इसलिए 20 रुपए की कॉफी घर पर नहीं पीता, 200 रुपए देकर कैफे में बोलता है। यहाँ वाइब अलग है भाई।

एक किताब और एक एहसान जो जिंदगी बदल गया। दोस्तों, आज की कहानी बहुत सिंपल है, ना इसमें कोई बड़ा ट्विस्ट है, ना कोई ड्रामेटिक बैकग्राउंड स्कोर है, लेकिन फिर भी ये कहानी दिल के बहुत करीब लगती है, क्योंकि ये कहानी है इंसानियत की, दया की और एक छोटी सी मदद की जो किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। एक महान शिक्षक और उनका असर। चलिए शुरू करते हैं एक इंसान से, ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियर, एक बड़े शिक्षक, एक वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास के। लेकिन सिर्फ डेजिग्नेशन ही उनकी पहचान नहीं थी, उनकी असली पहचान थी उनका दिल। वो उन लोगों में से थे जो सिर्फ पढ़ाते नहीं थे, जिंदगियां बदलते थे। उन्होंने कई स्टूडेंट्स की फीस माफ की, स्कॉलरशिप्स दी, उन्हें सपोर्ट किया। जिन लोगों के पास सपने तो थे लेकिन रिसोर्सेज नहीं थे, दोस्तों ऐसे टीचर सिर्फ पढ़ाते नहीं, रास्ते बनाते हैं। एक किताब जो सिर्फ एक किताब नहीं थी। एक दिन एक 25 साल का लड़का अपने हाथ में एक किताब पकड़े खड़ा था, लेकिन ये कोई नॉर्मल किताब नहीं थी, ये एक अवार्ड थी, एक अचीवमेंट थी, एक सपने का सिंबल थी। इस किताब के फर्स्ट पेज पर मुदलियार सर का हैंड रिटन नोट था, एनकरेजमेंट, मोटिवेशन, बिलीफ। और उसके अंदर एक और चीज थी, एक मुरझा हुआ सा लेटर, एक लेटर जिसने सब बदल दिया। ये लेटर उसके गांव से आया था, उसके पिताजी का मैसेज था जो एक बोटमैन थे। लेटर में लिखा था, बेटा कल रात बहुत बड़ी बाढ़ आई, हमारी नाव बह गई, घर भी टूट गया, मैं संभालने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अगर हो सके तो कुछ दिन के लिए घर आ जाओ। एक तरफ सपना, एक तरफ जिम्मेदारी, एक तरफ फ्यूचर, एक तरफ फैमिली। एक फैसला जो आसान नहीं था। सुबह के 7 बजे वो लड़का खड़ा है एक सेकेंड हैंड बुक शॉप के बाहर, मूर मार्केट में। उसके हाथ में वही किताब है, दिल में कंफ्यूजन है और दिमाग में एक ही थॉट है, घर जाना है। लेकिन प्रॉब्लम, पैसे नहीं है। और सोल्यूशन, किताब बेचनी पड़ेगी। सबसे मुश्किल मोमेंट। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी आपको ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां आपको अपनी सबसे प्रेशियस चीज छोड़नी पड़ती है। वो किताब सिर्फ पेपर नहीं था, वो उसकी मेहनत थी, उसकी पहचान थी, उसका सपना था। लेकिन फैमिली के लिए वो सब छोड़ने को रेडी था। शॉप खुलती है, ओनर आता है, लैंप जलाता है, छोटी सी प्रार्थना करता है और फिर काउंटर पर बैठता है। वो लड़का धीरे से आगे बढ़ता है और किताब उसके सामने रख देता है। एक छोटी सी बात जो सब बदल देती है। ओनर किताब देखता है, हैरान हो जाता है, ये तो बहुत रेयर बुक है, बहुत डिमांड है इसकी, कितने में बेचोगे? लड़का कहता है, 150 रुपये। ओनर कहता है, ये तो कम से कम 350 की है। फिर वो किताब को खोलता है और उसे वो हैंड रिटन नोट दिखता है। वो पूछता है, ये अवार्ड मिला था तुम्हें, फिर बेच क्यों रहे हो? सच सामने आता है। लड़का अपनी कहानी बताता है, फ्लड, घर, पिताजी, जिम्मेदारियां। ओनर चुप हो जाता है, किताब बंद करता है और एक ड्रॉअर खोलता है, उसमें से पैसे निकालता है और काउंटर पे रखता है, 96 रुपीज, और वो लड़के की तरफ उसे स्लाइड कर देता है। और फिर आती है असली कहानी। ओनर कहता है, ये लो, इससे तुम्हारा ट्रैवल हो जाएगा, थोड़ा खाना भी मिल जाएगा, घर जाओ, अपने परिवार के पास रहो, ये मुश्किलें गुजर जाएंगी।
और फिर एक लाइन कहता है जो जिंदगी भर के लिए याद रह जाती है। लेकिन ये किताब, इसमें जो नॉलेज है, ये कभी रिप्लेस नहीं हो सकती। मैं इसे यहां सेफ रखूंगा, ये तुम्हारी है और तुम्हारी ही रहेगी। जब वापस आओ ले जाना, बस 96 रुपये वापस कर देना। एक छोटी सी मदद पर एक बड़ा असर। ये सिर्फ पैसे देना नहीं था, ये ट्रस्ट था, ये एम्पथी थी और ये बिलीफ था कि ये लड़का वापस आएगा और अपना सपना पूरा करेगा। और फिर कहानी आगे बढ़ती है। वो लड़का घर गया, अपने परिवार के साथ खड़ा रहा और फिर वापस आया, पैसे वापस किए और अपनी किताब ले गया। वो लड़का कौन था? वो लड़का बाद में बना APJ अब्दुल कलाम, एक साइंटिस्ट, एक टीचर, एक प्रेसिडेंट और सबसे इंपॉर्टेंट, एक इंसान। उन्होंने कई बार कहा कि उनकी लाइफ की हर अचीवमेंट ऐसे ही छोटे छोटे काइंडनेस पर बेस्ड है, ज्यादातर अननोन लोगों से मिली हुई काइंडनेस। आज का सवाल, जी हाँ, आपके साथ छोड़ के जा रही हूं एक सवाल। हम सब अपनी लाइफ में बिजी हैं, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने गोल्स, लेकिन कभी कभी किसी और के लिए 96 रुपये बन सकते हैं। किसी के लिए एक छोटी सी हेल्प किसी के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकती है। आपको नहीं पता दोस्तों कि आपकी एक काइंडनेस किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। इसलिए अच्छा बनना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा कॉन्शियस एफर्ट चाहिए। मैं हूं आपकी दोस्त और आप सुन रहे थे एक प्यारी कहानी। अगली कहानी तक के लिए, अगर मौका मिले तो किसी के लिए 96 रुपीस बन जाना, क्योंकि याद रखना, जिंदगी बदलने के लिए कभी कभी बस एक इंसान बनना काफी होता है। धन्यवाद।

चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय। ऑनलाइन शॉपिंग ने सेल्फ कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय कर दिया है। फोटो में मॉडल को देख के लगता है ये जैकेट में तो मैं हीरो लगूंगा। पार्सल आता है, मैं पहनता हूँ, मिरर के सामने खड़ा होता हूँ और लगता है जैकेट नहीं, मेरी एक्सपेक्टेशंस टाइट थी। फिर रिव्यू पढ़ता हूँ, एग्जैक्टली सेम एज शोन। तब समझ आता है प्रॉब्लम प्रोडक्ट में नहीं थी, मेरी एक्सपेक्टेशंस में थी।

देशभक्ति का जज्बा या जिम्मेदारी। स्वागत है आप सबका आज की एक और नई कहानी में। आज की ये कहानी थोड़ी दिल से है, थोड़ी सोचने वाली है और शायद थोड़ी अनकंफर्टेबल भी है। लेकिन कभी कभी जो बातें हमें अनकंफर्टेबल करती है ना, वही हमें ग्रो भी करवाती हैं। तो चलिए आज एक सवाल से शुरू करते हैं। देशभक्ति क्या होती है? क्या देशभक्ति सिर्फ एक जज्बा है या एक जिम्मेदारी भी है? क्या देशभक्ति सिर्फ स्लोगन्स में होती है या वो छोटी छोटे एक्शंस में होती है? एक वक्त था दोस्तों, जब हमारी फिल्म्स सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होती थी, वो सवाल पूछती थी और आपके साथ वो सवाल जीता था, आपके जहन में जिंदा रहता था और आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी खटखटाता था, ताकि आप उस पे एक्ट कर सकें, जिम्मेदार बन सकें। ऐसे सवाल जिनका जवाब देना आसान नहीं होता, ऐसे सवाल जिनको इग्नोर करना आसान होता है, लेकिन सामना करना जरूरी होता है। उस वक्त की देशभक्ति थोड़ी अलग थी, ना वो चिल्लाती थी ना वो प्रूव करती थी, वो बस दिखाती थी और पूछती थी। एक फिल्म आई थी स्वदेश, लेकिन आज हम उस फिल्म की बात नहीं कर रहे, हम उस सोच की बात कर रहे हैं जो उस फिल्म के थ्रू आई थी। एक सिंपल कहानी, एक आदमी जो बाहर सेटल था, कंफर्टेबल लाइफ, एसी रूम, क्लीन रोड्स, सब कुछ परफेक्ट। फिर एक दिन वो अपने देश वापस आता है और जो वो देखता है वो सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं होता, वो सच्चाई होती है, रियलिटी होती है। गांव में बिजली नहीं, पानी की प्रॉब्लम, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, नौकरियां नहीं है, लोग अपनी बेसिक नीड्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और सबसे डेंजरस चीज, लोग इस सब के आदि हो चुके हैं। दोस्तों कभी कभी प्रॉब्लम इतनी पुरानी हो जाती है कि वो प्रॉब्लम लगना भी बंद हो जाती है। यहीं से शुरुआत होती है किसी गलत चीज को न्यू नॉर्मल मान लेने की। एक मिरर जो हम सबको दिखाया गया। स्वदेश की कहानी किसी को ब्लेम नहीं करती, ना सिस्टम को ना लोगों को, ये बस एक मिरर रखती है और कहती है देखो ये है रियलिटी और तुम बताओ तुम क्या करोगे। दोस्तों ये सवाल बहुत सिंपल है, लेकिन इसका आंसर बहुत पर्सनल है और बहुत जिम्मेदारी मांगता है। हम अक्सर देशभक्ति को एक रिएक्शन के रूप में देखते हैं, लेकिन शायद देशभक्ति एक एक्शन भी हो सकती है। नारे लगाना आसान है, लेकिन रोड पर कचरा न फेंकना बहुत मुश्किल है। दूसरे देश की बुराई करना आसान है, लेकिन अपने देश को अपने हाथों से बेटर बनाना एफर्ट लेता है। छोटी छोटी बातें बड़े बड़े चेंजेस लाती है। सोचिए अगर एक गांव में बिजली नहीं है और सिर्फ कोई एक इंसान कंप्लेन ना करे बल्कि सोल्यूशन ढूंढे तो क्या होगा? एक घर रोशन होगा, फिर दूसरा, फिर पूरा गांव। दोस्तों चेंज कभी एक बार में नहीं आता, वो छोटी छोटी कोशिशों से ही आता है। और फिर आता है एक सबसे बड़ा सवाल। हम सब के पास अपनी अपनी लाइफ है, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। तो क्या हम सबको ये सब करना चाहिए? नहीं, लेकिन कुछ तो कर सकते हैं ना, अपने ही लेवल पे, अपनी ही कैपेसिटी में कुछ तो। क्योंकि देश सिर्फ गवर्नमेंट से नहीं बनता, देश हम सब से मिलके बनता है। जो बातें हम सब इग्नोर कर देते हैं, जैसे रोजमर्रा के डिविजन्स, अनटचेबिलिटीज और क्या क्या नहीं, ये सब टॉपिक्स हम अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि अनकंफर्टेबल हैं। लेकिन दोस्तों जो बातें अनकंफर्टेबल होती हैं, वही सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं। अगर हम उन्हें इग्नोर करते रहेंगे तो वो खत्म नहीं होंगी, बस चुप हो जाएंगी। अगर सिंपल वर्ड्स में बोलें तो देशभक्ति क्या है? लव फॉर योर कंट्री,
प्लस एंड माइंड यू अ वेरी बिग प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स इट. सिर्फ प्यार काफी नहीं होता और सिर्फ कंप्लेंट उससे भी कुछ नहीं होता. दोनों के बीच एक्शन होना जरूरी है. हम सब बोलते हैं ये कंट्री कब सुधरेगी, लेकिन जब सिग्नल तोड़ते हैं तो बोलते हैं चलता है, मैं जल्दी में हूं, मुझे कहीं पहुंचना है वरना ये हो जाएगा, आसमान गिर जाएगा शायद. हम सब बोलते हैं सिस्टम खराब है, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो बोलते हैं शॉर्टकट ले लेते हैं. दोस्तों, सिस्टम हम ही हैं. और आज की सबसे बड़ी बात, देशभक्ति लाउड नहीं होती, वो सटल होती है. वो स्लोगन्स में नहीं, चॉइसेस में होती है. रोज के छोटे डिसीजंस में, अपने बिहेवियर में, अपनी सोच में. एक सिंपल सवाल के साथ आपको छोड़ के जा रही हूं. आज रात जब आप अकेले हो ना, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछना, मैं अपने देश के लिए क्या कर रहा हूं. बड़ा आंसर जरूरी नहीं, लेकिन ऑनेस्ट आंसर जरूर दीजिएगा खुद को. दोस्तों, ये कहानी किसी एक फिल्म की नहीं है, ये एक सोच की कहानी है, एक अप्रोच की कहानी है, जहां देशभक्ति सिर्फ फीलिंग नहीं, एक जिम्मेदारी है. मैं हूं आपकी दोस्त और आप सुन रहे थे आज की एक नई कहानी. अगली कहानी तक के लिए अपने देश से प्यार करिए, लेकिन सिर्फ फील मत करिए, थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूट करिए. क्योंकि याद रखिए, देश परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाया जाता है. मेरा भारत महान. और नीचे छोटे शब्दों में बनाना पड़ेगा. नमस्कार.

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: सोशल मीडिया पे सबकी लाइफ बहुत शॉर्टेड चलती है। सुबह 6 बजे योगा, ग्रीन माचा, सनराइज की रील। मैं सुबह उठती हूँ 6 बजे तो मेरी सिर्फ एक ही रील चल रही होती है, मेरी बेडशीट लपेटने की रील। लोग कहते हैं ग्रेटफुल फॉर दिस ब्यूटिफुल लाइफ, मैं कहती हूँ ग्रेटफुल कि वाईफाई चल रहा है यार।

जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा, और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग। दोस्तों, आज का रंग है टैरो की सतरंगी दुनिया और मैं आपका दोस्त आलोक कुमार आपसे मुखातिब हूं। आज हमारे साथ हैं सुरभि चंद्रा, जो टैरो कम्युनिटी में चंद्रा के नाम से जानी जाती हैं। चंद्रा को टेलेटेल टैरो के नाम से भी जाना जाता है। फैशन और एपरल इंडस्ट्री में 18 साल बिताने के बाद इन्होंने अपनी कॉलिंग पाई टैरो, रेकी और क्रिस्टल की दुनिया में। पिछले एक दशक से ज्यादा समय से चंद्रा ने न सिर्फ नेबुला जैसे अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर रीड किया, बल्कि अपने क्लाइंट्स के लिए 1-to-1 सेशन भी करती हैं। उनकी रीडिंग्स सिर्फ टैरो तक सीमित नहीं है, बल्कि वो लोगों को हीलिंग की समग्र गाइडेंस देती हैं। सोशल मीडिया पर भी चंद्रा अपने कंटेंट के जरिए न सिर्फ टैरो को सिंप्लीफाई करती हैं, बल्कि उसके आसपास फैली मिथ और फियर्स को भी दूर करने की कोशिश करती हैं। दोस्तों, आज की बातचीत का मकसद भी यही है कि हम टैरो को थोड़ा समझें, थोड़ा महसूस करें और शायद थोड़ा खुद को भी पहचानें। चंद्रा जी नमस्कार, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: आलोक जी, इंट्रोडक्शन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपके सभी श्रोताओं को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं इस अवसर के लिए आपकी बहुत आभारी हूँ और इस बातचीत के जरिए अपने छोटे से सफर और अनुभव को थोड़ा बहुत आपसे साझा करने की उम्मीद रखती हूँ।
0: जी बहुत बढ़िया। चंद्रा जी, आपकी जर्नी वाकई दिलचस्प रही, फैशन इंडस्ट्री से लेके टैरो तक। हमारे लिसनर्स के लिए अगर आप शुरुआत से बताएं ये रास्ता किस तरह से बना।
1: सच बताओ तो आलोक जी, ये रास्ता कोई प्लान के तहत नहीं था, कह सकते एक डिवाइन टाइमिंग और इंटरवेंशन रहा। हालांकि ये बीच शुरू से ही थे। मैं हमेशा से एक मेरिटोरियस स्टूडेंट थी और पढ़ाई की तरफ मेरा काफी रुझान था, लेकिन ये सिर्फ एकेडमिक्स तक सीमित नहीं था। क्या है कि बचपन से मेरी क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी के साथ साथ जो मेरा इंटरेस्ट था वो स्पिरिचुअलिटी, इसोटेरिक स्टडीज या मिस्टिकल सब्जेक्ट्स, जहां मेरे दोस्त कॉस्मिक और कार्टून्स की दुनिया को प्रेफर करते थे, मैं कीरो और लिंडा गुडमैन की दुनिया में खोई रहती थी। जी जी। तो क्या हुआ कि जब करियर चॉइस की बात आई तो एक टॉपर और साइंस स्टूडेंट होने के बावजूद भी मैंने डॉक्टर और इंजीनियर ना बनना चुनकर अपने क्रिएटिव इंक्लिनेशन को फॉलो किया। और जैसे कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मैंने फैशन और अपैरल की इंडस्ट्री में कदम रखा और 18 साल तक फैशन डिजाइनर और मर्चेंडाइजर के तौर पे काम किया। तेजदामी गिरामी इंटरनेशनल ब्रांड्स है, उनके लिए मैंने काम किया। और इस दौरान मुझे दुनिया भर में ट्रैवलिंग करने का भी मौका मिला, लेकिन ये सिर्फ मेरे लिए आप कह सकते हैं कि काम ही नहीं था, लेकिन अलग अलग कल्चर्स और पर्सपेक्टिव को समझने का, सीखने का, अनुभव करने का एक मौका था। और शायद उस वक्त मुझे महसूस नहीं हुआ, लेकिन ये जो एक्सपोजर और ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग या नेटवर्किंग जो है वो आज मेरे करंट पाथ में, जो कि लाइफ कोचिंग और हीलिंग वाला जो पर्पस है, कॉलिंग है, उस जर्नी का एक अहम हिस्सा बन गया, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन गई। तो यही दिलचस्प रहा इस पूरे प्रकरण में।

0: तो देखिए, जो उस जमाने में बच्चे कुछ और तरह की किताबें पढ़ते हैं, और आप कीरो और लिंडा गुडमैन पढ़ती थी। लिंडा गुडमैन से हम लोगों का भी बड़ा जुड़ाव रहा है। मैं जब पिलानी में पढ़ता था तो बड़ा उसको पढ़ के लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश किया करते थे हम
1: हाँ, मैंने भी शुरुआत यहीं से करी थी, लेकिन वैसे
0: लोग।
1: थोड़ा इम्प्रेस
0: चलिए
1: चढ़ने से आगे चली गई मैं।
0: चलिए, तो चलिए, तो स्पिरिचुअलिटी में रुझान बचपन से था, लेकिन आपने फैशन के कैरियर को
1: कैरियर
0: चुना,
1: तौर जी
0: ये
1: जी जी
0: शिफ्ट किस तरह से हुआ?
1: आलोक जी, जैसा कि मैंने कहा, शिफ्ट कभी ड्रामेटिक नहीं था, बल्कि एक ऑर्गेनिक ग्रोथ थी। जो साइंस और सटल क्यूज थे, उन्होंने अपनी मेरी कॉलिंग की तरफ मुझे गाइड किया। एज आई सेड कि डिवाइन टाइमिंग और इंटरवेंशन ने भी अहम भूमिका निभाई। कहते हैं ना, एक दरवाजा बंद हुआ तो दूसरा खुला, और उसी दौरान मैंने, आपको जान के आश्चर्य होगा, लेकिन मैंने 2 दशकों तक एक बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी एज अ लाइफ कोच एंड अ काउंसलर काम किया।
0: अच्छा,
1: जी, और ये जो एक तरीके से जो लाइफ फिलोसफी है, वो आज मेरे काम में मेरी मदद करती है। तो एक वो बोलते ना, ऑन जॉब ट्रेनिंग की तरीके से ये सफर रहा, और एक के बाद एक कड़ी जुड़ती रही, और आज मैं आपके सामने हूँ।
0: तो यही विस्पर आपको आखिरकार टैरो तक लेकर आई है।
1: या यही विस्पर जो है, एक तरीके से मेरे अंदर की आवाज जो बन गई, जिसको मैं आई कुड नॉट इग्नोर एनी लॉन्गर, जो आपने बहुत अच्छे ब्यूटीफुली बोला उसको। और मेरा टैरो से जुड़ना एक नेचुरल प्रोग्रेशन का हिस्सा रहा। सही समय पर सही जगह पर टैरो ने मुझे ढूंढा, और मैंने टैरो को पाया, और तभी से एक नेवर एंडिंग लव अफेयर बन गया है। और इनफैक्ट जो एक चीज मैं बार बार बोलती हूँ, और जो वो ये है कि जापानीज कल्चर में एक शब्द होता है, इकिगाई, जो सिर्फ
0: हाँ,
1: जी एक शब्द नहीं, एक लाइफ फिलॉसफी है, जिसका मतलब होता है कि आप अपने हॉबी को अपना प्रोफेशन बना ले। और इसी सेंस में टैरो से मेरा परिचय हुआ, जो कि मेरा इकिगाई बना। और जो टाइमिंग की आप बात कर रहे हैं, वो ये है कि पैंडेमिक के बाद मुझे एक परफेक्ट समय मिला ना, जिसको मैं अपने कॉर्पोरेट करियर को ग्रेसफुली गुड बाय कह सकूं, और टैरो को अपना फुल टाइम ऑक्यूपेशन बना सकूं।
0: जी
1: जी आलोक जी।

0: चंद्र जी, अब हम टैरो की बेसिक्स पर आते हैं। इसके पीछे कंसेप्ट क्या है, इसके मूल में क्या है, ये थोड़ा हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए प्लीज।
1: जी जी आलोक जी, आई थिंक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि टैरो के बारे में आजकल क्यूरियोसिटी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और ये जो आपने सवाल किया है बहुत अहम है। अगर अगर सिंपल शब्दों में बोलूं तो टैरो जो है वो 78 पत्तों का, 78 कार्ड्स का एक डेक है, एक गड्डी है, जो कि एक तरीके से जो ट्रेडिशनल हमारी ताश की पत्ते होते हैं, जो हम सब जिससे हम सब वाकिफ है, वो 52 पत्तों की होती है। लेकिन टैरो में 78 कार्ड्स होते हैं, 78 कार्ड्स होते हैं, जिसमें कि 22 मेजर अरकाना और 56 जो है माइनर अरकाना कार्ड्स होते हैं। इसके बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि समय की उसको ध्यान में रखते हुए, लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो 13वीं शताब्दी यूरोप में हुई थी। और शुरू में आपको अगेन जान के आश्चर्य होगा कि इसको प्लेइंग कार्ड्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन ये ऑर्डिनरी प्लेइंग कार्ड से भिन्न इसलिए है क्योंकि इसमें ये थी एक यूनिवर्सल विजडम, कॉस्मिक विजडम पर आधारित थी, जो कि कह सकते हैं समय और सीमाओं की परे है ना। तो वो उसके बेसिस पे उसपे इंसाइट्स और गाइडेंस मिलती है। ओवर द इयर्स जो है एक आत्मचिंतन और एक भविष्य दर्शन का जो एक साधन है, टूल्स ऑफ डिविनेशन जिसको हम बोलते हैं, वो बन गया है। और आज की तारीख में जो बोलें, जो आपका सवाल है कि आज टैरो केवल भविष्य बताने के काम नहीं आता, लेकिन एक जो हमारा सबकॉन्शियस है, जो अवचेतन मन जिसको हम बोलते हैं, उसको मिरर करता है। तो कहीं ना कहीं आलोक जी अगर ये बोले कि आपकी इनसिक्योरिटीज, एंजाइटीज और इमोशंस को रिफ्लेक्ट करता है, एक आईना है टैरो, गाइड करता है कि आप किस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं और सही चॉइस करने में आपकी मदद करता है विदाउट प्लेइंग द विक्टिम कार्ड, जो कि हमारे लिए बहुत नेचुरल हो जाता है ना कि हम किसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं तो किसी और पर ब्लेम शिफ्ट कर दें, तो उसके ओवर एंड बियॉन्ड जाके आपकी आपको राह दिखाता है।
0: तो इसका तो ये मतलब हुआ कि ये भविष्य बताती है या खुद को समझने का एक माध्यम है, एक तरह से एक मीडियम है कि हम टैरो के माध्यम से खुद को भी समझ सकते हैं।
1: अब ये बहुत अच्छी बात बोली आपने और यही इसका निष्कर्ष है कि ये सिर्फ भविष्य नहीं बताता, क्योंकि एक वो उसका बहुत ही एक छोटा परिचय हो जाता है। मैं हमेशा कहती हूँ टैरो डज नॉट प्रेडिक्ट, इट रिफ्लेक्ट्स, इट गाइड्स।
0: अच्छा।
1: तो एक तरीके से आपको एम्पावर करता है ताकि आप अपने डिसीजंस और अपने इमोशंस को क्लियरली देख पाए, एक बर्ड्स आई व्यू। और जो कि मेरा फेवरेट एग्जांपल है, जैसा मुझे आप अक्सर देखोगे मेरे सोशल मीडिया पे भी कहते हुए, बोलते हुए, जिक्र करते हुए, कि टैरो एक जीपीएस की तरीके से है। ये एक आपको पाथ दिखाता है, लेकिन जैसे आप अपने गंतव्य तक कहीं पहुंचना चाहते हैं और अपनी गाड़ी में बैठे हैं, आपको एक जीपीएस सेट करना पड़ता है, करना होता है, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको ड्राइव तो करेंगे तभी आप अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे ना, उसी प्रकार से। हाँ, तो टैरो आपको रास्ता दिखाता है कि आपकी लेकिन आपकी जो चॉइसेस हैं उसके बेसिस पे वो आउटपुट आपके लिए आता है। टैरो इनसाइट्स से आप अपने पुराने पैटर्न्स को छोड़ के ना आप बेटर वर्जन बन सकते हो, अपने आप जो भी परिस्थिति में हो उससे निकलने की आप क्षमता रखते हो। तो चाहे वो स्पीड ब्रेकर्स आए या स्मूथ राइड आए, आप अपनी जर्नी को एंजॉय कर सकते हो और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हो।

0: चलिए, मैं इस सवाल से जुड़ा एक बात और पूछना चाहता।
1: बिल्कुल
0: अगर ये राह दिखाता है, तो
1: जी
0: क्या अगर राह में कोई स्पीड ब्रेकर आने वाला है, तो
1: जी
0: क्या उसके प्रति कौशन देता है हमें, कुछ इस तरह से क्या बताने की कोशिश करता है कि भाई आगे ये दिक्कत आएगी?
1: देखिए, ये जो आपने दिस इज जो आप सवाल कर रहे हैं, ये उस ये फॉर्चून टेलिंग या आपको भविष्य दर्शन के तौर पे डेफिनेटली टैरो काम करता है। हमारी बातचीत के मकसद से मैं नहीं कन्वे करना चाहती कि टैरो के को की दुनिया में या टैरो के रेल में आप बिल्कुल फ्यूचर नहीं देख सकते। आप बिल्कुल देखते हैं और देख सकते हैं, लेकिन अगर राह में आगे पत्थर आने वाला है या गड्ढा आने वाला है तो ये आपको अवेयर जरूर करता है, लेकिन अलार्म नहीं करता। कहीं भी किसी भी तौर पे आपको घबराने की और निराश होने की, हताश होने की जरूरत नहीं है। अगर वो राह पत्थर आगे आ भी रहा है तो ये साथ के साथ आपको गाइड करता है कि आप किस तरीके से आगे बढ़कर उस पत्थर को हटा पाए या उससे उबर कर आगे निकल पाए, ताकि वो पत्थर आपको विचलित ना करे। तो
0: बहुत बहुत सुंदर,
1: हाँ
0: बहुत
1: जी
0: सुंदर,
1: जी जी
0: बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन कर दिया ये। तो
1: जी
0: अब ये बताइए कि आपकी रीडिंग्स में स्पिरिचुअलिटी को किस तरह से इंटीग्रेट करती है, और इसके
1: जी
0: लिए आप पर्सनली, आपके लिए इसका क्या मतलब है? क्या आपके पास कोई गुरु या मेंटोर है जिन्होंने इस राह पे आपको गाइड किया है?
1: जी आलोक जी, मुझे लगता है कि ना सिर्फ एक टैरो रीडर या टैरो एक्सपर्ट या लाइफ कोच काउंसलर होने के बतौर, बट किसी भी आप किसी भी प्रोफेशन में हो, एक स्पिरिचुअलिटी जो है वो आपकी हम सब की जिंदगी में एक बहुत अहम रोल प्ले करती है। एक तरीके से एंकर करती है, हमको बांधती है, जोड़ती है, एक स्टेबलाइज करती है। और जो आपने पूछा उस एस्पेक्ट में भी मैं अपने आप को एक स्पिरिचुअल स्पीकर और एक प्रैक्टिशनर मानती हूँ, और मैं कॉन्स्टेंट लर्नर हूँ। इनफैक्ट मैं अपने आप को एज अ टैरो एक्सपर्ट या काउंसलर बिल्कुल आइडेंटिफाई नहीं करती। मैं बेसिकली अपने आप को एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर के तौर पे आइडेंटिफाई करती हूँ, क्योंकि मैं प्रीच नहीं करती विदाउट प्रैक्टिस ना। और जो मेडिटेटिव और स्पिरिचुअल टूल्स के माध्यम से जो ग्राउंडिंग है, अलाइनमेंट है, वो ऑनगोइंग बेसिस पे मेरी साधना है जो मुझको मदद करती है। और जैसा कि आपने पूछा, आई हैव हैड अ गुड फॉर्चून कि मुझे सदगुरु में एक स्पिरिचुअल मेंटर और गाइड मिले हैं, जो उनके बताए हुए टूल्स हैं वो मेरी साधना में एक प्रेरक भी है और मार्गदर्शक भी हैं, और मेरे काम में मेरी डेफिनेटली मदद करते हैं। और उसी लिहाज से जो टैरो रेकी और जो होलिस्टिक हीलिंग या रिचुअल और गाइडेंस मैं अपने दर्शकों को प्रोवाइड करती हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन, उसमें उसका बहुत बड़ा योगदान है। जी आलोक जी
0: आपकी ये लाइन मुझे बहुत अच्छी,
1: जी
0: स्पिरिचुअलिटी लाइफ में एंकर का काम करती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: अगर ये
1: बिल्कुल
0: बात हम लोगों की समझ में आ जाए तो क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया बात कही आपने, एंकर का काम कर। अगर
1: जी
0: आपकी जिंदगी में कोई स्पिरिचुअलिज्म आपका एंकर बन जाए, तो उससे तो बढ़िया कोई बात ही नहीं हो सकती
1: जी एग्जैक्टली
0: मेरे।
1: यही चीज है जो मैं अपने क्लाइंट्स को भी इंकरेज करती हूँ कि भाई आपको टैरो रीडिंग के लिए तो आपको आ गए, आपको रास्ता भी मिल गया, लेकिन आपको एक विशफुल थिंकिंग के ओवर एंड बियॉन्ड आपको जो टूल्स चाहिए उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसमें स्पिरिचुअलिटी बहुत बड़ी साधक होती है।
2: चलत।

0: एसेंशियली टैरो और स्पिरिचुअलिटी आपके लिए अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं,
1: वो एक दूसरे के पूरक ही आप मान सकते हैं, क्योंकि
0: सप्लीमेंट्री।
1: हाँ सप्लीमेंट्री है, क्योंकि मैं स्पिरिचुअली जब तक जब अपने आप को ग्राउंडेड रखती हूँ तभी मैं दूसरों को मीनिंगफुल और एम्पावरिंग गाइडेंस दे पाती हूँ, राइट,
0: जी
1: बिकॉज दिस इज ऑल डीलिंग विद एनर्जीज।
0: अब ये बताइए कि जो लोग टैरो आजमाना चाहते हैं लेकिन
1: जी
0: डरते हैं या
1: हाँ हाँ
0: संकोच करते हैं,
1: करेक्ट,
0: उन्हें
1: हाँ
0: आप क्या कहना चाहेंगी?
1: देखिए अब आज के तारीख में बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया प्रेजेंस एंड अवेयरनेस ना, टैरो अब जो है वो अब एक तरीके से हमारे आम घर घर की कहानी तो कहानी का हिस्सा बन रही है, या एक तरीके से जनरल परसेप्शन का एक हिस्सा बन रही है, और इसमें ये बहुत जरूरी और सुंदर सवाल हो जाता है। लेकिन टैरो को लेकर कुछ बातें समझना बहुत जरूरी है, और उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें कोई अंधविश्वास नहीं है, क्योंकि टैरो का जो परसेप्शन है, प्रोजेक्शन है, आम दुनिया में अभी भी बहुत

0: भ्रांतियां हैं इसको लेके। हाँ, तो ये कोई
1: ओके
0: अंधविश्वास नहीं है, कोई ईवल प्रैक्टिस नहीं है, इसमें डरने जैसा कुछ नहीं है। दूसरी बात ये है कि कोई ये कोई इम्पोर्टेंट है समझना हमारा हम सबके लिए, ये कोई रैंडम प्रेडिक्शन देने का टूल भी नहीं है, जो कि अनफॉर्चुनेटली ऐसी धारणा हो गई है। हाँ, कि हमारा कोई फ्यूचर, क्योंकि हमारा कोई फ्यूचर कोई पत्थर की लकीर नहीं होता, और टैरो हमेशा फ्रीविल के साथ काम करता है। तो आपके आउटकम आपकी चॉइसेस पर आधारित होते हैं, और अगर आप हिम्मत से काम लेते हैं, समझ से काम लेते हैं, क्लैरिटी के साथ काम लेते हैं, तो यही फर्क बनता है आपके मेक और ब्रेक सिचुएशन में। तीसरे और इम्पोर्टेंट बात जो हम लोग ने पहले भी जिसका जिक्र किया कि आईने की तरीके से काम करता है, जो कि आपके अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड को रिफ्लेक्ट करता है। तो एक तरीके से जब आप टैरो के रीडिंग के लिए आते हैं, तो एक आपको एक न्यूट्रल और थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव मिलता है, जिसमें से आलोक जी बहुत आसान होता है हमें अपने लिए एक विक्टिम मान के चलना और एक ब्लेम गेम में इंडल्ज करना कि ये मेरी वजह से नहीं है, मेरी परिस्थिति ऐसी है क्योंकि वो दूसरे ने ऐसा किया। तो जब आप टैरो से आप सवाल पूछने आते हैं, तो एक तरीके से थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव मिलता है, जिसमें आपको समझ आता है कि आपके आपके जो अकाउंटेबिलिटी है वो तय हो पाती है। इसलिए सही सवाल पूछना बहुत जरूरी है, इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि वाई एंड वेन, क्यों मेरे साथ हो रहा है और कब मेरा सिचुएशन ठीक होगी। अगर आप पूछें कि मैं क्या कर सकती हूँ इस परिस्थिति में अपने आप को उबारने के लिए, तो वो बेहतर एक आपको एक आयाम मिलता है, एक बेहतर आपको एक समझ और एक गाइडेंस मिलती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सही गाइडेंस के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने रीडर का पढ़ने का स्टाइल समझें और एक
1: जी
0: सेफ रिस्पेक्टफुल एनवायरमेंट में रीडिंग लें। आप समझ सकते हैं आलोक जी, आजकल इंटरनेट के माध्यम से इतना सब कुछ, हर दूसरा आदमी सब कुछ है, एवरीवन इज अ सिंगर, एवरीवन इज अ टैरो रीडर, एवरीवन इज एन एक्टर। हाँ, तो लाइन ड्रॉ करनी बहुत जरूरी है, स्पेशली टैरो के केस में, क्योंकि मेरे पास लोग आते हैं जो कि लाइफ एंड डेथ सिचुएशन से जूझ रहे होते हैं। तो एक तरीके से रीडिंग ही नहीं, एक थेरेपी है, एक काउंसलिंग है, एक मेंटल साइकोलॉजिकल काउंसलिंग है। तो बहुत जरूरी है कि जो लोग टैरो से डरते हैं, तो वो उसका उसका कारण ये हो सकता है कि उनके लिए कोई नेगेटिव स्टाइल ऑफ रीडिंग का सामना हुआ हो, जहां पे जो बातें कही गई हैं वो क्लिकबेट या डराने वाली हो। तो मेरा सच्चा सुझाव यही रहेगा कि ऐसे रीडर से थोड़ा दूर रहें, और थोड़ा अपना अपना आप जो बोलते हैं ना, अपनी समझ लगाएं एक सही बेहतर रीडर और रीडिंग स्टाइल से आइडेंटिफाई और चुनने के लिए। तो इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं होगी।
1: इसका मतलब तो ये हुआ कि आपके अंदर खुद कोई एक कोई खास बिलीफ सिस्टम या फेथ होना चाहिए अगर आप टैरो की दुनिया को आजमाना चाहते हैं। अंदर से आपको स्ट्रोंग होना चाहिए, क्या करना चाहिए?
0: देखिए, बिलीफ सिस्टम या फेथ की तो उतनी जरूरत नहीं है जितनी क्लैरिटी की जरूरत है ना। तो
1: जी
0: बिलीफ वो ओवर एंड बियॉन्ड एनी फेथ और बिलीफ सिस्टम है। बस जो आप जो ये जो पूछ रहे हैं, उसमें कोई रिलीजियस फेथ या बिलीफ सिस्टम नहीं है। इफेक्टिव रीडिंग के लिए बस इतना काफी है कि आपका ओपन हार्ट और माइंड होना चाहिए ना, जिसको हम बोलते हैं मोटे शब्दों में। और जैसा कि मैंने कहा कि वाई और वेन से आप के बजाय आपके जो अगर सवाल सवाल अगर हाउ और व्हाट पे होंगे, तो वो आपको एम्पावरिंग इंसाइट दिलाते हैं। तो एक ओपन हार्ट एंड माइंड, और दूसरा सही सवाल, और तीसरा जो ये बात है कि जो जो रिसीवर है, जो क्वेरेंट है, जो उसका जो एटीट्यूड और एप्टीट्यूड है, हाँ,
1: तो
0: अगर वो सही मायने में पॉजिटिव होता है ना, अफर्मिंग होता है, तो एक डीपली सेटिस्फाइड रीडिंग एक्सपीरियंस बन जाती है। तो एक चीज का बस मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी के श्रोताओं को, कि जब आप रीडिंग सेशन के लिए, टैरो सेशन के लिए आइए, तो आप ये मत सुनने आइए कि एक इमोशनल वैलिडेशन नहीं, कि जो मैं सोच रहे हूँ वही होना चाहिए, और कुछ और आप सुनने या समझने के लिए तैयारी ना होना। क्योंकि टैरो आपको हमेशा वही बताएगा जो शायद आप सुनना नहीं चाहते, लेकिन जरूरी हो आपके वो सुनने के लिए।

0: चले तो दिल पे चले कटारी।
1: ओ है मीठी छुरी ये जालिम नजर तुम्हारी।
0: तू झूमके चले तो दिल पे चले कटारी।
1: ओ है मीठी छुरी।

0: चाहता है।
1: तो फिर चलते चलते ये भी बता दीजिए कि श्रोता आप तक अगर उनको टैरो रीडिंग के लिए या किसी और चीज के लिए आपसे संपर्क करना हो तो किस तरह पहुंच सकते हैं।
2: देखिए, सबसे पहले तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी आप सबसे हाथ जोड़ के कि सबसे टैरो को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि जाके आप अपने लिए टैरो डेक खरीदे, क्योंकि मेरा कभी भी रीडिंग स्टाइल ये नहीं रहता, ये नहीं है कि आप मेरे पास ही आए टैरो रीडिंग के लिए, क्योंकि एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट है सेल्फ अवेयरनेस के लिए। और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ रूमी के शब्दों में, व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू। तो यदि आप सुन रहे हैं तो यूनिवर्स का एक ऑस्पिशियस साइन है कि आप भी अपनी सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी को शुरू कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसके लिए अगर आपको कोई मदद चाहिए, अगर चंद्र आपके किसी भी तरीके से आपके उसमें शामिल हो सकती है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर टेलर टेल टैरो और यूट्यूब पर टेलर टेल टैरो के नाम से पा सकते हैं। और मेरी सोल फैमिली जो हर सीमा और हर डेमोग्राफिक से परे है, वो दिन ब दिन बढ़ रही है, और सच कहूँ तो आप सभी से जुड़ना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो आई विल बी ट्रूली डिलाइटेड टू हियर फ्रॉम यू।

0: अच्छा, इसका मतलब है कि हम भी एक टैरो का डेक खरीद सकते हैं,
1: बिल्कुल
0: इज इट
1: खरीद
0: सो?
1: सकते हैं, बिल्कुल खरीद सकते हैं आलोक जी। एंड माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू बी, वाई डोंट वी बिगिन विद यू, प्लीज गो अहेड एंड बाय फ्रॉम आपके आपका
0: बिल्कुल।
1: जो लार्ज साइज पिज्जा आता है वीकेंड पे, उससे सस्ता इन्वेस्टमेंट है और बहुत
0: तो
1: बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है जी
0: पर
1: आलोक जी।
0: हमें इंटरप्रिटेशन कैसे कर पाएंगे हम, क्या समझ पाएंगे उसको, अगर मान लो मैं खरीद लिया किसी ने तो कैसे
1: आलोक जी
0: हुआ?
1: टैरो एक तरीके से आपका हम सफर है, हाँ, जिसको आप अपने आप वो एक वो आप खुद ब खुद, जैसे मैंने बोला ना, मैंने टैरो को पाया और टैरो ने मुझको पाया, तो एक बार ठीक है, हाँ, उसके लिए ऐसा भी नहीं है कि कुछ एडुकेशन और उसके अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं, और उसके लिए मैं हूं ना
0: ओके
1: हाँ,
0: ओके,
1: तो वो
0: चलिए
1: गाइडेंस मैं
0: चलिए,
1: दिखाऊंगी जी।
0: ये हमारा टेक अवे हो गया आज
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: का।
1: बिल्कुल आलोक जी,
0: तो चलिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत आपका आभार और शुक्रिया चंद्रा जी, आपने अपना कीमती समय दिया, हमारे श्रोताओं से सारी बातें शेयर की, और मैं मानता हूं कि आपकी आपकी जो गाइडेंस है वो बहुत ही उपयोगी रही। श्रोताओं को अपने टैरो को सिर्फ मिस्टिकल या एंटरटेनमेंट टूल नहीं, बल्कि एक मिरर, गाइड और एक सशक्त करने के माध्यम के रूप में दिखाया है आपने, तो बहुत ही आपका शुक्रिया, थैंक यू।
1: धन्यवाद, मुझे भी बातचीत बहुत अच्छी लगी और मैं दिल से आभारी हूँ आपसे इस खूबसूरत अवसर के लिए और अपनी जर्नी आप सबसे साझा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। लव एंड लाइक टू ऑल योर लिसनर्स।

0: दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।
1: छोटी सी हमारी कायनात बन गई।
2: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंटिया भील 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
3: नमस्कार साथियों।
4: मेरा भी नमस्कार।
3: साथियों, राजस्थान की भूमि रणबांकुरों की भूमि है। यहाँ की माटी ने बहुत से वीरों, वीरांगनाओं और शहीदों को जन्म दिया है। आज हम सुनने जा रहे हैं इसी राजस्थान की भूमि की एक वीर गाथा।
4: तो आइए चलते हैं सन 1947 के पहले के राजस्थान के डूंगरपुर जिले में और पलटते हैं वहाँ के समृद्ध इतिहास के गौरवशाली पन्नों को।
3: और जब उन पन्नों को हम पलटते चले जाएंगे तो हमारी उंगलियाँ ठहर जाएंगी बहुत से सुनहरे पन्नों के बीच एक ऐसे पन्ने पर जिस पर लिखी है एक बालिका के रक्त रंजित जीवन उत्सर्ग और बलिदान की गौरव गाथा।
4: आप पूछेंगे, कौन थी ये बालिका, क्या है इसका परिचय, ऐसा क्या किया था इसने कि आज पूरा राष्ट्र उसे सम्मान के साथ याद करता है, क्या है इसका नाम जिसकी कीर्ति में आज अरावली की पहाड़ियों में लोक गीत गूंजते हैं और कृतज्ञ राष्ट्र उसे श्रद्धा के साथ नमन करता है।
3: तो चलिए हम बताए देते हैं, वह बालिका थी कालीबाई कलसुआ जिसकी उम्र थी 13 वर्ष। कालीबाई कलसुआ भील जनजाति की बालिका थी।
4: आदिवासियों का गढ़ है दक्षिणी राजस्थान। इस क्षेत्र का एक जिला है डूंगरपुर। इस जिले का एक गांव है रास्तापाल। भारत की आजादी के पहले तक यहां कोई सरकारी स्कूल नहीं था, लेकिन एक सामुदायिक स्कूल जरूर था जिसे स्थानीय प्रजामंडल चलाता था।
3: इस पाठशाला में आदिवासियों के बालक भी पढ़ते थे और बालिकाएं भी, और इन्हीं बालिकाओं में से एक थी कालीबाई कलसुआ। इस पाठशाला के संरक्षक थे श्री नाना भाई खाट, जो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे।
4: इसी पाठशाला में एक शिक्षक थे श्री सेंगा भाई रोत, जो पूरी निष्ठा से बच्चों को पढ़ाते थे। शिक्षक सेंगा भाई बालकों को कभी अंग्रेजों के शोषण और अत्याचारों के बारे में बताते थे तो कभी उन अंग्रेजों के चाटुकार अत्याचारी सामंतों की कहानी सुनाते थे।
3: ये बात उन दिनों की है जब पूरे देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था।
5: अंग्रेजों, भारत छोड़ो, अंग्रेजों, भारत छोड़ो,
6: भारत माता की
5: जय,
6: भारत माता की जय।
3: आजादी की उत्कंठा सारे देश में हिलोरें ले रही थी, तो भला राजस्थान इसमें पीछे क्यों रहता। डूंगरपुर का प्रजामंडल इन पाठशालाओं की मदद से आजादी का विचार जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा था। शिक्षक श्री सेंगा भाई रोत बच्चों में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भर रहे थे।
4: कालीबाई इन कहानियों को ध्यान से सुनती थी, सुनते सुनते उसका खून खौल उठता था। सेंगा भाई उनके लिए परम आदरणीय थे। कालीबाई अपने गुरु की परम भक्त थी। जैसा कि हमने सुना था कि इस विद्यालय का संचालन प्रजामंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता था, प्रजामंडल के सदस्य नहीं चाहते थे कि इस विद्यालय में अंग्रेजों के विरुद्ध बात हो और देश प्रेम की चर्चा हो।
3: प्रजामंडल के सदस्य चाहते थे कि इस विद्यालय को बंद कर दिया जाए क्योंकि इस विद्यालय में देश प्रेम की चर्चा होती थी। प्रजामंडल के लोगों ने पाठशाला बंद करवाने के लिए एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने गांव के लोगों की एक बैठक बुलाई। उस बैठक में पाठशाला के संरक्षक नाना भाई भी उपस्थित थे। नाना भाई ने इस बैठक में प्रण किया कि मैं किसी भी हाल में अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला को बंद नहीं होने दूंगा।
4: वास्तव में वे चाहते थे कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, हर बच्चे के मन में देशभक्ति की भावना जगे, परंतु ये बात रास्तापाल के जागीरदार को नहीं पची। वो नहीं चाहता था कि गांव के लोगों में शिक्षा का प्रचार हो।
3: नाना भाई ने घर घर जाकर लोगों को समझाया और समझाने के परिणाम स्वरूप एक भी व्यक्ति ने उस बैठक में हिस्सा नहीं लिया। गांव के लोग जब बैठक में नहीं आए तो वो जागीरदार झल्ला उठा। उसने सारी घटना नमक मिर्च लगाकर सामंत को कह डाली।
4: और जून 1947 में डूंगरपुर महारावल के फरमान के बावजूद जब रास्तापाल गांव की पाठशाला बंद नहीं की गई, तो पुलिस सुपरिटेंडेंट और मजिस्ट्रेट दल बल सहित पाठशाला बंद कराने के लिए वहां आ पहुंचे।
3: वो दिन था 19 जून 1947 का। रास्तापाल की पाठशाला के बाहर एक ट्रक आकर रुका। कालीबाई उस समय खेत में गई हुई थी।
4: पाठशाला में उस समय नाना भाई और सिंगा भाई दोनों उपस्थित थे। जिला न्यायाधीश ने नाना भाई और सिंगा भाई से कहा, पाठशाला बंद करो और चाबी हमको दे दो। इस पर सिंगा भाई ने बड़ी नम्रता के साथ कहा,
3: न्यायाधीश महोदय, आप तो न्याय करते हैं। बच्चों को शिक्षा देना तो राज्य का काम है, आप उसे भी बंद करवाना चाहते हैं? यह तो बच्चों के साथ अन्याय है।
4: जिला न्यायाधीश ये बात सुनकर आग बबूला हो गए और बोले,
7: तुम मुझे न्याय की सीख दे रहे हो? अपनी औकात पहले देखो। अभी बताता हूँ तुमको, सिपाहियों इसे ट्रक से बांध कर घसीटो।
4: इस पर नाना भाई हाथ जोड़कर बोले,
3: साहब ये पाठशाला तो प्रजा मंडल के आदेश से ही तो चल रही है, आपके आदेश से नहीं। हमें पाठशाला चलाने दीजिए, इससे बच्चों का ही भला होगा।
4: पुलिस अधिकारी ऐसा उत्तर भला कैसे सहन कर पाता। वो क्रोध से आग बबूला हो गया। फिर क्या था, उसका संकेत पाते ही सिपाही नाना भाई पर टूट पड़े और उन्होंने नाना भाई की जमकर पिटाई की।
3: इससे वे बुरी तरह घायल हो गए और इसी बीच सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटा जाने लगा। नाना भाई से यह देखा नहीं गया, वे सेंगा भाई को बचाना चाहते थे।
4: किसी तरह नाना भाई उठे और सेंगा भाई को बचाने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की,
3: लेकिन तभी उन पर एक सिपाही ने जोर से बंदूक का कुंदा दे मारा। नाना भाई निढाल होकर जमीन पर गिर पड़े और फिर कभी नहीं उठे।
4: उनके प्राण पखेरु उड़ गए।
3: उधर सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटा जा रहा था।
4: धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव और आसपास के गांवों में फैल गई।
3: पाठशाला के बाहर गांव के स्त्री पुरुषों की भीड़ जमा हो गई। लेकिन हर कोई बेबस था, किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर सेंगा भाई को बचा सके।
4: कालीबाई उस समय खेत से पशु चारा के लिए घास काटकर आ रही थी। उसके सिर पर घास का गट्ठर था, उसके हाथ में हसिया था।
3: जब उसने अपने गुरुजी सेंगा भाई को ट्रक द्वारा घसीटे जाते देखा तो उससे ऐसा देखा नहीं गया। उसने आओ देखा ना ताओ, घास का गट्ठर वहीं जमीन पर डालकर उसने ललकार कर कहा,
4: ठहरो, मेरे गुरुजी को इस तरह घसीट कर कहां ले जा रहे हो?
3: ये कहते हुए कालीबाई बिजली की गति से उस ट्रक की तरफ लपकी। उसने ट्रक से बंधी रस्सी को हसिये से एक झटके से काट दिया।
4: सेंगा भाई मौत के मुंह में जाने से बच गए, किंतु अफसोस सिपाहियों ने कालीबाई को उसी समय गोलियों से भून दिया।
3: उसे बचाने के लिए कुछ औरतें भाग कर आई, उन पर भी निर्मम पुलिस ने लाठियां बरसाई।
4: एक तरफ

0: इस विकट स्थिति को समझकर कातिल वहां से भाग खड़े हुए
1: और बेहद जख्मी हालत में कालीबाई को डूंगरपुर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
0: लगभग 40 घंटे बेहोश रहने के बाद 20 जून 1947 को राजस्थान की इस वीर बाला ने दम तोड़ दिया। कालीबाई तो शहीद हो गई, लेकिन अपने गुरुजी को बचाकर उसने अपनी अखंड गुरु भक्ति का परिचय तो दिया ही,
1: साथ ही उसने जनजातीय लोगों में ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश में आजादी की मशाल जला दी।
0: आज भी रास्तापाल गांव में कालीबाई की स्मृति में एक स्मारक बना हुआ है और वहीं के एक पार्क में कालीबाई की मूर्ति भी लगी हुई है।
1: राष्ट्र इस त्याग की प्रतिमूर्ति नन्ही आदिवासी वीरांगना कालीबाई को कृतज्ञ भाव से नमन करता है।
0: कालीबाई, तुम्हें हमारा सलाम।
2: कालीबाई भारत की एक जनजातीय वीरांगना।
3: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
4: सीखने की प्रक्रिया में विराम नहीं होता।
5: ये कहानी है प्राचीन यूनान की, लेकिन आइए कहानी सुनने से पहले थोड़ी सी जानकारी लेते हैं यूनान की। आपको बता दें कि यूनान दक्षिण पश्चिम यूरोप में स्थित एक देश है। अंग्रेजी में इसे ग्रीस भी कहते हैं।
6: ये देश भूमध्य सागर में स्थित बहुत से द्वीपों का समूह है। यहाँ के निवासियों को यवन या यूनानी कहते हैं। यहाँ की राजभाषा यूनानी है, अंग्रेजी में इसे ग्रीक कहेंगे। ग्रीक भाषा बहुत ही समृद्ध भाषा है और यूरोप की लगभग सभी भाषाओं को इसने बहुत से शब्द दिए हैं। यहाँ की मुद्रा या करेंसी है यूरो। तो साथियों, लगभग सभी राष्ट्रों का कोई ना कोई राष्ट्र वाक्य होता है, जैसे हमारे देश का राष्ट्र वाक्य है सत्यमेव जयते। वैसे ही यूनान का राष्ट्र वाक्य है एलेफ्थेरिया थानाटोस, जिसका अर्थ है या तो स्वतंत्रता या मृत्यु, अन्य कोई विकल्प स्वीकार्य नहीं है।
5: यूनान की राजधानी है एथेंस, जहां से ओलंपिक खेलों का शुभारंभ हुआ। उन दिनों आज की तरह ओलंपिक खेलों में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक नहीं हुआ करते थे।
6: प्राचीन ओलंपिक खेलों में उन दिनों प्रथम आने वाले विजेता को जैतून की पत्तियों का मुकुट, द्वितीय आने वाले को जैतून के फलों की माला और तृतीय स्थान पर आने वाले खिलाड़ी को जैतून के पत्तों की माला पहनाई जाती थी। तो साथियों, आइए अब सुनते हैं प्राचीन यूनान की ही एक बहुत ही प्यारी और प्रेरक कहानी। ये कहानी है प्राचीन यूनान के एक बहुत अच्छे चित्रकार की। उसके बनाए गए चित्रों की हर जगह बड़ी धूम थी।
5: एक बार की बात है, उसने एक नर्तकी का आदम कद चित्र बनाया। वो बेहद खूबसूरत चित्र था। जब इस चित्र की प्रदर्शनी की गई, तो समाजी की तहलका मच गया। यूनान में हर जगह उस चित्र की चर्चा होने
7: लगी।
5: भीड़ की भीड़ उस चित्र को देखने के लिए आने लगी। ये इतना सुंदर और जीवंत चित्र था कि लगता था कि नर्तकी बस अभी बोल पड़ेगी।
6: नर्तकी का पूरा सौंदर्य इस पेंटिंग में मानो सजीव हो गया था। इस पेंटिंग की चर्चा उस देश के राजा के कानों में पड़ी। राजा भी ये प्रदर्शनी देखने आया और इस

0: चित्र को देखकर वो इतना प्रभावित हुआ कि उसने चित्रकार को बहुत से उपहार दिए।
1: इतना ही नहीं, राजा ने उस चित्रकार को शाही चित्रकार घोषित कर दिया। इस चित्र ने उस चित्रकार को रातों रात बहुत लोकप्रिय बना दिया। वो स्टार बन गया। इस चित्र की चर्चा बहुत दूर दूर तक फैल गई। अब वो बेनाम चित्रकार बहुत प्रसिद्ध हो गया था।
0: जहां भी वो जाता, लोग सम्मान से खड़े हो जाते, उसका अभिनंदन करते और उसकी प्रशंसा के पुल बांध देते थे।
1: कहते हैं कि सफलता का भूत कई बार सिर चढ़कर बोलता है। व्यक्ति के मन में अहंकार पैदा हो जाता है और वो अपने अलावा, अपने कौशल के अलावा कुछ और नहीं सोचता।
0: यही उस चित्रकार के साथ भी हुआ। अपनी कला से वो इतना प्रभावित हुआ कि अब वो दिन भर उस चित्र के सामने बैठा रहता था और उसे ही निहारता रहता था। वो बेसुध सा हो गया था। वो सबको यही बताता कि देखो, मैंने कितना महान काम किया है और मेरी बराबरी का और कोई कलाकार है ही नहीं।
2: क्या बात है, वाह वाह है मेरी कला, क्या सुंदर चित्र बना है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा चित्र कोई और कभी बना सकता है। शायद ऐसा चित्र कभी किसी ने नहीं बनाया है। वाह, कितनी महान कला है मेरे अंदर।
1: जी हाँ साथियों, इस मनोदशा में इंसान अपने आप से इतना प्रभावित हो जाता है कि उसे अपने सिवाय कुछ नहीं सोचता। अब तो ये होने लगा कि वो उस चित्र से उठते बैठते बात करता था। उसकी दीवानगी इतनी हद तक बढ़ गई कि वो अक्सर रातों को भी उठ जाता था और उस चित्र से बातें करने लगता था।
2: आइए आइए, देखने आइए। क्यों नहीं, देखिए देखिए, है ना कमाल का चित्र।
3: बिल्कुल,
2: कितना सुंदर चित्र है ये। मैं जब जब इसे देखता हूं मुझे ऐसा लगता है ये और सुंदर होता जा रहा है। वाह, अथा सुंदर।
1: और सुबह जो भी उसे मिलता, सबको यही बताता कि देखो, मैंने कैसा महान कार्य कर दिखाया।
0: लोगों को शुरू में ये बात अजीब नहीं लगी, लेकिन धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि ये तो असामान्य बात है। महीने बीत गए, अब उस चित्रकार ने दूसरी पेंटिंग्स बनाना भी छोड़ दिया था। वो बस अपने उसी चित्र को देखता रहता था।
1: एक दिन की बात है, वो सवेरे उठा और हर रोज की तरह अपनी उसी पेंटिंग को देखने चल दिया। उसे बहुत गहरा झटका लगा जब उसने देखा कि उसकी पेंटिंग पर किसी ने ढेर सारा रंग उड़ेल दिया है और किसी तेज चाकू से उस पेंटिंग को जहां तहां से काट दिया है। ये देखकर उस चित्रकार को मानो पागलपन का दौरा पड़ गया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा,
3: ये क्या हो गया, किसने किया है ये काम, किसने किया ये?
1: वो पूरे म्यूजियम में शोर मचाने लगा,
3: किसने किया, किसने किया ये?
1: सब सहम गए थे। अचानक पीछे से गंभीर आवाज आई,
4: मैंने किया है।
1: वो चित्रकार पीछे मुड़ा तो चौंक गया, पीछे उसके गुरुजी खड़े थे।
2: गुरुजी, आप? क्या ये आपने किया है?
4: हाँ, मैंने किया है ये काम।
2: लेकिन क्यों?
4: इसलिए कि मुझे ऐसा लगता है कि तुमने अपने आप को सीमित कर लिया है। तुम अपनी कला से संतुष्ट हो गए हो।
2: लेकिन गुरुजी, वो मेरी सर्वोत्तम रचना थी, इससे अच्छा तो कुछ बन ही नहीं सकता।
4: नहीं, तुम्हारा ऐसा सोचना गलत है। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं बनाया गया जिसे संपूर्ण कहा जा सके।
5: गुरुजी,
4: अब तुमने अभ्यास करना, कुछ नया बनाना सब छोड़ दिया है। अब तुम्हें लगता है कि जो कुछ तुमने बनाया उससे अच्छा कुछ बन ही नहीं सकता। ये बात गलत है।
5: लेकिन गुरुजी, मैं जानता हूं कि अब मैं इस पेंटिंग से बेहतर कुछ बना ही नहीं सकता।
4: तुम्हारी यही सोच गलत है। तुम प्रसिद्ध तो हो गए हो, लेकिन अभी तक सिद्ध नहीं हुए। उठो, पेंट ब्रश लेकर अब फिर से शुरू हो जाओ। कुछ नया और बनाओ जिसका लोग इंतजार कर रहे हैं।
1: दोस्तों, उस चित्रकार को बहुत पश्चाताप हुआ, और फिर जब उसने दोबारा पेंट ब्रश उठाया तो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने एक से एक ऐसी बहुमूल्य पेंटिंग्स बनाई जो आज यूनानी संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। साथियों, सीखने का कोई अंत नहीं है।
6: जी हाँ, सीखते रहिए, प्रश्न करते रहिए, अवलोकन करते रहिए।
1: इस बात से संतुष्ट मत हो जाइए कि प्रकृति में या आसपास कुछ होता है। आप तब तक संतुष्ट न होइए जब तक ये न जान लें कि ऐसा क्यों होता है।
6: यदि आपने कोई काम बहुत अच्छे तरीके से किया है, किसी विषय में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, संगीत के अभ्यास से बहुत निपुणता प्राप्त कर ली है, तो अब इतने में ही संतुष्ट ना हो जाइए कि अब और कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है।
1: सीखते रहिए, किसी ने बहुत खूब कहा है, नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप्स टीचिंग।
6: यानी सीखना कभी मत छोड़िए, क्योंकि जिंदगी कभी सिखाना नहीं छोड़ती।
4: सीखने की प्रक्रिया में विराम नहीं होता।
7: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम जाबुआ की आवाज।
8: साथ है तो संभव है।
9: ये बात बहुत पुरानी है। एक बहुत घना जंगल था। उस जंगल में बहुत से पशु पक्षी रहा करते थे। उन सब में गहरी मित्रता थी। वे सभी बड़े मेल प्रेम से रहते थे। जंगल में बड़े बड़े तालाब थे जहां बहुत से जल जंतु भी रहा करते थे। उस जंगल के बीचों बीच एक ऊंचा घना पेड़ था। उसकी बड़ी बड़ी शाखाएं थीं जिस पर बहुत से जंगली हंस बसेरा करते थे। वे हंस सुबह दाना पानी लेने के लिए उड़ जाते और शाम को उसी पेड़ पर वापस आ जाते। पेड़ के पास ही एक झील थी। उसके शीतल जल में वे खूब नहाते और किलोल करते। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था।
10: एक दिन की बात है, जब पक्षी शाम को वापस आए तो उन्होंने देखा कि पेड़ के पास एक छोटा सा पौधा उगाया है। उस पौधे में एक छोटी सी कोमल लता थी जो पेड़ के तने से चिपकी हुई थी। उसे जब हंसों ने देखा तो आपस में बातें करने लगे। उनमें से एक हंस, जो आयु में दूसरे हंसों से बड़ा था और बुद्धिमान भी, उसने कहा,
11: क्या तुम उस छोटे पौधे को देख रहे हो जिससे लता निकल रही है?
12: हाँ, देख तो रहे हैं, लेकिन इसमें कौन सी नई बात है?
13: ऐसे तो बहुत से पौधे निकलते रहते हैं।
14: ये तो कोई बड़ी बात नहीं है।
12: हाँ, बेकार ही ऐसी छोटी छोटी बातों की चिंता करते रहते हैं।
11: लेकिन साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि
13: अरे छोड़िए भी, हमारे पास बातें करने के लिए क्या अब यही बचा है?
12: हाँ, और कोई बात हो तो कहिए, वरना चुप रहिए।
14: मानते हैं कि आप हम सबसे बड़े हैं,
13: लेकिन हम भी कोई कम समझदार नहीं हैं।
12: हाँ,
9: सभी हंसों ने उस बुद्धिमान हंस की बात काट दी
15: और उसका मजाक भी उड़ाया।
9: खैर, दिन बीतते गए। धीरे धीरे वो पौधा बड़ा होने लगा और उसकी लता पेड़ के तने का सहारा लेकर बड़ी होने लगी। अब वो लता इतनी बड़ी हो गई कि वो लगभग पेड़ की आधी ऊंचाई तक पहुंच गई।
10: उस पेड़ पर बसेरा करने वाले जंगली हंसों का झुंड रोज सुबह भोजन की तलाश में निकल जाता और शाम को हमेशा की तरह वापस आ जाता था। उन्हें वो पेड़ बहुत सुरक्षित लगता था क्योंकि वो ऊंचा था और उसका तना इतना चिकना और सीधा था कि कोई भी इस पेड़ पर आसानी से चढ़ नहीं सकता था। दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन की बात है, शाम को जब सारे हंस वापस आ गए तो बुद्धिमान हंस ने सबको बुलाया और कहा,
11: साथियों, आज मैंने एक बार फिर से उसी विषय पर बात करने के लिए आप सबको बुलाया है।
12: उसी विषय पर? अरे किस विषय पर?
11: उसी पौधे के बारे में जिस पर हमने एक दिन चर्चा की थी, लेकिन आप सब ने उसे टाल दिया था।
13: उफ हो, फिर वही बात। अरे ऐसा तो सारे जंगल में होता रहता है।
12: हाँ, पौधे उगते हैं, बड़े हो जाते हैं, आपको क्यों बेकार की चिंता हो रही है?
11: साथियों, मेरी चिंता व्यर्थ नहीं है।
12: ओहो,
11: ध्यान से देखो।
12: अरे देख तो रहे हैं।
11: वो लता पहले बहुत छोटी थी, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़कर वो इतनी ऊंची हो गई है कि हमारे पेड़ की डालियों तक पहुंच गई है।
9: बात आई गई हो गई। इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया गया। वो लता धीरे धीरे मजबूत होती जा रही थी और अब उसने एक मोटी रस्सी का रूप धारण कर लिया था। वो लता अब लगभग पेड़ की सभी शाखाओं तक पहुंच गई थी।
10: और वही हुआ जिसका डर था। एक सुबह जब सभी पक्षी भोजन की तलाश में निकल गए, एक बहेलिया वहां आया। उसने चुपके से कई बार देखा था कि उस पेड़ पर बहुत से जंगली हंस रहते हैं।
16: ये जगह ठीक है, यहाँ जाल बिछाता हूँ, यहाँ बहुत सारे पंछी फंस जाएंगे।
10: बहेलिया उस मजबूत लता की मदद से पेड़ पर चढ़ गया और अपना जाल बिछा दिया।
9: जाल बिछा कर वो चला गया। उसे पता था कि पक्षी अब शाम को ही आएंगे। शाम को पक्षी वापस आए। बहेलिये के बिछाए जाल पर उनकी नजर नहीं गई और जैसे ही वो डालियों पर बैठे, वे सब के सब उस जाल में फंस गए।
14: अरे कोई है, हमारी सहायता करो।
17: अरे हमें छुड़ाओ भाई, हमारी सहायता करो भाई।
11: अरे ये क्या हो गया?
17: फंस गए भाई,
13: हम सब जाल में फंस गए।
11: अरे ये कैसे हुआ? तुम लोग भी मेरी बात नहीं मानते हो ना? मैंने कहा था
17: ऐसे फंस गए हम।
11: अरे क्या हो गया? मैंने तो पहले ही कहा था, पर तुम लोग सुनते कहाँ हो?
10: वे सभी चिल्लाते रहे, पंख फड़फड़ाकर उड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन सब बेकार। संघर्ष करते करते वो थक गए। उन्होंने बुद्धिमान हंस से कहा,
17: हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमने आपकी बात नहीं मानी।
13: काश हमने आपकी बात मानी होती तो आज का दिन हमें देखना ही नहीं पड़ता।
17: अब आप ही कुछ कर सकते हैं, कोई उपाय बताइए।
11: शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैंने बहुत पहले ही तुम सबको चेतावनी दी थी, लेकिन तुम सब ने नहीं सुना। संकट के समय अब हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। ध्यान से सुनो, कल सुबह जब वो बहेलिया आएगा तो हम सबको ऐसा अभिनय करना होगा मानो कि हम मर चुके हैं।
12: भला इससे क्या होगा?
11: कोई भी बहेलिया मरा हुआ पक्षी नहीं चाहेगा। वो एक एक करके हमें जाल से निकालकर भूमि पर फेंक देगा। जैसे ही वो आखिरी पक्षी को नीचे फेंकेगा और पेड़ से नीचे उतरेगा, इसी बीच हम सब एक साथ उड़ जाएंगे।
12: हाँ ये ठीक है,
14: उड़ जाएंगे हम सब।
9: और ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन सुबह बहेलिया वहाँ आया। वो मन ही मन खुश हो रहा था कि बहुत से पक्षी उसके जाल में फंस गए हैं, उसे बड़ा लाभ होने वाला है। वो तेजी से पेड़ पर चढ़ा और जाल के पास जा पहुंचा। लेकिन ये क्या,
10: बहुत से पक्षी फंसे हुए थे लेकिन वो निश्चल पड़े हुए थे। उनकी गर्दनें ढलकी पड़ी थी और कोई हरकत नहीं थी। उसने जाल को हिलाया भी लेकिन किसी पक्षी ने कोई हरकत नहीं की। बहेलिया बड़बड़ाने लगा,
18: अरे ये क्या, ये सब तो मरे पड़े हैं। हो सकता है इन्होंने कोई विषैला बीज खा लिया, पर अब तो कोई लाभ नहीं। अब क्या करूं, इन्हें नीचे फेंक देता हूँ, फिर जाल लेकर उतरना भी आसान हो जाएगा। हाँ ऐसा ही करता हूँ।
9: तो इस तरह बहेलिये ने एक एक करके पक्षियों को जाल से निकालना शुरू किया और वो उन्हें नीचे जमीन पर फेंकता चला गया। अब अंतिम पक्षी भी भूमि पर फेंका जा चुका था।
10: जैसे ही आखिरी पक्षी जमीन पर गिरा, योजना के अनुसार सभी उठे, अपने पंख फड़फड़ाए और पलक झपकते ही आकाश की ऊंचाइयों में उड़ गए। बहेलिया हाथ मलता हुआ आश्चर्यचकित और ठगा सा उन्हें देखता रह गया।
9: साथियों, प्रसिद्ध मोटर व्यवसायी हेनरी फोर्ड ने कहा था, यूनाइटेड वी स्टैंड बट डिवाइडेड वी फॉल। इसका भाव ये है, संगठित होकर हम सशक्त बनते हैं और विभाजित रहकर निर्बल। यानी
19: साथ है तो संभव है।
7: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM की आवाज।
20: वो आखिरी पत्ता।
10: ये कहानी प्रसिद्ध अमेरिकी कहानीकार ओ हेनरी द्वारा 1905 में लिखी गई थी। ओ हेनरी का पूरा नाम था ओलिवर हेनरी। तो आइए सुनते हैं ये कथा नाट्य प्रस्तुति।
9: अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। इसी शहर का एक बहुत सुंदर कस्बा है जो ग्रीनिच विलेज के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक रूप से ये बहुत ही रमणीक और सुरम्य गांव है, इसीलिए इस गांव में अक्सर बहुत से चित्रकार आया करते थे,
10: ताकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को वो अपने कैनवस पर उतार सकें और दुनिया के सामने ग्रीनिच गांव की खूबसूरती का नजारा पेश कर सकें। इसी ग्रीनिच गांव में एक दिन दो लड़कियां रहने के लिए आईं। वो दोनों चित्रकार थीं और वो भी वहां के सौंदर्य को अपने कैनवस पर उतारना चाहती थीं। एक थी कैलिफोर्निया से और एक थी मेन से।
9: इन लड़कियों में से एक का नाम था जॉन्सी और दूसरी का नाम था सू। दोनों साथ साथ रहने लगी और उन्होंने चित्रकारी शुरू कर दी।
21: अरे जॉन्सी, तुम इतनी सुबह सुबह अपना पेंट ब्रश और कैनवस लेकर कहाँ चल दी?
22: ओ सू, ग्रीनिच के सुहाने सूर्योदय को अपने कैनवस पर उतारना जो है।
21: अरे हाँ, तो चलते हैं और यहाँ की सुंदरता को घर लेकर आते हैं, वो भी अपने अपने कैनवस पर।
22: यस।
10: साथियों, वो मिली तो थी वसंत के महीने में, लेकिन धीरे धीरे शरद ऋतु शुरू हो गई और अब भयंकर सर्दी का मौसम था। उस भयंकर शरद ऋतु में अचानक एक अजनबी ने ग्रीनिच गांव में प्रवेश किया और उसने अपने ठंडे हाथों से लोगों को छूना शुरू किया। उस अजनबी को डॉक्टरों ने नाम दिया था मिस्टर निमोनिया। उसके ठंडे स्पर्श में राहत नहीं थी बल्कि मौत थी। अब ये महामारी बन गई थी दोस्तों। बहुत से लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे। जॉन्सी भी थी, वो गंभीर रूप से बीमार थी और दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी।
9: उसकी मित्र सू उसकी बहुत सेवा करती थी। बड़ी मुश्किल से उसने किसी डॉक्टर से संपर्क किया और दवाओं का इंतजाम किया। एक दिन जब डॉक्टर उसे देखने आया तो उसने नोट किया कि जॉन्सी उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही है, बस हां हूं कर रही है। डॉक्टर ने एक खास बात नोटिस की कि जॉन्सी बस खिड़की की ओर लगातार देखती जा रही थी।
10: साथियों, डॉक्टर ने उधर भी देखा लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने सू से कहा,
0: सू
11: जी,
0: जॉन्सी तुम्हारी दोस्त है।
11: जी हाँ।
0: भाई मुझसे तो वो ठीक से बात नहीं कर रही, जरा उससे पूछकर मालूम करो कि उसे ऐसी क्या तकलीफ है।
11: जी डॉक्टर साहब।
0: और वो क्यों हमेशा खिड़की की तरफ देखती रहती है?
11: मैं पूछती हूँ।
9: दूसरे दिन सू ने गौर से देखा तो उसे समझ में आया कि जॉन्सी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से खिड़की के बाहर किसी चीज को घूरते हुए कुछ बुदबुदा रही है।
10: वो धीरे से उसके पास गई और सुनने की कोशिश करने लगी।
2: 15, 40
11: क्या?
9: थोड़ी देर के लिए वो चुप रही, फिर उसने गिना, लेकिन इस बार उसने कुछ जल्दी में गिना, जैसे कुछ जल्दी जल्दी घटित हो रहा हो।
2: 13, 12, 11 ओह
11: जॉन्सी,
2: अब सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है। सू
10: सू ने जॉन्सी को झकझोरा और पूछा,
2: क्या गिन रही हो? 11, 10, 9 ओह उस दिन वो करीब 100 थे, लेकिन सू अब वो बहुत कम हो गए हैं।
11: क्या कम हो गए हैं?
2: पहले मुझे गिनने में मुश्किल होती थी, लेकिन हाँ अब मैं इन्हें गिन सकती हूँ, आसानी से गिन सकती हूँ सू।
9: सू ने फिर से बाहर देखा, खिड़की के सामने बस एक आईवी क्रीपर का पेड़ था जो पतझड़ की मार से बहुत बुरी हालत में था, लगभग अधमरा सा, बस कुछ पीली पत्तियां दिखाई दे रही थी। सू ने उसे दोबारा झकझोरा और पूछा,
11: जॉन्सी उस दिन क्या 100 थे जब कम हो गए हैं? तुम क्या गिन रही हो?
2: 6, 9, 6, 5, 4 ओह
11: जॉन्सी, जॉन्सी तुम्हें क्या हो गया है? मुझे डर लगने लगा है, खिड़की में तो कुछ नहीं है, तुम क्या गिन रही हो? उधर नहीं मेरी तरफ देखो जॉन्सी।
2: Only 4
11: मेरी तरफ देखो
2: सू, only 4 ओह अब सिर्फ 3 बचे हैं।
11: क्या 3 बचे हैं? What's 3 dear?
2: 3 पत्तियां।
11: पत्तियां?
2: हाँ, खिड़की के पास जो आईवी क्रीपर का पेड़ है ना सू,
11: हाँ हाँ,
2: मैं उसकी पत्तियां गिन रही हूँ। मुझे लगता है,
11: क्या लगता है?
2: यही कि बस अब 3 पत्तियां बची हैं और जिस दिन आखिरी पत्ता गिर जाएगा ना, उस दिन
11: क्या जॉन्सी?
2: उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
11: ओह नो, ये क्या कह रही हो तुम जॉन्सी? ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है।
2: नहीं, ये तय है सू कि उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
11: हाँ
2: सू, अब सिर्फ 3 पत्तियां बची हैं, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास सू।
11: जॉन्सी
9: साथियों, सू ने उसे बहुत समझाया। उसी दिन डॉक्टर भी आ गए, डॉक्टर ने भी बहुत समझाया, सारे तर्क दिए, लेकिन जॉन्सी मानने को तैयार नहीं थी।
10: अचानक उस दिन कुछ अजीब सा हुआ। एक बूढ़ा व्यक्ति जॉन्सी को देखने आया। सभी उस बूढ़े व्यक्ति को सनकी और लगभग पागल समझते थे।
1: उस व्यक्ति का नाम था मिस्टर बेयरमैन। वो बहुत दिनों से ग्रीनिच गांव में रह रहे थे।
10: वो चित्रकार थे। बहुत बार उन्होंने चित्रकारी में असफलता देखी थी और लोगों का मजाक भी सहा था। वो घर घर घूमकर हमेशा लोगों से कहा करते थे,
3: मैं अपनी चित्रकारी से एक मास्टरपीस बनाना चाहता हूँ जो अब तक नहीं बना पाया, लेकिन बनाऊंगा जरूर।
1: लोग उसे देखते ही उससे कतराने लगते थे। लोग उस पर हंसते और कहते, देखो मास्टरपीस वाला बुढ़ा आ रहा है। जब वो जॉन्सी को देखने के लिए आए तो सू ने उन्हें बताया कि वो किस वजह से पत्ते गिन रही है।
10: इतने में जॉन्सी ने अपनी दुर्बल आवाज में फिर से गिना,
2: टू, ओ, अब सिर्फ दो पत्तियां ही बची हैं।
1: मिस्टर बेयरमैन ने बड़ी खामोशी से सू को देखा और एक लंबी सांस लेने के बाद गंभीरता से कहा,
3: जॉन्सी, अभी मैं जा रहा हूं, लेकिन देखना देखना तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी ही तुम्हें देखने आऊंगा।
1: इतना कहकर तेज कदमों से मिस्टर बेयरमैन वहां से चले गए।
10: अब मात्र दो पत्तियां ही बची थी। दूसरे दिन की शाम एक पत्ता और गिर गया। सुबह हुई तो जॉन्सी ने देखा अब सिर्फ एक ही पत्ता बचा हुआ है। उसका दिल धक धक कर रहा था। वो सोचने लगी,
2: आखिरी पत्ता अब शायद गिरने ही वाला है। अब मेरी चंद सांसें बाकी हैं। आखिरी पत्ता गिरने ही वाला है, बस गिरने ही वाला है।
1: साथियों, जॉन्सी खिड़की की ओर देखती रही और इस तरह पूरा दिन बीत गया, पर वो आखिरी पत्ता अभी भी वहीं था। हैरत की बात तो ये कि दूसरा दिन भी बीत गया पर पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी खिड़की की ओर टकटकी लगाए बैठी रही और इस दौरान बर्फबारी के साथ पतझड़ के मौसम की बारिश शुरू हो गई। साए साए आंधी चलने लगी। रात भर रुक रुक कर बारिश होती या बर्फ गिरती।
10: जैसे ही सुबह हुई जॉन्सी ने सू से कहा,
2: सू मेरी दोस्त।
21: हाँ जॉन्सी।
2: जरा वो खिड़की खोल दे, मैं देखना चाहती हूँ कि वो आखिरी पत्ता वहाँ है या नहीं। खोल खिड़की।
1: सू की तो मानो रूह ही कांप गई थी। कांपते हुए हाथों से डरते डरते सू ने खिड़की खोली। जॉन्सी ने खिड़की की ओर देखा लेकिन आश्चर्य, वो पत्ता अभी भी गिरा नहीं था। सुहानी सुबह थी। मंद मंद हवा चल रही थी। आकाश मानो पूरी तरह से धुला हुआ था। चमकता हुआ सूरज निकल आया था। वो आखिरी पत्ता हवा में कांपता हुआ अभी भी वहीं का वहीं था।
15: अचानक जोंसी को कुछ हुआ और उसने सू को बुलाया और कहने लगी,
4: सू?
21: हाँ जोंसी।
4: सू, ऐसा लगने लगा है कि मुझे नई जिंदगी मिलेगी। मैं नहीं मरूंगी।
21: हाँ बिल्कुल,
4: अब मैं नहीं मरूंगी सू।
21: बिल्कुल जोंसी।
4: हाँ, इसलिए ये पत्ता नहीं गिरा।
21: पत्ता?
4: हाँ, मेरी सोच अच्छी नहीं थी जो मैंने अपनी मृत्यु के बारे में सोचा। देखो ना, वो पत्ता अभी भी वही है।
21: हाँ,
4: हाँ,
21: मैंने देखा, मैंने देखा जोंसी, मैंने देखा।
4: देखो, अब वो वहीं पर है। अभी वो नहीं गिरा सू।
21: हाँ जोंसी, वो वहीं पर है, वहीं पर है।
4: हाँ, हाँ।
10: दो दिन और बीत गए, वो पत्ता वहीं का वहीं था। जोंसी अब ठीक होने लगी थी। डॉक्टर ने आकर उसे चेक किया और कहा,
0: गुड, थैंक गॉड, अब इसकी तबीयत अच्छी हो गई है, ये लड़ाई जीत जाएगी।
10: जोंसी मुस्कुराई और उसने खिड़की की ओर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था, पर डॉक्टर के जाने के बाद सू ने कहा,
21: जोंसी, कैसा महसूस कर रही हो?
4: बेहतर।
21: ये लो कॉफी पियो।
4: थैंक यू
21: जोंसी। एक बुरी खबर भी है।
4: क्या हुआ?
21: वो मिस्टर बेरमैन, उनकी कल अस्पताल में मौत हो गई।
4: कौन बेरमैन? वही बुरे कलाकार?
21: हाँ।
4: ओह, जो मुझे उस दिन देखने आए थे?
21: हाँ वही।
4: ओह, जो कहते थे मैं मास्टरपीस बनाऊंगा, वही ना?
21: हाँ वही मिस्टर बेरमैन।
4: ओ गॉड,
21: उनकी हालत दरअसल उस दिन बहुत खराब हो गई थी जब तुमने वो आखिरी पत्ता देखा था। जोंसी, मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ।
4: क्या?
21: क्या कभी तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि सारे पत्ते इस पतझड़ में गिर गए, पर वो आखिरी पत्ता
4: क्यों नहीं गिरा?
21: हाँ,
4: क्यों नहीं गिरा? आखिर क्या हो सकता है सू?
15: जोंसी सोच में पड़ गई। फिर सू ने कहा,
21: जोंसी, जिस दिन वो आखिरी पत्ता बचा था ना, उसके दूसरे दिन किसी ने मिस्टर बेरमैन को हमारी ही खिड़की के पास बहुत बुरी हालत में पाया। उनके जूतों में बर्फ भरी हुई थी और उनके पेंच ब्रश और कैनवस इसी आईवी क्रीपर पेड़ के पास पड़े पाए गए थे।
4: ओह,
21: जहां वो रात भर पेंटिंग करते रहे।
4: पेंटिंग?
21: हाँ।
4: कैसी पेंटिंग?
21: जो पत्ता तुम देख रही हो वो कुछ और नहीं लेकिन मिस्टर बेरमैन की पेंटिंग है, जो उन्होंने आखिरी पत्ते के गिरने के बाद उस कड़कड़ाती सर्दी वाली रात में उस पेड़ पर चिपका दी थी।
4: ओह, तो वो पेंटिंग है?
21: हाँ।
4: असली पत्ता नहीं है?
21: नहीं।
4: लेकिन सू, कितना असली लग रहा है।
21: हाँ जोंसी, बिल्कुल असली है ना मास्टरपीस?
4: हाँ सू, मास्टरपीस। वो कहा करते थे कि मैं कभी ना कभी मास्टरपीस बनाऊंगा और सू, उन्होंने बना दिया।
21: हाँ जोंसी,
4: आखिर बना दिया उन्होंने मास्टरपीस सू।
21: हाँ, उन्होंने बना दिया।
4: उन्होंने बचा दिया मुझे, उन्होंने मेरी जान बचा ली सू, बचा लिया उन्होंने मुझे, उन्होंने मरने से बचा लिया मुझे सू।
2: मास्टरपीस, मास्टरपीस, वो आखिरी पत्ता, वो आखिरी पत्ता।
10: डबडबाई आंखों से जॉन्सी ने एक बार फिर से खिड़की के बाहर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था जो अब मास्टरपीस बन गया था।
15: ग्रीनिच गांव के कलाकार एक एक करके आ रहे थे और उस आखिरी पत्ते को विस्मय और श्रद्धा से निहार रहे थे। जॉन्सी और सू की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे, मानो वे अश्रु अविरल बहकर उस बूढ़े कलाकार को श्रद्धांजलि दे रही हूं।

ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें। नमस्कार साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी साथियों का कार्यक्रम खेती बाड़ी में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और बड़े सौभाग्य की बात है कि झाबुआ जिले में और झाबुआ जिले का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM अब स्टार्ट हो गया है, शुरुआत हो गई है इसकी। और सबसे खुशी की बात है कि यहाँ के किसानों के लिए ये वरदान साबित हो रहा है, खासतौर पर उन किसानों के लिए जहाँ पर जानकारी का अभाव रहता है और जानकारी उन तक नहीं पहुंच पाती है। और आज हमारे स्टूडियो में बड़ी सौभाग्य की बात है, आज हमारे साथ सलिया जी डामोर जो कांकड़कुआ गांव के रहने वाले हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ अजमेर जी हैं, वो भी कांकड़कुआ गांव के।

0: रहने वाले हैं, आपका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तेज सिंह वाकला जी हैं, काकड़कुआ गांव से हैं। इनका खेती में काफी अच्छा अनुभव रहा है, इनके अनुभवों को साझा करते हैं, क्योंकि हम और आप देखते हैं खेती अगर झाबुआ जिले की बात करें, यहाँ के आसपास के इलाकों की बात करें, तो पथरीला इलाका है, पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। हम जानेंगे आज उन विषयों पर जानेंगे कि यहाँ पर हमारे किसान साथी किस तरीके से खेती कर सकते हैं। सबसे पहले सलिया जी, आपसे हमारा सवाल है कि यहाँ पर कौन कौन किस किस प्रकार की खेती की जाती है?
1: अभी हम खेती करने के लिए तैयारी कर रहा है, इसमें हमारे मक्का होती है और कपास, यह थुअर भी होती है, मूंगफली होती है, उड़द भी होते हैं। यह बारिश के समय में हमको यह फसल मिलती है, सोयाबीन भी होते हैं, यह फसल हमको मिलती है सर।
0: अच्छा सलिया जी, एक चीज जानना चाहेंगे, यहाँ पर पथरीला इलाका है, आप जानते हैं पानी की बहुत ज्यादा किल्लत भी है, हमने देखा भी है, किस तरीके से आप, किस अनुभवों के साथ आप खेती करते हैं?
1: बस खेती यही करते हैं हम, सुमा समय बारिश आते है, इसमें कोई रुका पानी, कोई कुआ है थोड़ा बहुत, उसमें यही करते हैं।
0: अच्छा अच्छा।
1: हाँ, एक दो पानी कपास को मिल जाते हैं, ज्यादा पानी की आवत है ही नहीं।
0: अच्छा अच्छा। हाँ, अगर कपास की, सोयाबीन की अगर बात करें तो किस तरीके से, चूंकि आपका अनुभव हम देख रहे हैं कि काफी अच्छा अनुभव है, काफी सालों से आप खेती कर रहे हैं, तो किस तरीके से ये कपास की खेती की जाती है, कैसे की जाती है?
1: ये सर, इसमें अपन को बोवनी करते है कपास की, इसमें अपन को निंदाई खुदाई करनी पड़ती है, और खाद बीज अपन को ये करना पड़ता है, दवाई भी करनी पड़ती है, टाइम टाइम से खाद मिलते हैं इनको, ये यूरिया भी मिलते है, क्या बोलते हैं, सुपरफास्ट और डीएफी कपास को, और मक्का तो यहाँ पर यूरिया खाद से ही पक जाती है।
0: अच्छा अच्छा।
1: हाँ, ये इनको डीएफी और पोटास खाद मिलते है कपास को, इनकी फसल डीएफी खाद से और दवाई से होती है।
0: अच्छा, सबसे पहला सवाल है कि आप किस तरीके से भूमि को तैयार करते हैं, जब कपास की खेती आप लगाते हैं किस तरीके से उसकी तैयारी करते हैं?
1: इसको अभी खेड़ाई जुताई कर रहे हैं
0: जी,
1: ये तैयारी कर रहा अपन, उसमें हल चलाया, उसके बाद अपन थोड़ा वखरा कर गेर के इनको थोड़ा कहना डेफा डेफी है या भाग तोड़ के थोड़ी कर तैयारी करेंगे, पानी बारिश को गिर गया तो इसके बाद अपन बोनी करनी है सर।
0: अच्छा, यहाँ पर किस किस प्रकार की मिट्टी यहाँ पर, चूंकि लाल भी मिट्टी है, किस किस प्रकार की, कौन कौन सी यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है?
1: ये लाल भी है और काली भी है,
0: काली मिट्टी है,
1: काली
0: है।
1: हाँ, और इसमें भूरी मिट्टी भी है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
1: किसी किसी को भूरी मिट्टी भी है।
0: अच्छा, ढलान होने के साथ क्या क्या आपको खेती किसानी में समस्या आती है आपको?
1: दलान में तो सर ये पानी की समस्या होती है, इसमें
0: कितने पानी लगते हैं कपास में?
1: कपास में बस ज्यादा पानी वाले कोई दो चार पानी कर देते हैं, नहीं पानी वाले तो बस एक दो पानी में हो जाता है,
0: एक दो पानी में हो जाता है कपास। कपास से कितना मुनाफा हो जाता है, यदि आपको किसान सुन रहे हैं तो कपास की खेती में बीज कहाँ से लाया जाता है और इससे पहले तैयारी क्या की जाती है उसकी?
1: इसमें बीज तो सर ये मिलते है काली बाजार से, हम लाते हैं कपास का बीज, और तैयारी इनकी है, अभी तैयारी में ही है, बैठा है, लोग कर रहा है, कोई हर काम जो भी है छोड़ के खेती पे लग गया है, तैयारी कर रहा है, बारिश की समय आ रही है ऐसे करके।
0: अच्छा अच्छा,
1: यही तैयारी चल रही है सर।
0: अच्छा, खेती के अलावा यहाँ पर और क्या हमारे किसान साथी करते हैं, क्या करते हैं?
1: मजदूरी जाते हैं सर।
0: अच्छा, खेती करने के बाद मजदूरी करने के
1: अभी,
0: लिए
1: अभी लोग बाग अभी भी बाहर है।
0: अच्छा,
1: बारिश की समय है तो
0: आ जाते हैं,
1: तो कोई एक दो घर पे है, नहीं तो आने वाले है।
0: अच्छा,
1: कुछ चार महीना करते है और वापस दिवाली बाद बाहर चले जाते, दाड़ की दपोड़ी यही करते सर।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, कपास की खेती में सर कितना फायदा आपको हो जाता है?
1: फायदा तो होता है सर, इस साल तो कपास का भाव भी थोड़ा ठीक रहा।
0: अच्छा,
1: तो इस साल तो फायदा लोगों का।
0: कितने महीने में फसल आ जाती है ये अपने लगाने के बाद?
1: ये लगाने के बाद तो करीब कपास को तो छह महीना हो ही जाते हैं।
0: अच्छा, जो किसान हमारे जैसे कपास नहीं करते, उनकी जानकारी नहीं है, उनको क्या बताना चाहेंगे कि किस तरीके से इसकी बीजों की रोपाई की जाती है, किस तरीके से इसको लगाया जाता है?
1: इसको सर उसको लगाना पड़ता है, तैयारी करते हैं अपन कपास करते हैं, तो इस जमीन को जब अच्छी तैयारी करनी पड़ती है, खाद कई अपन ये गाय का ये खाद मिल जाते हैं, ये डाल देता है इसमें कपास अच्छा बनता है
0: जी।
1: हाँ, इसमें ठीक रहता है।
0: अच्छा, एक चीज जानना चाहेंगे, चूंकि अभी हम यूरिया और हम डीएपी की बात करते हैं, पहले जमाने में जो खेती की जाती थी वो शुद्ध गोबर की गाय के गोबर से, या फिर जो जैविक पद्धति होती थी उससे हम खेती करते थे, अब क्यों, ऐसा क्या कारण हो गया है कि इसको बंद कर दिया है और इसी पे हम लोग आश्रित हो गए?
1: इसमें सर ये अभी थोड़ा माल मेवा से कम पड़ गया है।
0: हाँ, मवेशी।
1: हाँ, मवेशी तो कम है अभी। क्या है कि पहला तो है कि घर में मवेशी करना 20-15 एक एक घर में करनी, दो दो चार चार आठ आठ दस दस गाय रहती थी, अभी है ही नहीं।
0: क्यों नहीं है, क्या कारण है?
1: अभी क्या है, अभी थोड़ा सारा सरनेमान सब थोड़ी कमी है।
0: हाँ,
1: तो अभी नहीं है, बस एक दो बैल है, किसी के पास भैंस है।
0: अच्छा अच्छा,
1: सब ये कम है अभी।
0: जैसे छोटी छोटी जमीन है तो अभी भी आवश्यकता पड़ती होगी बैलों की, हल की या
1: तो,
0: बकर की?
1: वो तो पड़े ना सर।
0: अच्छा, और भैंस पालन या बकरी पालन इस तरीके का नहीं करते हैं किसान इसके अलावा?
1: करते हैं ना सर,
0: करते हैं,
1: बकरी भी है, भैंस है।
0: कौन सी बकरी पालते हैं, किस तरीके से वो पालन पोषण उसका करते हैं?
1: बकरी तो सर ये देसी बकरी है।
0: देसी बकरी, फायदा होता है इससे?
1: हाँ, इससे होता है।
0: मुर्गी पालन करते हैं?
1: मुर्गी पालन तो ये देसी मुर्गा है घर पे।
0: अच्छा अच्छा, करते हैं।
1: हाँ, है ना।
0: अच्छा, अब जो समस्या जो आप कह रहे हैं कि कपास में हम लोग जैविक खाद यानी गोबर खाद का इस्तेमाल करते हैं, फिर हम रासायनिक खाद का इस्तेमाल क्यों करते हैं, मतलब क्यों डालते हैं डीएपी यूरिया?
1: तो वो अभी क्या है सर, लगातार अपन ने डाल दिया तो ये खाद तो डाले बिना तो नहीं होते है।
0: अच्छा,
1: अब तो वो क्या है, खाने की अपन को आदत कुछ पड़ गई, तो वो खाद डाले बिना तो होते ही नहीं फसल।
0: अच्छा अच्छा,
1: ऐसा है।
0: अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। आपसे जानना चाहेंगे आपके क्या अनुभव हैं खेती किसानी में, आप कितने वर्षों से खेती किसानी कर रहे हैं?
2: 20 साल हो गया है।
0: 20 साल से खेती कर रहे हैं। कौन कौन सी आप फसल उगाते हैं, कैसे करते हैं?
2: मूंगफली
0: भी करते हैं?
2: करते।
0: अच्छा अच्छा,
2: उड़द थोड़े करते हैं, ज्यादा नहीं करते
0: हैं। हाँ,
2: 10-15 किलो
0: अच्छा कर देते हैं। आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपू रेडियो, आपड़ी बातें।

0: हवा के मौसम का हाल। झवा का अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 25.1 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 12.2 मिलीमीटर और अब तक की वर्षा 15.9 मिलीमीटर नापी गई है। खेती की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आइए जानते हैं किसान भाइयों के पास कौन कौन सी खेती के उपजाऊ खेत हैं।
1: कई नहीं प्रकार की जगह से, मतलब तार जगह के कई तरह से, मतलब बैडू है, घेरवाड़ी है ना, मालमई
2: बैडू है, काले जमीन है, काली नादी भूरी ने भी अकली है।
1: ते तार खेतर में हूँ पाके
2: खेतर मफड़ा
1: पकड़िए ने अड़द ने मुफड़ा ने ते यहाँ पर सुमा है ते
2: यू
1: पर मुफड़ा पाके जाता है, अड़द है, अंथुअर से ने अपन हेलिये थी गये हूँ कह रहा सोयाबीन
2: है।
1: ते फिर बीजी फसल लेवा हर खेतर से माला
2: बीजी फसल लेवा हर खेतर बीजी फसल हूँ लेवा फिर
1: क्या पानी की कमी से
2: नहीं।
1: अच्छा पानी की कमी से ते तन मतलब एके एके फसल मळे
2: एके फसल
1: ते एनी खेत मतलब आपण फसल ने अलावा फिर हूं से मतलब फिर हूं तो कमावार हूं करी आपो
2: मांगू कमावार बाजे 12 महीना या फिर 6-7 महीना कमाई कर लिए फिर दूसरा फसल ना जाए कमे पोटला बांध
1: दे ए कमे नहीं जो ते ते आप तारता बोकड़ा नहीं मळे बोकड़ो डगरो
2: बोकड़ा डगरो ते है पण कम से
1: डूंगर वसिया नहीं अपनी कान है डूंगर वसिया नहीं कही नहीं तो आपको कहाँ सरावा ले जाएंगे है समस्या ये भी है। हाँ सरवानी थोड़ी दिक्कत है। ठीक ठीक तो तब हूँ लगे की आप अगर बोकड़ा आप पाली है तो बोकड़ा में अपन फायदा से नहीं
2: फायदो
1: है बोकड़ा में फायदो है लेकिन अपन एक असल प्रजाति नी बोकड़ी मळवी जोवे है कि नहीं। हमने अपना बोकड़ा थोड़ा से आमा मादा दुबला पातला से है ना ते अपन थोड़ी असल प्रजाति नी थोड़ी असल जे
3: थोड़ी कोलादार
1: है थोड़ी असल दिनो माँ भी ताजू पड़े नीचे होय दूध खावा भी अपन लावी ते थोड़ो बढ़िया क्वालिटी नु मळी जाय ते बढ़िया रहे। अन अपन अपन डगरियों मां भी अपन इमेज देखी है ना डगरा है अपना डोबा है इनमा भी अपन असल खोजदार बढ़िया मळ जाय हाँ ओलादार अपन मतलब ताजो थोड़ो बनी सके है ना
3: सही है।
0: नमस्कार दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो 90.8 FM। मैं आपका दोस्त आरजे अविनाश। आइए जानते हैं झाबा के मौसम का हाल। झाबा का अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 25.1 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 12.2 मिलीमीटर और अब तक की वर्षा 15.9 मिलीमीटर नापी गई है। सलिया भाई इने अलावा तन हूँ लागे अपन खेती में हूँ करवू जो हजू अब हूँ करी सकी हमने तो मान लो अगर पानी की समस्या है अपनी कन हमने लेकिन अगर पानी की समस्या ये अपनी थोड़ी कम थी जाए तो आप हूँ करी सकी है।
3: बस पानी नी समस्या कम थी जाए तो हूँ करी सकी है पानी ऊपर है या
1: हाँ अगली पानी पर से जैसे कि आप वाड़ी है कि नहीं अगर वाड़ी करवा मांगी तो हमने हमने आप भिंडा है ग्वालफड़ा है काकड़ा है अपने तरबूजा है ना तो जिन पानी की समस्या है तिन्हें आप की सकी के
4: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो आपकी बातें।
1: तो भाइयों आप हमने चर्चा करते ला अपन डगरा ना बारा मा अपन बोकड़ा ना बारा मा की कम आप खेती ने अलावा कई नी अलग अलग हूँ आप करी सकी तेना बारा मा आप वाते करते ला ते हाव इनी चर्चा ने आप आगाड़ी बढ़ाऊ हूँ पर तीनता आगाड़ी आप हमी हाव एक अपन संस्कृति नु एक प्यारू थुसू एक गीत

0: किसान साथियों, हम सुन रहे थे खेती बाड़ी कार्यक्रम। वक्त हो चला है यहाँ पर हमारे इस प्रोग्राम को विराम देने का। आपसे फिर मुलाकात होगी कल इसी समय पर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांटा भील 90.8 FM RJ अविनाश के साथ।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटा भील 90.8 FM। आप रेडियो, आपकी बातें।

0: मौसम का हाल।
1: जावा का अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 25.1 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 12.2 मिलीमीटर और अब तक की वर्षा 15.9 मिलीमीटर नापी गई है।

0: आप सभी का स्वागत है दोस्तों, आपके ही अपने प्रोग्राम जिंदगी के रंग गीतों के संग में, जहां हम मिलते हैं उन खास लोगों से जिनकी जिंदगी संघर्ष, मेहनत और सफलता की प्रेरक कहानियों से भरी होती है। उनकी बातों के बीच में हम सुनते हैं कुछ ऐसे गीत जो उनके जीवन की भावनाओं और अनुभवों को संगीत में ढाल देते हैं। तो चलिए आइए इस खूबसूरत सफर में हमारे साथ चलिए।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं SN रेडियो पर जिंदगी के रंग गीतों के संग। ये वो महफिल है जहां हम जिंदगी के रंगों को महसूस करते हैं, कभी सफर के जरिए, कभी कहानियों के जरिए, कभी उन लोगों के जरिए जो अपनी हिम्मत की पहचान लिखते हैं। आज हमारे साथ हैं मिसेस मीना जी। मीना जी माने मीना गुप्ता जी, ऐसी शख्सियत जिन्होंने 18 साल अपनी फैमिली को समर्पित करे और उसके बाद अपनी पहचान खुद लिखी। इवेंट्स की दुनिया से लेकर फूड और गिफ्टिंग तक एक खूबसूरत सफर तय किया। तो चलिए शुरू करते हैं आज के जिंदगी के रंग गीतों के संग मीना गुप्ता जी के साथ। तो मीना जी, आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के जिंदगी के रंग गीतों के संग पर। कैसा लग रहा है आपको आज यहाँ पे आके?
2: बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये मेरे लिए बड़ा मतलब पहला एक्सपीरियंस है, तो बड़ी एक्साइटेड भी हूँ। लेट्स सी कैसा जाता है।
1: जी बिल्कुल, चलिए शुरुआत करते हैं। मैम, आपने बहुत लंबा सफर अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ तय किया, काफी कुछ आपने अपने जीवन में जिया, बहुत एक्सपीरियंसेस लिए। उसके बाद जब आपने ये डिसीजन लिया कि आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वो पहला कदम 18 साल की गृहस्थी संभालने के बाद कितना मुश्किल था, और उस वक्त आपके मन में सबसे बड़ा डर क्या था? और डर था या एक्साइटमेंट थी या किस तरह के इमोशंस थे, क्योंकि सडनली ये शिफ्ट लेना और अपने लिए कुछ करना और इतनी बड़ी एक एंटरप्रेन्योरल जर्नी को शुरू करना, वो किस तरह का एक एहसास था आपके लिए, क्या चल रहा था आपके मन में?
2: सच कहूँ तो डर भी था और एक्साइटमेंट भी, लेकिन डर थोड़ा ज्यादा था। 18 साल तक सिर्फ फैमिली के लिए जी रही थी, और जब मैंने अपने लिए कुछ करने का सोचा तो सबसे बड़ा सवाल ये था, क्या मैं कर पाऊंगी? लेकिन एक और आवाज थी अंदर से, अगर अब नहीं तो कभी नहीं। बस वही आवाज ज्यादा स्ट्रांग हो पाई और मैंने पहला कदम ले लिया। आज लगता है डर कभी गया नहीं, बस मैंने उसके साथ चलना सीख लिया।
1: बहुत ही सुंदर मैम, बिल्कुल पहली उड़ान जैसी थी आपके लिए घर से बाहर कदम निकालना, और बहुत ही रंगीन उड़ान थी। जैसे हमने आपके इंट्रोडक्शन में बताया कि आपने इतना कुछ अचीव किया है, तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके और उस परमात्मा के जिन्होंने आपके अंदर ये बीज डाला कि आपको कुछ करना है और आगे बढ़ना है और अपनी फैमिली लाइफ से बाहर निकल के कुछ एक समाज के लिए एक कदम उठाना है, कुछ करके जाना है यहाँ से। इसी नोट पे मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपका जो पहला इवेंट था, आपने इवेंट मैनेजमेंट से शुरू किया जैसे कि आपकी प्रोफाइल में हमने पढ़ा, तो आपका पहला इवेंट था टिकट टू बॉलीवुड, बहुत ही प्यारा नाम है, इससे मुझे वो गाना याद आता है बड़ा प्यारा सा, झूम बराबर झूम का। और जब आपने यंग टैलेंट्स को स्टेज दिया इस इवेंट के जरिए, तो आज आप जब उस मोमेंट को याद करती हैं तो आपको क्या महसूस होता है कि मैंने सही रास्ता चुना, और किस तरह से ये पूरा इवेंट शुरुआत हुआ, इसका बीज कैसे डला, कैसे आपने सोचा कि ऐसा इवेंट करते हैं, क्यों आपको लगा कि यंग टैलेंट को स्टेज देना जरूरी है, क्या प्रोसेस और क्या जर्नी थी इस टिकट टू बॉलीवुड की?
2: यस, बिल्कुल याद है। बेसिकली क्या है, अपने समाज में इवेंट्स होते थे कभी, जैसे ईयरली इवेंट्स होते हैं हर समाज में, तो उसके लिए बच्चों को डांस की प्रैक्टिस करवाना, वो सब करते करते ऐसे ही लगा, जब एक कोरियोग्राफर था साथ में, उसके साथ ऐसे ही बातचीत हुई, तो उसने कहा मैम हाँ हम ऐसा कुछ इवेंट कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि ठीक है यार, करते हैं, चलो स्टार्ट। तो जब हम पहली बार किसी पार्टिसिपेंट को परफॉर्म करते हुए ऑडियंस के सामने या ऑडियंस को क्लैप करते हुए जब देखा, उस मोमेंट पर मेरे उस दम सा गए। मुझे लगा ये सिर्फ एक इवेंट नहीं है, किसी का सपना है जो यहाँ सच हो रहा है। वही मोमेंट था जब मुझे फील हुआ हाँ मैंने सही रास्ता चुना है। और मतलब मैंने बहुत सारे लेडीज को प्लेटफॉर्म दिया, लेडीज बहुत सारे मिसेज, कोई मिसेज इंडिया में पार्टिसिपेट किया, कोई इंटरनेशनल लेवल पे भी गई। तो मुझे अच्छा लगता है कि आज मेरे चुने हुए बच्चे जिनको कुछ सिखाया वो आगे बढ़े।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत सपनों की शुरुआत हुई आपकी। और कोई ऐसा पल याद आता है इस इवेंट का जो आज भी आपके जहन में एकदम ताजा है कि ऐसा हुआ था या ऐसा हुआ था, कोई भी एक वाक्या जो हमारे साथ आप साझा करना चाहें?
2: तो पहली बार था तो बच्चे भी बहुत तरह तरह के बच्चे थे, कोई क्योंकि सिंगिंग डांसिंग और कोरियोग्राफी, तो कोरियोग्राफी उसमें भी रैंप वॉक वो बिल्कुल नया था मेरे लिए, खुद को नहीं आता और बच्चों को सिखाना। ठीक है, बेस्ट कोरियोग्राफर सिलेक्ट किया था जिसका वर्ल्ड में नाम है शायद लोगों, तो उसके साथ बड़े अच्छे अच्छे मोमेंट शेयर हुए क्योंकि मैं पहली बार इस तरह की चीज कर रही थी। तो जब वो प्रैक्टिस करवाते थे तो मतलब सीखने का भी मिला मौका खुद को भी, और वो मोमेंट बहुत अच्छे थे।
1: चलिए, बहुत ही खूबसूरत शुरुआत हुई आपकी, और इसी शुरुआत से हम सुनेंगे हमारा आज का पहला गीत, आओ मनाएं जश्न-ए-मोहब्बत।

0: के इवेंट्स से फूड बिजनेस की तरफ शिफ्ट किया, और ये कहीं ना कहीं आई एम श्योर बहुत बड़ा शिफ्ट रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, अलग थोड़ी फील्स हैं। हालांकि फूड इज अ पार्ट ऑफ इवेंट बिजनेस, बट देन फिर भी इवेंट से पूरी तरह हटके फूड बिजनेस में आना, ये बदलाव किस तरह से आया, और क्या इसके लिए आपने कोई प्लानिंग की थी, या अगेन आपके दिल से आवाज आई और आपने ये रास्ता चुना?
1: बिल्कुल तो बात ये आई थी कि एक छोटा सा गैप आया था इवेंट बिजनेस में, और अपना कहते हैं ना, प्लानिंग अपनी नहीं होती है, गॉड की होती है। तो
0: बिल्कुल
1: ये वो गॉड की प्लानिंग थी, और साथ में देखिए आवाज कि मैं इवेंट्स के थ्रू मतलब इधर शिफ्ट हुई फूड बिजनेस में। और इसमें एक लेडी है, उनको थैंक बोलना चाहूंगी, शी इज अ फ्रेंड।
0: जी
1: उनका फूड बिजनेस था, वो रेडी टू कुक फूड और मसाला बनाती हैं। तो
0: जी
1: उन्होंने ही अप्रोच किया कि आप एज अ पार्टनर, फ्रेंचाइजी पार्टनर मेरे साथ आओगे क्या। तो मुझे लगा कि ठीक है, करते हैं इसको भी। ऑब्वियसली एक वो भी चैलेंज ही था, तो ठीक है, मैंने कहा चलिए करते हैं। और ऐसे करके फूड बिजनेस में स्टार्ट हो गए। और मतलब मैं उसके लिए क्या बोलूं कि कुकिंग और घर का स्वाद हमेशा से मेरी स्ट्रेंथ थी,
0: जी
1: और मैंने सोचा क्यों ना इसे अपनी पहचान बना ली जाए।
0: जी, आपके क्लाउड किचन के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं, सो दैट हमारे श्रोता जान पाएं कि मीना जी का किचन कौन सा है, क्या है, और मीना जी क्या क्या पकाती हैं।
1: मतलब देखिए कि शुरुआत तो हुई थी रेडी टू कुक फूड और मसाला, ठीक है, 5 to 6 years हो गए हैं इस लाइन में, है
0: जी
1: ना। तो करते करते ये हुआ कि प्रोडक्ट ऐसा है कि रेडी टू कुक फूड है, आपने काटो घोलो और बनाओ, मतलब जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन एंड योर फूड इज रेडी इन 10 to 15 minutes। तो
0: जी
1: बड़ा हैसल फ्री कुकिंग है, जो आज की दुनिया में इतना वर्किंग है, आजकल लेडीज भी वर्किंग है, बहुत बड़ा टाइम नहीं होता, स्टूडेंट्स बाहर जा रहे हैं, जिनको भी घर के खाने की क्रेविंग है उसके लिए ये बहुत अच्छी चीज है। हमारे पास
0: जी
1: विदाउट प्रिजर्वेटिव है। तो वो करते करते मुझे लगा यार 13 ग्रेवीज है, पूरी मिक्सेज है, तो क्यों ना अपना एक छोटा सा क्लाउड किचन करें, ठीक है। तो ऑर्डर बेसिस रखा, कुछ भी ऐसा नहीं कि मतलब ऑर्डर बेसिस पे ही हम करते हैं, और इसमें अपना और भी मेन्यू डाल देते, तो हर लेडी के पास होना रहे, कुकिंग में हर लेडी माहिर है,
0: जी जी
1: तो है ना। तो
0: और हर
1: अपने लिए
0: स्वाद
1: अपने
0: में,
1: चैलेंज
0: हर हाथ
1: कुछ,
0: में अपना स्वाद है। बिल्कुल
1: यस यस। तो और घर के खाने की बात ही अलग होती है। तो ऑर्डर भी कुछ से कर लिया ये काम। तो मैं तो आपके थ्रू लोगों को, लेडीज को स्पेशली कहना भी चाहूंगी कि अगर वो कुछ करना चाहती है घर से बैठ के काम स्टार्ट, तो मुझे जरूर संपर्क करें, मैं उनकी इसमें हेल्प कर सकती हूँ।
0: जी बिल्कुल, बदलाव और सफर आपके जीवन का एक बहुत ही अचूक पार्ट रहा है, और इसी गहरे एहसास के साथ, इन्हीं गहरी बातों के साथ, इन्हीं प्यारी बातों के साथ हम सुनेंगे हमारा अगला गीत। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है।

0: क्या खूबसूरत गीत है ये, जीवन का फलसफा है। वेलकम बैक मैम, वेलकम बैक मेरे प्यारे श्रोताओं। मैम, आपने गुरु कृपा फूड के नाम से आपका जो क्लाउड किचन है और उसमें आप घर का स्वाद लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उसका अंडरलाइन थीम ये है। आपके खाने में सिर्फ टेस्ट होता है या उसमें मिक्सचर होता है वार्म्थ का, इमोशंस का, यादों का? और जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में भी पूछा था, मैं चाहूंगी कि आप कोई अपनी फेवरेट रेसिपी जो आप सबसे आपको अच्छी लगती है, जो आपको पकाना अच्छा लगता है, जो आपकी सबसे अच्छी स्वादिष्ट बनती है, उसके बारे में भी हमें बताएं और उसकी शायद रेसिपी भी बता दें, सो दैट हमारे श्रोता नोट कर लें।
1: मेरे लिए ना कभी भी मतलब सिर्फ टेस्ट नहीं रहा है ना, हर रेसिपी के साथ एक मेमोरी जुड़ी होती है। माँ के हाथ का स्वाद, फेस्टिवल्स की खुशबू, फैमिली के हाथ साथ बैठकर खाना खाना, गुरु कृपा फूड के थ्रू मैं सिर्फ प्रोडक्ट के घर का प्यार, वार्म्थ और नॉस्टैल्जिया डिलीवर करना चाहती हूँ लोगों को। और रेसिपीज की बात करूँ तो कौन सी रेसिपी बताऊँ मैं, तो मतलब मुझे खुद की तारीफ तो नहीं करनी चाहिए, बस ये कहूँगी कि मैं खाना बहुत तसल्ली से बनाती हूँ।
0: जी, करनी चाहिए बिल्कुल, अगर आपके हाथ में वो बात है तो बिल्कुल खुद की तारीफ करनी चाहिए।
1: बहुत पेशेंस के साथ, ऐसा नहीं कहूँगी मुझे सब कुछ आता था, मैंने सीखा लोगों से है ना, फ्रेंड्स से कि हाँ, बट जैसे अब मैं बात करती हूँ कि रेसिपी की बात करते हैं तो मैं सरसों के साग की बात करती हूँ।
0: जी,
1: सरसों का साग मेरा मतलब जिसने भी खाया सबको बहुत पसंद आता है। मेरे फ्रेंड सर्कल गए और सबको लगता है कि सर्दी आए तो यार एक बार साग मक्की की रोटी तो खिला दो
0: जी,
1: है ना, तो उसको बनाने की भी बड़ी टेक्निक है।
0: जी,
1: ऐसे में कई बार लोगों को लगता है कि बस काटा पका लिया और ऐसे, वो नहीं, उसमें जब चढ़ाते हैं तब से लेकर एक प्रोसेस है।
0: अगर आप बता सके हमारे श्रोताओं के लिए एक रेसिपी आपकी मनपसंद खाने की।
1: अच्छा चलिए, तो जैसे हम सरसों का साग के लिए हमने तैयारी कर ली, जब पानी बॉयल हो जाए तब हम उसमें साग डाले और एक सीटी के बाद उसको सिम गैस पे आप एक से डेढ़ घंटा पकने दीजिए सिम गैस, तो जितना पकेगा ना उतना ही बढ़िया बनेगा। उसके बाद जब आप खोले और जब हम उसको मिक्सी में थोड़ा सा एक बार ग्राइंड करते हैं, मतलब आपको सिर्फ नॉर्मल झटका सा ही देना है, तो उसके अंदर आप थोड़ा सा मक्की का आटा डाल के उसको कर लीजिए। तो अभी भी जब आपको जब इसमें पानी डालना है, हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि हम पानी ठंडा भी डाल देंगे तो चलेगा क्योंकि बॉईल तो हो रहा है, मगर नहीं, सरसों के साथ में आपको पानी बॉईल करके ही डालना है। तो आप पहले से ही पानी बॉईल करके रखे, हमें आदत होती है लेडीज को मिक्सी में रह गया तो उसमें पानी डाल के निकालना ही होता है। लेडीज क्या मतलब जनरली वाकई उसमें अपन मसाला छोड़ते तो है नहीं ना, तो उसमें भी आप गर्म पानी डाल के उसको करें और फिर से साग को अच्छे तरह से एक डेढ़ घंटा ढक करके नॉर्मल पकने दें, उसमें थोड़ा सा घी डाल दें और उसको बीच बीच में अपना चलाते रहें। लास्ट में आप उसके अंदर देसी घी में पत्ता, प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर का बढ़िया तड़का दें
0: जी
1: और आप उसको एंजॉय करें।
0: मेरे मुंह में पानी आ गया सच में, आई विश अभी सर्दियां होती तो मैं झट से गुरु कृपा से ऑर्डर करती। और क्या हम जोमेटो पे हैं, क्या हम डिलीवर करते हैं जोमेटो पे?
1: नहीं, जोमेटो स्विगी पे नहीं है क्योंकि देखिए 24 घंटे फिर आपको लगे ही रहना पड़ता है।
0: जी,
1: सिर्फ ऑर्डर बेसिस सारे काम है, जो भी ऑर्डर आता है उसी के अकॉर्डिंग बस
0: बस अगला ऑर्डर आपके पास आ रहा है आरजे तनुषा से और उनके श्रोताओं से। तो श्रोताओं, सुनिए आपने इतनी प्यारी रेसिपी, इतना प्यार भरा रेसिपी और इतनी जायकेदार रेसिपी, मैं तो वेट नहीं कर सकती खाने के लिए। मैम, स्टोरीज ऑफ हैम्पर भी एक बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है जिसपे आप काम कर रहे हैं। आज की जो फास्ट पेस लाइफ है, जब गिफ्टिंग बहुत फॉर्मल हो गई है, सब कुछ बहुत फॉर्मल हो गया है, सब कुछ एक तरीके से किया जाता है और एक जैसा किया जाता है, ऐसे में आप कैसे इंश्योर करती हैं कि आपका जो हर हैम्पर है गिफ्टिंग का, वो एक स्पेशल टेक्निक, एक स्पेशल प्यार, एक स्पेशल एहसास के साथ बनाया जाए तो देने वाले के लिए वो एहसासों का उपहार हो, सिर्फ उपहार नहीं हो, और कैसे ये कॉन्सेप्ट आपने कंसीव किया?
1: देखिए, जब ये फूड बिजनेस स्टार्ट किया ना, तो मैं हैम्पर्स भी बनाने लगी थी अपने अपने प्रोडक्ट के साथ, उन्हें देखकर से कुकीज, केक्स या कुछ भी, मतलब अदर प्रोडक्ट, राखी के टाइम पे राखी डाली है ना
0: जी।
1: और कहीं आजकल चीज कैंडल सोप, सो बहुत सारी चीजें आ रही हैं, तो अकॉर्डिंग टू द ओकेजन उसमें डाल करके थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन दे करके, मैं मतलब ब्रदर के पास जा रहा है या सिस्टर के पास जा रहा है तो वो स्पेशल उसके अंदर कुछ ब्रदर के लिए हमने मेंशन किया या सिस्टर के लिए मेंशन किया
0: जी।
1: अब गिफ्टिंग की बात करूँ तो फॉर्मल हो ही गई है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ना जब कोई हैम्पर मिले तो वो फील हो ये स्पेशली मेरे लिए बनाए गए
0: जी।
1: इसलिए हम हर हैम्पर में स्पेशलाइजेशन होता ही है हमारे
0: जी,
1: कलर्स है या प्रोडक्ट्स है, कोई मैसेज है, सब कुछ एक स्टोरी के हिसाब से डिजाइन होता है। तो मेरे लिए यहाँ पर एक बॉक्स में एक इमोशन है जो किसी के प्यार के साथ कुछ पहुंचाया जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये सच में एक एहसासों का उपहार है और इसी एहसास के साथ, जिंदगी के रिश्तों की मिठास के साथ हम सुनेंगे हमारा अगला गीत, खुशियां ही खुशियां हों दामन में जिसके।

0: वेलकम बैक मेरे प्यारे श्रोताओं। मैम आप कहते हैं कि सक्सेस जो है आपके लिए वो अवार्ड से नहीं बल्कि कस्टमर्स की स्माइल से होती है, तो बेसिकली आप रिवॉर्ड्स में बिलीव करते हैं अवार्ड से ज्यादा। क्या कोई ऐसा मोमेंट है, कोई कस्टमर रिएक्शन, कोई कस्टमर एक्सपीरियंस, क्लाइंट एक्सपीरियंस जो आपके दिल के बहुत करीब है, जिसको याद करके आप बहुत अच्छा फील करते हैं और आपको लगता है कि हाँ जो जर्नी मैंने शुरू की थी वो मुकम्मल हो गई?
1: हाँ यस, सही बात। तो हर ऑर्डर को बहुत ध्यान से बहुत प्यार से बनाया जाता है। तो अभी वैसे मैं रिसेंटली बात करूंगी कि रिसेंटली अभी एक गंगौर और भूमी अंतर गया और ऑर्डर का भोपाल से और उन्हें भेजना था अहमदाबाद। उन्होंने अपनी होने वाली बहू के लिए होली और गंगौर अंतर बनवाया। उसमें एक एक चीज मतलब बहुत लव और केयर के साथ हमने उसमें डाले। थोड़ा सा इमोशनल भी था क्योंकि उनको अपनी बहू के लिए पहली बार कुछ भेज रही थी, है ना। एक प्यारा सा नोट उसमें हमने ऐड किया। जब खुशी वो हुई कि उनकी बहू ने उस हैम्पर के साथ फोटो शेयर की और जब उन्होंने मुझे शेयर किया, अब ऐसे कस्टमर के साथ हमारे रिलेशन कई बार ऐसे फैमिली जैसे भी हो गए हैं कि मतलब वो रिपीटेड ऑर्डर, चाहे वो एक हो चाहे पांच हो, वो हमें ही ऑर्डर देते हैं। जी, उनको लगता है कि हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि भी हाँ स्टोरीज ऑफ हैम्पर से अच्छी ही चीज जाएगी।
0: जी,
1: तो उनको एक बहुत अच्छा एहसास होता है और जब कस्टमर्स खुश होते हैं तो वाकई लगता है कि हाँ ठीक है, हमने अच्छा किया है, मतलब किसी की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दी।
0: बिल्कुल बिल्कुल। आगे चलते हैं हमारे आखिरी सवाल की तरफ। आप जब अपने सफर को देखते हैं आज, जहां से आपने शुरू किया, घर से आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म तक गए, ग्लोबल हो गए, ग्लोबल विजन रखा आपने, इतने इवेंट्स किए, इतने लोगों को सर्व कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी जो आज उस फेज में हैं जहां वो अपनी पहचान ढूंढ रहे हैं और उन्हें बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानियां हैं, बहुत डर हैं, बहुत रुकावटें हैं उनके रास्ते में, तो कैसे आप उनको एक मैसेज देके, एक प्रैक्टिकल मैसेज देके इंस्पायर करना चाहेंगी कि अगर आप कर सकती हैं तो वो भी कर सकते हैं और अपनी नई शुरुआत का एक पहला कदम ले सकते हैं?
1: यस, मैं इतना कहना चाहूंगी, अपनी लाइफ का रीस्टार्ट बटन किसी एज का मोहताज नहीं है, है ना। कभी भी आप किसी भी एज में स्टार्ट कर सकते हैं और ठीक है डर जरूर होता है, बट अगर फेथ है, भगवान में भी फेथ रखिए, अपने अंदर फेथ रखिए, पॉजिटिव माइंड सेट के साथ स्टार्ट कीजिए, है ना।
0: बिल्कुल,
1: अंदर की आवाज जो आपकी आती है ना उसे कभी इग्नोर मत करिए। परफेक्ट प्लान का वेट मत कीजिए, बस छोटा सा पहला स्टेप लो और अपनी शुरुआत करो, क्योंकि नई शुरुआत हमेशा छोटी होती है लेकिन वही आगे चलकर आपकी पहचान बन जाती है। तो कभी भी मतलब कोई एज नहीं है और कभी भी आप स्टार्ट कर सकते हो, बस थोड़ा सा माइंडसेट आपका होना चाहिए। मैं तो हमेशा कहती हूँ सीखने की भी कोई उम्र नहीं है, हम तो आज भी सीख रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और इतना कुछ जो बनाते हैं वो सीख सीख के ही बना रहे हैं। और मतलब आज का जो मैं बोलूंगी, जो आज की युग में वैसे भी देखिए आप, AI आ गया, इतने चैनल है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: आपकी पसंद का कोई भी काम आप यहाँ से सीख सकते हैं। कोई आपको क्लास नहीं जाना, कुछ नहीं करना, आपको सब कुछ आपके पास है।
0: बिल्कुल,
1: आप वहां से सीखिए और स्टार्ट कीजिए।
0: बिल्कुल, और बहुत खूबसूरत एक बात की आपने कि रीस्टार्ट बटन आप खुद दबाते हैं और कभी भी उसका कोई एज नहीं होती, कोई फ्रेम नहीं होता। बहुत ही सुंदर बात मैम। और कोई मैसेज अगर आप देना चाहें तो?
1: बस मैसेज तो स्पेशली लेडीज के लिए ही है, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप कोई भी ऐसा आपके सामने कोई इशू होता है, ऐसा आता है कि वो मुझसे बात करना चाहे, कोई स्पेशली लेडीज, कोई जिनको कहीं कुछ करना हो, तो तो मुझसे बात करवाई जा सकती है, मैं इस तरह से मोटिवेट कर ही सकती हूँ
0: जी
1: को कि वो स्टार्ट करे अपना।
0: बिल्कुल मैम। तो दोस्तों, जिंदगी के रंग कभी जिम्मेदारियों में छुपे होते हैं, कभी सपनों में, और कभी एक छोटी सी हिम्मत में। आज की महफिल में हमने ये महसूस किया कि नई शुरुआत के रंग कैसे होते हैं। थैंक यू सो मच मीना गुप्ता जी, आज हमारे साथ इतनी प्यारी और सच्ची सहज बातें साझा करने के लिए।
1: आप लोगों का कहना चाहूंगी कि मुझे आप लोगों ने ये मौका दिया और इसका भी समझा कि मैं कुछ दो शब्द आप लोगों से बात कर सकूं और लोगों को कुछ मोटिवेट कर सकूं।
0: नहीं, हम और बहुत बातें कर सकते थे, बट समय समय है और समय बलवान है, तो इसीलिए हमें हमारी कॉन्वर्जेशन रैप करनी पड़ेगी, वरना बातें बहुत सारी होती, बहुत प्यारी बातें होती और बहुत जिंदगी से जुड़ी हुई बातें होती, जो हमारे शो का पर्पस है, जो हमारे शो का एक उद्देश्य है कि दिल से जुड़ी हुई बातें दिल तक पहुंचे, जिंदगी के रंग गीतों के संग। आप सुन रहे थे जिंदगी के रंग गीतों के संग SN रेडियो पर। मैं हूं आपकी आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए रंग के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी के कैनवस को भरते रहिए। नमस्कार।
2: मगर अब जो आना तो धीरे से आना।
3: और दोस्तों, इसी के साथ आज के इस खूबसूरत सफर को बस यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आज की बातचीत और गीतों ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको कुछ नया सोचने की प्रेरणा दी होगी। फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान, एक नई कहानी और नए गीतों के साथ, जिंदगी के रंग गीतों के संग इस प्रोग्राम में। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए।

जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा, और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग। दोस्तों, आज का रंग है टैरो की सतरंगी दुनिया और मैं आपका दोस्त आलोक कुमार आपसे मुखातिब हूं। आज हमारे साथ हैं सुरभि चंद्रा, जो टैरो कम्युनिटी में चंद्रा के नाम से जानी जाती हैं। चंद्रा को टेलेटेल टैरो के नाम से भी जाना जाता है। फैशन और अपैरल इंडस्ट्री में 18 साल बिताने के बाद इन्होंने अपनी कॉलिंग पाई टैरो, रेकी और क्रिस्टल की दुनिया में। पिछले एक दशक से ज्यादा समय से चंद्रा ने न सिर्फ नेबुला जैसे अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर रीड किया, बल्कि अपने क्लाइंट्स के लिए 1-to-1 सेशन भी करती हैं। उनकी रीडिंग्स सिर्फ टैरो तक सीमित नहीं है, बल्कि वो लोगों को हीलिंग की समग्र गाइडेंस देती हैं। सोशल मीडिया पर भी चंद्रा अपने कंटेंट के जरिए न सिर्फ टैरो को सिंप्लीफाई करती हैं, बल्कि उसके आसपास फैली मिथ और फियर्स को भी दूर करने की कोशिश करती हैं। दोस्तों, आज की बातचीत का मकसद भी यही है कि हम टैरो को थोड़ा समझें, थोड़ा महसूस करें और शायद थोड़ा खुद को भी पहचाने। चंद्रा जी नमस्कार, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: आलोक जी, इंट्रोडक्शन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपके सभी श्रोताओं को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं इस अवसर के लिए आपकी बहुत आभारी हूँ और इस बातचीत के जरिए अपने छोटे से सफर और अनुभव को थोड़ा बहुत आपसे साझा करने की उम्मीद रखती हूँ।
0: जी बहुत बढ़िया। चंद्रा जी, आपकी जर्नी वाकई दिलचस्प रही, फैशन इंडस्ट्री से लेके टैरो तक। हमारे लिसनर्स के लिए अगर आप शुरुआत से बताएं ये रास्ता किस तरह से बना।
1: सच बताओ तो आलोक जी, रास्ता कोई प्लान के तहत नहीं था, कह सकते एक डिवाइन टाइमिंग और इंटरवेंशन रहा। हालांकि बीच शुरू से ही थे, मैं हमेशा से एक मेरिटोरियस स्टूडेंट थी और पढ़ाई की तरफ मेरा काफी रुझान था, लेकिन ये सिर्फ एकेडमिक्स तक सीमित नहीं था। क्या है कि बचपन से मेरी क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी के साथ साथ जो मेरा इंटरेस्ट था वो स्पिरिचुअलिटी, इसोटेरिक स्टडीज या मिस्टिकल सब्जेक्ट्स, जहां मेरे दोस्त कॉस्मिक और कार्टून्स की दुनिया को प्रेफर करते थे, मैं कीरो और लिंडा गुडमैन की दुनिया में खोई रहती थी। जी जी, तो क्या हुआ कि जब करियर चॉइस की बात आई तो एक टॉपर और साइंस स्टूडेंट होने के बावजूद भी मैंने डॉक्टर और इंजीनियर ना बनना चुनकर अपने क्रिएटिव इंक्लिनेशन को फॉलो किया। और जैसे कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मैंने फैशन और अपैरल की इंडस्ट्री में कदम रखा और 18 साल तक फैशन डिजाइनर और मर्चेंडाइजर के तौर पर काम किया। गिरामी गिरामी इंटरनेशनल ब्रांड्स है, उनके लिए मैंने काम किया और इस दौरान मुझे दुनिया भर में ट्रैवलिंग करने का भी मौका मिला। लेकिन ये सिर्फ मेरे लिए आप कह सकते हैं कि काम ही नहीं था, लेकिन अलग अलग कल्चर्स और पर्सपेक्टिव को समझने का, सीखने का, अनुभव करने का एक मौका था। और शायद उस वक्त मुझे महसूस नहीं हुआ, लेकिन ये जो एक्सपोजर और ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग या नेटवर्किंग जो है वो आज मेरे करंट पाथ में, जो कि लाइफ कोचिंग और हीलिंग वाला जो पर्पस है, कॉलिंग है, उस जर्नी का एक अहम हिस्सा बन गया, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन गई। तो यही दिलचस्प रहा इस पूरे प्रकरण में।

0: तो देखिए, जो उस जमाने में बच्चे कुछ और तरह की किताबें पढ़ते हैं, और आप कीरो और लिंडा गुडमैन पढ़ती थी। लिंडा गुडमैन से हम लोगों का भी बड़ा जुड़ाव रहा है। मैं जब पिलानी में पढ़ता था तो बड़ा उसको पढ़ के लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश किया करते थे हम
1: हाँ, मैंने भी शुरुआत यहीं से करी थी, लेकिन वैसे ही
0: लोग।
1: थोड़ा इम्प्रेस करने से आगे चली गई मैं।
0: तो चलिए, तो स्पिरिचुअलिटी में रुझान बचपन से था, लेकिन आपने फैशन के कैरियर को
1: कैरियर
0: चुना,
1: पर जी
0: ये
1: जी जी
0: शिफ्ट किस तरह से हुआ?
1: आलोक जी, जैसे कि मैंने कहा, शिफ्ट कभी ड्रामेटिक नहीं था, बल्कि एक ऑर्गेनिक ग्रोथ थी। जो साइंस और सेटल क्यूज थे, उन्होंने अपनी मेरी कॉलिंग की तरफ मुझे गाइड किया। एज आई सेड कि डिवाइन टाइमिंग और इंटरवेंशन ने भी अहम भूमिका निभाई। कहते हैं ना, एक दरवाजा बंद हुआ तो दूसरा खुला, और उसी दौरान मैंने, आपको जान के आश्चर्य होगा, लेकिन मैंने 2 दशकों तक एक बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी एज अ लाइफ कोच एंड अ काउंसलर काम किया।
0: अच्छा,
1: जी, और ये जो एक तरीके से जो लाइफ फिलोसफी है, वो आज मेरे काम में मेरी मदद करती है। तो एक वो बोलते ना, ऑन जॉब ट्रेनिंग की तरीके से ये सफर रहा, और एक के बाद एक कड़ी जुड़ती रही, और आज मैं आपके सामने हूँ।
0: तो यही विस्पर आपको आखिरकार टैरो तक लेकर आई है।
1: या यही विस्पर जो है, एक तरीके से मेरे अंदर की आवाज जो बन गई, जिसको मैं आई कुड नॉट इग्नोर एनी लॉन्गर, जो आपने बहुत अच्छे ब्यूटीफुली बोला उसको। और मेरा टैरो से जुड़ना एक नेचुरल प्रोग्रेशन का हिस्सा रहा। सही समय पर सही जगह पर टैरो ने मुझे ढूंढा, और मैंने टैरो को पाया, और तभी से एक नेवर एंडिंग लव अफेयर बन गया है। और इनफैक्ट जो एक चीज मैं बार बार बोलती हूँ, और जो वो ये है कि जापानीज कल्चर में एक शब्द होता है, इकिगाई, जो सिर्फ
0: हाँ,
1: जी एक शब्द नहीं, एक लाइफ फिलॉसफी है, जिसका मतलब होता है कि आप अपने हॉबी को अपना प्रोफेशन बना ले। और इसी सेंस में टैरो से मेरा परिचय हुआ, जो कि मेरा इकिगाई बना। और जो टाइमिंग की आप बात कर रहे हैं, वो ये है कि पैंडेमिक के बाद मुझे एक परफेक्ट समय मिला ना, जिसको मैं अपने कॉर्पोरेट करियर को ग्रेसफुली गुड बाय कह सकूं, और टैरो को अपना फुल टाइम ऑक्यूपेशन बना सकूं। जी आलोक जी।

0: चंद्रा जी, अब हम टैरो की बेसिक्स पर आते हैं। इसके पीछे कंसेप्ट क्या है, इसके मूल में क्या है, ये थोड़ा हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए प्लीज।
1: जी जी आलोक जी, आई थिंक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि टैरो के बारे में आजकल क्यूरियोसिटी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और ये जो आपने सवाल किया है बहुत अहम है। अगर अगर सिंपल शब्दों में बोलूं तो टैरो जो है वो 78 पत्तों का, 78 कार्ड्स का एक डेक है, एक गड्डी है।
0: अच्छा।
1: जो कि एक तरीके से जो ट्रेडिशनल हमारे ताश के पत्ते होते हैं, जो हम सब जिससे हम सब वाकिफ हैं, वो 52 पत्तों की होती है। लेकिन टैरो में 78 कार्ड्स होते हैं, 78 कार्ड्स होते हैं, जिसमें कि 22 मेजर अरकाना और 56 जो है माइनर अरकाना कार्ड्स होते हैं। इसके बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि समय की उसको ध्यान में रखते हुए, लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो 13वीं शताब्दी यूरोप में हुई थी। और शुरू में आपको अगेन जान के आश्चर्य होगा कि इसको प्लेइंग कार्ड्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन ये ऑर्डिनरी प्लेइंग कार्ड से भिन्न इसलिए है क्योंकि इसमें एक यूनिवर्सल विजडम, कॉस्मिक विजडम पर आधारित है, जो कि कह सकते हैं समय और सीमाओं की परे है ना। तो वो उसके बेसिस पे उसपे इंसाइट्स और गाइडेंस मिलती है। ओवर द इयर्स जो है एक आत्मचिंतन है और एक भविष्य दर्शन का जो एक साधन है, टूल्स ऑफ डिविनेशन जिसको हम बोलते हैं, वो बन गया है। और आज की तारीख में जो बोलें, जो आपका सवाल है कि आज टैरो केवल भविष्य बताने के काम नहीं आता, लेकिन एक जो हमारा सबकॉन्शियस है, जो अवचेतन मन जिसको हम बोलते हैं, उसको मिरर करता है। तो कहीं ना कहीं आलोक जी अगर ये बोलें कि आपकी इनसिक्योरिटीज, एंजाइटीज और इमोशंस को रिफ्लेक्ट करता है, एक आईना है टैरो, गाइड करता है कि आप किस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं और सही चॉइस करने में आपकी मदद करता है विदाउट प्लेइंग द विक्टिम कार्ड, जो कि हमारे लिए बहुत नेचुरल हो जाता है ना कि हम किसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं तो किसी और पर ब्लेम शिफ्ट कर दें, तो उसके ओवर एंड बियॉन्ड जाके आपकी आपको राह दिखाता है।
0: तो इसका तो ये मतलब हुआ कि ये भविष्य बताती है या खुद को समझने का एक माध्यम है, एक तरह से एक मीडियम है कि हम टैरो के माध्यम से खुद को भी समझ सकते हैं।
1: अब ये बहुत अच्छी बात बोली आपने और यही इसका निष्कर्ष है कि ये सिर्फ भविष्य नहीं बताता, क्योंकि एक वो उसका बहुत ही एक छोटा परिचय हो जाता है। मैं हमेशा कहती हूँ टैरो डज नॉट प्रेडिक्ट, इट रिफ्लेक्ट्स, इट गाइड्स।
0: अच्छा।
1: तो एक तरीके से आपको एम्पावर करता है ताकि आप अपने डिसीजंस और अपने इमोशंस को क्लियरली देख पाए, एक बर्ड्स आई व्यू। और जो कि मेरा फेवरेट एग्जांपल है, जैसा मुझे आप अक्सर देखोगे मेरे सोशल मीडिया पे भी कहते हुए, बोलते हुए, जिक्र करते हुए, कि टैरो एक जीपीएस की तरीके से है। ये एक आपको पाथ दिखाता है, लेकिन जैसे आप अपने गंतव्य तक कहीं पहुंचना चाहते हैं और अपनी गाड़ी में बैठे हैं, आपको एक जीपीएस सेट करना पड़ता है, करना होता है, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको ड्राइव तो करेंगे तभी आप अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे ना, उसी प्रकार से। हाँ, तो टैरो आपको रास्ता दिखाता है कि आपकी लेकिन आपकी जो चॉइसेस हैं उसके बेसिस पे वो आउटपुट आपके लिए आता है। टैरो इनसाइट्स से आप अपने पुराने पैटर्न्स को छोड़ के ना आप बेटर वर्जन बन सकते हो, अपने आप जो भी परिस्थिति में हो उससे निकलने की आप क्षमता रखते हो। तो चाहे वो स्पीड ब्रेकर्स आए या स्मूथ राइड आए, आप अपनी जर्नी को एंजॉय कर सकते हो और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हो।

0: एग्जैक्टली यही चीज है जो मैं अपने क्लाइंट्स को भी इंकरेज करती हूँ कि भाई आपको टैरो रीडिंग के लिए तो आपको आ गए, आपको रास्ता भी मिल गया, लेकिन आपको एक विशफुल थिंकिंग के ओवर एंड बियॉन्ड आपको जो टूल्स चाहिए उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसमें स्पिरिचुअलिटी बहुत बड़ी साधक होती है।
1: चलो तुम

0: एसेंशियली टैरो और स्पिरिचुअलिटी आपके लिए अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं,
1: वो एक दूसरे के पूरक ही आप मान सकते हैं, क्योंकि
0: सप्लीमेंट्री
1: हाँ सप्लीमेंट्री है, क्योंकि मैं स्पिरिचुअली जब तक जब अपने आप को ग्राउंडेड रखती हूँ तभी मैं दूसरों को मीनिंगफुल और एम्पावरिंग गाइडेंस दे पाती हूँ, राइट,
0: जी।
1: बिकॉज दिस इज ऑल डीलिंग विद एनर्जीज।
0: अब ये बताइए कि जो लोग टैरो आजमाना चाहते हैं लेकिन
1: जी
0: डरते हैं या
1: हाँ हाँ
0: संकोच करते हैं,
1: करेक्ट
0: उन्हें
1: हाँ
0: आप क्या कहना चाहेंगी?
1: देखिए अब आज के तारीख में बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया प्रेजेंस एंड अवेयरनेस ना, टैरो अब जो है वो अब एक तरीके से हमारे आम घर घर की कहानी तो कहानी का हिस्सा बन रही है, या एक तरीके से जनरल परसेप्शन का एक हिस्सा बन रही है, और इसमें ये बहुत जरूरी और सुंदर सवाल हो जाता है। लेकिन टैरो को लेकर कुछ बातें समझना बहुत जरूरी है, और उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें कोई अंधविश्वास नहीं है, क्योंकि टैरो का जो परसेप्शन है, प्रोजेक्शन है, आम दुनिया में अभी भी बहुत ज्यादा भ्रांतियां हैं इसको लेके। हाँ, तो ये कोई अंधविश्वास नहीं है, कोई ईवल प्रैक्टिस नहीं है, इसमें डरने जैसा कुछ नहीं है। दूसरी बात ये है कि कोई ये कोई इम्पोर्टेंट है समझना हमारा हम सबके लिए, ये कोई रैंडम प्रेडिक्शन देने का टूल भी नहीं है, जो कि अनफॉर्चुनेटली ऐसी धारणा हो गई है। हाँ, कि हमारा कोई फ्यूचर, क्योंकि हमारा कोई फ्यूचर कोई पत्थर की लकीर नहीं होता, और टैरो हमेशा फ्रीविल के साथ काम करता है। तो आपके आउटकम आपकी चॉइसेस पर आधारित होते हैं, और अगर आप हिम्मत से काम लेते हैं, समझ से काम लेते हैं, क्लैरिटी के साथ काम लेते हैं, तो यही फर्क बनता है आपके मेक और ब्रेक सिचुएशन में। तीसरे और इम्पोर्टेंट बात जो हम लोग ने पहले भी जिसका जिक्र किया कि एक आईने की तरीके से काम करता है, जो कि आपके अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड को रिफ्लेक्ट करता है। तो एक तरीके से जब आप टैरो के रीडिंग के लिए आते हैं तो एक आपको एक न्यूट्रल और थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव मिलता है, जिसमें से आलोक जी बहुत आसान होता है।

0: हमें अपने लिए एक विक्टिम मान के चलना और एक ब्लेम गेम में इंडल्ज करना कि ये मेरी वजह से नहीं है या मेरी परिस्थिति ऐसी है क्योंकि वो दूसरे ने ऐसा किया। तो जब आप टैरो से आप सवाल पूछने आते हैं तो एक तरीके से थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव मिलता है जिसमें आपको समझ आता है कि आपके आपके जो अकाउंटेबिलिटी है वो तय हो पाती है। इसलिए सही सवाल पूछना बहुत जरूरी है, इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि वाई एंड वेन, क्यों मेरे साथ हो रहा है और कब मेरा सिचुएशन ठीक होगी। अगर आप पूछें कि मैं क्या कर सकती हूँ इस परिस्थिति में अपने आप को उबारने के लिए, तो वो बेहतर एक आपको एक आयाम मिलता है, बेहतर आपको एक समझ और एक गाइडेंस मिलती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सही गाइडेंस के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने रीडर का पढ़ने का स्टाइल समझें और एक
1: जी
0: सेफ रिस्पेक्टफुल एनवायरमेंट में रीडिंग लें। आप समझ सकते हैं आलोक जी, आजकल इंटरनेट के माध्यम से इतना सब कुछ, हर दूसरा आदमी सब कुछ है, एवरीवन इज अ सिंगर, एवरीवन इज अ टैरो रीडर, एवरीवन इज एन एक्टर। हाँ, तो लाइन ड्रॉ करनी बहुत जरूरी है, स्पेशली टैरो के केस में, क्योंकि मेरे पास लोग आते हैं जो कि लाइफ एंड डेथ सिचुएशन से जूझ रहे होते हैं। तो एक ये एक तरीके से रीडिंग ही नहीं, एक थेरेपी है, एक काउंसलिंग है, एक मेंटल साइकोलॉजिकल काउंसलिंग है। तो बहुत जरूरी है कि जो लोग टैरो से डरते हैं तो वो उसका उसका कारण ये हो सकता है कि उनके लिए कोई नेगेटिव स्टाइल ऑफ रीडिंग का सामना हुआ हो, जहां पे जो बातें कही गई हैं वो क्लिकबेट या डराने वाली हो। तो मेरा सच्चा सुझाव यही रहेगा कि ऐसे रीडर से थोड़ा दूर रहें और थोड़ा अपना अपना आप जो बोलते हैं ना, एक अपनी समझ लगाएं, एक सही बेहतर रीडर और रीडिंग स्टाइल से आइडेंटिफाई और चुनने के लिए, तो इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं होगी।
1: इसका मतलब तो ये हुआ कि आपके अंदर खुद कोई एक कोई खास बिलीफ सिस्टम या फेथ होना चाहिए अगर आप टैरो की दुनिया को आजमाना चाहते हैं। अंदर से आपको स्ट्रोंग होना चाहिए, क्या करना चाहिए?
0: देखिए, बिलीफ सिस्टम या फेथ की तो उतनी जरूरत नहीं है जितनी क्लैरिटी की जरूरत है ना। तो
1: जी
0: बिलीफ वो ओवर एंड बियॉन्ड एनी फेथ और बिलीफ सिस्टम है। बस जो आप जो ये जो पूछ रहे हैं, इसमें कोई रिलीजियस फेथ या बिलीफ सिस्टम नहीं है। इफेक्टिव रीडिंग के लिए बस इतना काफी है कि आपका ओपन हार्ट और माइंड होना चाहिए ना, जिसको हम बोलते हैं मोटे शब्दों में। और जैसा कि मैंने कहा कि वाई और वेन से आप के बजाय आपके जो अगर सवाल सवाल अगर हाउ और व्हाट पे होंगे तो वो आपको एम्पावरिंग इंसाइट दिलाते हैं। तो एक ओपन हार्ट एंड माइंड और दूसरा सही सवाल, और तीसरा जो ये बात है कि जो जो रिसीवर है, जो क्वेरेंट है, जो उसका जो एटीट्यूड और एप्टीट्यूड है, हाँ, अगर वो सही मायने में पॉजिटिव होता है ना, अफर्मिंग होता है, तो एक डीपली सेटिस्फाइड रीडिंग एक्सपीरियंस बन जाती है। तो एक चीज का बस मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी के श्रोताओं को कि जब आप रीडिंग सेशन के लिए, टैरो सेशन के लिए आइए, तो आप ये मत सुनने आइए कि एक इमोशनल वैलिडेशन नहीं, कि जो मैं सोच रहे हूँ वही होना चाहिए और कुछ और आप सुनने या समझने के लिए तैयारी ना होना। क्योंकि टैरो आपको हमेशा वही बताएगा जो शायद आप सुनना नहीं चाहते, लेकिन जरूरी हो आपके वो सुनने के लिए।

0: चले तो दिल पे चले कटारी।
1: है मीठी छुरी ये जालिम नजर तुम्हारी।
0: तू झोंके चले तो दिल पे चले कटारी।
1: है मीठी छुरी।

0: तो चंद्रा जी, अब आने वाले समय में टेल टेल टैरो या आपके सफर में हमें क्या-क्या और देखने को मिलेगा?
1: आलोक जी, देखिए, मैंने बहुत पहले ये तय कर लिया था कि मैं किसी रेस या नंबर चेस का कोई हिस्सा नहीं बनना है। जो मेरा कमिटमेंट है वो इससे कहीं गहरा है, और मैं टैरो को एक टूल और सेल्फ अवेयरनेस के टूल के रूप में आप सबके लिए, हम सबके लिए एक्सेसिबल बनाना चाहती हूँ। और मेरा फोकस यही रहेगा कि मैं हर सीकर को हैंड होल्ड कर सकूं। आज 10 से 12 साल हो गए मुझे पढ़ते हुए, और मेरा जो थोड़ा बहुत निचोड़ है मेरी जर्नी का, वो यही है कि आज भी 4, 5, 6 साल से लोग लगातार पलट पलट के आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने उनको एक तरीके से, जिसको बोलते हैं ना कि उनकी फाउंडेशन, टैरो को उनके लिए एक्सेसिबल किया है, जिसमें वो सेल्फ ग्रोथ का उसको एक जरिया बना सकते हैं। तो हर एक एक्सचेंज मेरे लिए भी उतना ही एक नया लेसन और एक सबक होता है, जिसमें एक मैं म्यूचुअल ग्रोथ का अनुभव करती हूँ। और जो भी मेरे पास टूल्स हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो या इन पर्सन हो, वो मैं बिना किसी दौड़ भाग के, बस इस पर्पस के साथ मैं इसको, इस मुकाम को एक आगे बढ़ाना चाहती हूँ। और आपके अगर कोई भी लिसनर का मन हो, किसी भी श्रोता को मन हो, जिनके जिनके दिल में कोई भी सवाल गुलबुला रहा हो, तो दे आर मोर देन वेलकम टू फाइंड मी, और मैं अपनी जो भी लिमिटेड जर्नी के साथ उनसे शेयर करके, आई वुड लाइक टू वॉक द पाथ विद देम। इट वुड बी माई ऑनर।

0: आता है।
1: तो फिर चलते चलते ये भी बता दीजिए कि श्रोता आप तक अगर उनको टैरो रीडिंग के लिए या किसी और चीज के लिए आपसे संपर्क करना हो तो किस तरह पहुंच सकते हैं।
2: देखिए, सबसे पहले तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी आप सबसे हाथ जोड़ के कि सबसे टैरो को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि जाके आप अपने लिए टैरो डेक खरीदे, क्योंकि मेरा कभी भी रीडिंग स्टाइल ये नहीं रहता, ये नहीं है कि आप मेरे पास ही आए टैरो रीडिंग के लिए, क्योंकि एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट है सेल्फ अवेयरनेस के लिए। और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ रूमी के शब्दों में, व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू। तो यदि आप सुन रहे हैं तो यूनिवर्स का एक ऑस्पिशियस साइन है कि आप भी अपनी सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी को शुरू कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसके लिए अगर आपको कोई मदद चाहिए, अगर चंद्रा आपके किसी भी तरीके से आपके उसमें शामिल हो सकती है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर टेलर टेल टैरो और यूट्यूब पर टेलर टेल टैरो के नाम से पा सकते हैं। और मेरी सोल फैमिली जो हर सीमा और हर डेमोग्राफिक से परे है, वो दिन ब दिन बढ़ रही है, और सच कहूँ तो आप सभी से जुड़ना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो आई विल बी ट्रूली डिलाइटेड टू हियर फ्रॉम यू।

0: अच्छा, इसका मतलब है कि हम भी एक टैरो का डेक खरीद सकते हैं,
1: बिल्कुल
0: इज इट
1: खरीद
0: सो?
1: सकते हैं, बिल्कुल खरीद सकते हैं आलोक जी। एंड
0: ओके
1: माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू बी, वाई डोंट वी बिगिन विद यू, प्लीज गो अहेड एंड बाय आपके आपका
0: बिल्कुल।
1: जो लार्ज साइज पिज्जा आता है वीकेंड पे, उससे सस्ता इन्वेस्टमेंट है और बहुत
0: तो
1: बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है जी
0: पर
1: आलोक जी।
0: हमें इंटरप्रिटेशन कैसे कर पाएंगे, हम क्या समझ पाएंगे उसको, अगर मान लो मैं खरीद लिया किसी ने, तो कैसे
1: आलोक जी
0: हुआ?
1: टैरो एक तरीके से आपका हम सफर है, जिसको आप अपने आप वो एक वो आप खुद ब खुद, जैसे मैंने बोला ना, मैंने टैरो को पाया और टैरो ने मुझको पाया, तो
0: ओके
1: एक बार ठीक है। हाँ, उसके लिए ऐसा भी नहीं है कि कुछ एडुकेशन और उसके अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं, और उसके लिए मैं हूं ना
0: ओके
1: हाँ,
0: ओके,
1: तो वो
0: चलिए
1: गाइडेंस
0: चलिए,
1: मैं दिखाऊंगी जी।
0: ये हमारा टेक अवे हो गया आज
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: का।
1: बिल्कुल आलोक जी,
0: तो चलिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत आपका आभार और शुक्रिया चंद्रा जी, आपने अपना कीमती समय दिया, हमारे श्रोताओं से सारी बातें शेयर की, और मैं मानता हूं कि आपकी आपकी जो गाइडेंस है वो बहुत ही उपयोगी रही। श्रोताओं को अपने टैरो को सिर्फ मिस्टिकल या एंटरटेनमेंट टूल नहीं, बल्कि एक मिरर, गाइड और एक सशक्त करने के माध्यम के रूप में दिखाया है आपने, तो बहुत ही आपका शुक्रिया, थैंक यू।
1: धन्यवाद। मुझे भी बातचीत बहुत अच्छी लगी और मैं दिल से आभारी हूँ आपसे इस खूबसूरत अवसर के लिए और अपनी जर्नी आप सबसे साझा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। लव एंड लाइक यू ऑल योर लिसनर्स।

दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों, आज के कलाकार प्रोग्राम की अदाकारा हैं काजोल देवगन। शादी से पहले इनका नाम काजोल मुखर्जी था। अजय देवगन से शादी के बाद काजोल देवगन हुआ। आइए सुनते हैं इन्हीं की फिल्म का ये गीत।

काजोल देवगन का जन्म 5 अगस्त 1974 को बॉम्बे में ही हुआ। इनकी माताजी हैं तनुजा, जो कि खुद एक बहुत सफल अभिनेत्री रहीं। आइए सुनते हैं काजोल की ही फिल्म का ये सुंदर सा गीत।

0: कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं, यानी कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।
1: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
2: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

काजोल अपने आप को बहुत ही शरारती, बहुत ही जिद्दी और बहुत ही स्ट्रांग अपनी यंग एज में मानती हैं। वो मानती हैं कि उनके पेरेंट्स को उन पर बहुत नाज रहा और वो भी अपनी मां तनुजा की ही तरह काफी सफल अभिनेत्री रही। लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

काजोल की ज्यादातर फिल्में शाहरुख खान के साथ रही और हमेशा हिट ही रही। लीजिए सुने इनकी ही फिल्म का ये गीत।

1995 से 1998 के बीच में काजोल सबसे ज्यादा सफल अभिनेत्रियों में गिनी गईं। लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का एक और गीत।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं समीर, आप मेरे साथ है ना। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है काजोल की ही फिल्म का एक और गीत।

जी दोस्तों, पेश खिदमत है बेहद खूबसूरत बेहद प्रतिभाशील अभिनेत्री काजोल देवगन की एक और फिल्म का गीत।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम की अदाकारा हैं दिव्या भारती। दिव्या भारती जी का जन्म 25 फरवरी 1974 में हुआ था। ये हिंदी फिल्मों की ऐसी अभिनेत्री थीं जिनकी अभिनय विविधता ने उन्हें अपनी पीढ़ी की सबसे आकर्षक युवा अभिनेत्री होने का गौरव दिया। ये पेशे खिदमत है उनकी फिल्म का ये गीत।

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, 90 की दशक से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दिव्या ने कई बेहद सफल फिल्मों में अभिनय किया। हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने दक्षिण भारतीय फिल्मों में भी अभिनय किया। लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

0: कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती हैं और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।
1: 1992 से लेकर 1993 यानी कि सिर्फ एक साल में ही दिव्या भारती ने मात्र 19 साल की उम्र में 7 हिंदी फिल्में और 7 दक्षिण भारतीय फिल्में की। इतने कम समय में इतनी सारी फिल्मों करने का उन्हें ये उपलक्ष्य हमेशा दिया गया। लीजिए सुनिए उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

सुने सरसाए सांप सुने सरसाए साए साए सुरमा सासा संग समाए समय सबक समझाए खोखा खोखा जी मेरा खोखा खोखा फांसी फंदा फुसकी फांके फुनगी फन फैलाए फिरते फिरते फेरा फेरी फेरे से

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। हालांकि दिव्या भारती को अपने पूरे करियर में कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने खुद को ढूंढ ही निकाला और बॉलीवुड में एक सफल मुकाम बनाया। लीजिए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये गीत।

0: मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ समीर। आप मेरे साथ है ना?
1: टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के

0: गजलों के साथ के प्रोग्राम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे प्रोग्राम में जो शायर हैं उनका नाम है संदीप बहल। बाकी की बातचीत हम संदीप जी से ही करेंगे और जानेंगे उनके बारे में और उनकी गजलें सुनेंगे। संदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। संदीप, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपना परिचय दें जिससे श्रोता आपको जान सके।
1: मेरा नाम संदीप बहल है, मैं कानपुर से हूँ और संदीप के उपनाम से गजलें लिखता हूँ। अभी हाल ही में मेरी किताब सिर्फ मोहब्बत प्रकाशित हुई है और इसी बस इतना ही मेरा परिचय है। और क्योंकि टाइम की कमी के लिए हिसाब से बोला तो बहुत कुछ जा सकता, लेकिन संक्षेप में यही है। बाकी एलआईसी में मैं जॉब करता हूँ और कानपुर को बिलोंग करता हूँ।
0: बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच संदीप जी, थैंक यू सो मच। तो अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी पहली गजल पढ़ें।
1: पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैं ये मौका देने के लिए। मैं अपनी पहली गजल के मैं कुछ चार पांच मिसरे ही पढ़ूंगा बस, हर एक जो भी होगी पहले ही है मेरी जो पसंदीदा।
0: इरशाद।
1: लोग पढ़ लेते हैं आंखों से मेरे दिल के हालात, लोग पढ़ लेते हैं आंखों से मेरे दिल के हालात, अब मुझसे तेरे गम की हिफाजत नहीं होती।
0: क्या बात है।
1: अब मुझसे तेरे गम की हिफाजत नहीं होती, उसकी चाहत की बेड़ियों में कैद है मेरी जिंदगी, उसकी चाहत की बेड़ियों में कैद है मेरी जिंदगी, लाख करूं कोशिश लेकिन बगावत नहीं होती।
0: क्या बात।
1: लाख करूं कोशिश लेकिन बगावत नहीं होती, लोग पढ़ लेते हैं आंखों से मेरे दिल के हालात, अब मुझसे तेरे गम की हिफाजत नहीं होती। इतनी मासूमियत भरा वो इनकार करना उनका, इतनी मासूमियत भरा वो इनकार करना उनका, हरेक को नसीब ऐसी नजाकत नहीं होती, हरेक को नसीब ऐसी नजाकत नहीं होती, अब मुझसे तेरे गम की हिफाजत नहीं होती। उसकी हकीकत से यहां सारा जहां वाकिफ है, उसकी हकीकत से यहां सारा जहां वाकिफ है, पर उसे बेवफा कहने की हिमाकत नहीं होती, पर उसे बेवफा कहने की हिमाकत नहीं होती। लोग पढ़ लेते हैं आंखों से मेरे दिल के हालात, अब मुझसे तेरे गम की हिफाजत नहीं होती।
0: बहुत खूब, बहुत बहुत खूब,
1: धन्यवाद।
0: अपने दिल के जज्बात आपने लफ्जों में पिरो कर जो पेश किया है वो काबिले तारीफ है भाई, बहुत बहुत खूब,
1: धन्यवाद।
0: तो संदीप भाई, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने पसंद के गजल गायक की कोई गजल बताएं जो हम अपने दोस्तों को सुनवा सकें।
1: मेरे एक, वैसे तो बहुत सारे गजल गायक मेरे हैं जिनको मैं पसंद करता हूँ, बट एक जो दो भाई हैं जो मिलके गाते हैं, अहमद हुसैन एंड मोहम्मद हुसैन
0: जी,
1: उनकी एक गजल है, दो जवां दिलों का गम दूरियां समझती हैं, कौन याद करता है हिचकियां समझती हैं। बेहद उम्दा गजल है, दो जवां दिलों का गम दूरियां समझती हैं, कौन याद करता है हिचकियां समझती हैं।
0: तो यही गजल हम अपने दोस्तों को सुनवाएं?
1: जी बिल्कुल, अगर मेरी पसंद से आप सुनवाए तो ये मुझे बहुत पसंद है।
0: आइए दोस्तों सुनते हैं यही प्यारी सी गजल संदीप जी की फरमाइश पर।

0: संदीप भाई, आपसे छोटा सा ही सवाल पूछना चाहूंगा, आपकी सबसे फेवरेट गजल कौन सी है और क्यों, या कोई पसंदीदा गजल हो जो आपको पसंद आती है?
1: मुझे अजीत सिंह की गई गजल अक्सर गुनगुनाने का मन करता और मुझे बेहद पसंद है। हालांकि गुलाम अली ने भी गाई है और लोगों ने भी गाई है, बट जगजीत की आवाज में ज्यादा सुना मैंने
0: जी।
1: कल चौदहवीं की रात थी, बर रहा तर चर्चा तेरा।
0: बहुत खूब, बड़ी प्यारी सी गजल।
1: हाँ, मुझे बेहद पसंद है ये, और मुझे जब मौका लगता है मुझे सुन के बड़ी ताजगी महसूस होती है।
0: क्या बात है। तो संदीप भाई, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी अगली गजल या नज्म या अपना कलाम हमें और हमारे सुनने वालों को सुनाएं।
1: मेरी अगली जो गजल मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगा, उसमें मैंने इन बातों को लिखने की कोशिश की है कि जो अक्सर हम लोग अपनी जिंदगी में कई किरदार निभाते हैं, कहीं पिता का, कहीं पुत्र का, कहीं एम्प्लॉय का, कहीं एम्प्लॉयर का, कहीं रिलेशन में, तमाम तरीके के रोल्स दिन भर प्ले करते हैं। तो उसी में इतना आदमी खो जाता है कि अपने खुद के लिए समय नहीं मिलता।
0: जी,
1: तो जब कभी मौका लगता है लिखने का तो यही प्रॉब्लम मेरे साथ भी जिंदगी भर रही, तो उसी पे मैंने लिखा था, मेरे हिस्से के लम्हे तो मेरे पास ही रहने दो, मेरे हिस्से के लम्हे तो मेरे पास ही रहने दो, किरदारों के लिबास कभी तो दूर रहने दो।
0: क्या बात है।
1: किरदारों के लिबास कभी तो दूर रहने दो, वक्त को वक्त देने का सलीका भी सीखो।
0: वाह।
1: वक्त वक्त को वक्त देने का सलीका भी सीखो, कुछ तो मेरे यार खुदा के भरोसे भी रहने दो।
0: बहुत खूब।
1: तो मेरे यार खुदा के भरोसे भी रहने दो, बदलते हालात बहुत कुछ बदलना चाहेंगे, बदलते हालात बहुत कुछ बदलना चाहेंगे, रोको मत तुम इन्हें अपना काम करने दो, रोको मत तुम इन्हें अपना काम करने दो, किरदारों के लिबास कभी तो दूर रहने दो, किस्मत के किस्से सुनाकर कुछ ना सोचो।
0: जी,
1: ये लाइन मुझे बहुत पसंद है, अक्सर लोग करते हैं, मैंने भी किया अपनी जिंदगी में
0: जी,
1: बट अंत में जो पाया वो मैं लिख रहा हूं कि किस्मत के किस्से सुनाकर कुछ ना सोचो, तकदीर की स्याही को तुम बस गहरा रहने दो।
0: क्या बात है।
1: तकदीर की स्याही को तुम बस गहरा रहने दो, मेरे हिस्से के लम्हे तो मेरे पास ही रहने दो, किरदारों के लिबास कभी तो दूर रहने दो।
0: बहुत खूब, बहुत खूब,
1: धन्यवाद।
0: बहुत खूब,
1: मैं जोड़ पा रहा हूँ आपको पसंद आ रही है, मेरी खुशकिस्मती।
0: अरे सर नहीं, बिल्कुल अल्फाजों में सच्चाई झलक रही है, अल्फाजों में दिल का दर्द झलक रहा है, दिल की खुशी झलक रही है, दिल के जज्बात झलक रहे हैं, तो उसमें कोई दो राय हो नहीं सकती कि अगर आपके अल्फाज या आपके संदेश हमारे दिल तक पहुंचे तो आह या वाह तो निकलेगी ही।
1: सही कहा, सही बात कही, आह या वाह तो निकलेगी,
0: निकलेगी ही साहब, तो वो आपने आ सुनी की वाह ये आपके ऊपर है। तो संदीप भाई, आप प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपके किसी पसंदीदा गजल गायक की कोई गजल हमें बताएं।
1: एक हम सब लोगों की पसंदीदा गजल रही है, मैं पिछले 20 साल से देख रहा हूं मेरी जनरेशन को, जब मैं यंग था तब लोगों को पसंद थी, आज मेरा बेटा भी इस गजल को सुनता है और लोग भी सुनते हैं, तो ये अल्फाजों में ही आदमी अमर हो सकता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: किस तरीके से अमर हुआ है गाने वाले ने, फरीदा खानम जी की गजल है कि आज जाने की
0: जिद ना करो। क्या बात है, बेहतरीन बेहतरीन,
1: बेहद पसंद है, और बहुत वर्जन इसके गाए गए लेकिन फरीदा खानम जैसा मुझे कोई नहीं लगा, सॉरी टू से, बट उनका अंदाज बयान कुछ अलग था, जो दिल को उन्होंने छुआ है और जो इसके लिरिक्स में कमाल है वो अंदर तक छूता है।
0: बेहतरीन, बहुत खूब, बहुत खूब। तो आइए दोस्तों, फरीदा खानम की आवाज में संदीप बहल साहब की फरमाइश, ये गजल सुनते हैं।
2: आज जाने

0: संदीप भाई, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बस एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा कि यूं तो पूरी जिंदगी आपके सामने है जो आपने जी है, फिर भी कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिला हो आपकी पूरी जिंदगी में जिस जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग आपको लगा हो कि वैसा इंटरेस्टिंग पर्सन फिर कभी नहीं मिला?
1: बड़ा मुश्किल है इतनी लंबी लिस्ट में से किसी एक का नाम लेना।
0: जी हाँ बिल्कुल, लेकिन फिर भी क्या होता है कभी गाये बगाये अचानक से दिमाग में कौंध जाता है कि यार उस शख्स से मुलाकात हुई थी और वैसा तो फिर कभी महसूस नहीं हुआ।
1: मेरे जो मुझ में कमी है वो जब मुझे किसी दूसरे के अंदर खासियत दिखती है कि इसने इस सर्कमस्टांसेस को कैसे हैंडल किया और ये कितना खुश है, तो मैं उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। मेरे एक कलीग थे, रिटायर हो चुके हैं, वो मेरे ऑफिसर थे, मेरे बॉस थे, बट उनसे मैंने लाइफ के बारे में बहुत सीखा। जिंदगी में मुस्कुराना कैसे है, जिंदगी को कैसे लाइटली लेना है, जिंदगी को जीना कैसे है, हर परिस्थिति में कोई मान के कि उसकी रजा है उसी में राजी रहना, ये जो कला है ना ये मुझे सीखने में बहुत देर लगी, अभी भी शायद पूरी तरह नहीं सीख पाया हूं। बट वो व्यक्ति जो है थे मेरी जिंदगी में वो परिपक्व थे बिल्कुल
0: जी।
1: वो कहते थे, वो लेट गो वाली जो उनकी एक स्टाइल थी ना, कि वो कहते थे कि अगर परिस्थितियां तुम्हारे वश में नहीं है तो शांत हो जाओ, और शांत होना ही बहुत मुश्किल होता उस वक्त उस कठिन दौर में खुद को कंट्रोल कर पाना। बट मैंने प्रयास किया जब भी जिंदगी में उनको याद करके और उस वक्त को निकालने की कोशिश की, तो जब वो वक्त बीत गया और मैं सफल हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और जब भी वो खुशी महसूस हुई तो उनकी याद जरूर आती।
0: बहुत खूब, बहुत खूब।
1: मैं हमेशा उनका ऋणी हूं कि उन्होंने गाए बगाए मुझे बहुत सी बातें बताई, उनका ये एक पहलू मैं, क्योंकि उनकी जिंदगी में खुद इतने गम थे कि कोई व्यक्ति उनसे 1% भी उनके बारे में जान नहीं सकता,
0: ओहो,
1: कोई भाप ना सका घाव कैसा था, मेरा रख रखाव ही ऐसा था।
0: वाह क्या बात है। क्या
1: ये जो बात है ना उनपे बिल्कुल फिट बैठती है।
0: बहुत खूब।
1: और घावों का ऐसा रख रखाव रखने की कोशिश मेरी जारी है, मैं भी करता हूँ, बट अभी उतना सफल नहीं हो पाया
0: जी। ओके ओके, बहुत बढ़िया संदीप भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम में और आपसे गुजारिश करूंगा कि एक गजल और सुनाए हमें।
1: मैं इसी से जो बात अभी आपने छेड़ी उससे जुड़ी हुई गजल ही मेरे जहन में आ गई है
0: जी,
1: और मैं आपको सुनाता हूं। अपने हाथों से फूलों को यूं मसलता क्यों है
0: जी,
1: अपने हाथों से फूलों को यूं मसलता क्यों है, क्या वजह है खुशबू से इतना जलता क्यों है?
0: ओहो,
1: क्या वजह है खुशबू से इतना जलता क्यों? अभी भी तेरी पहुंच से बाहर गया नहीं हूं मैं
0: जी,
1: अभी भी तेरी पहुंच से बाहर गया नहीं हूं मैं, पाने की कोशिश तो कर इतना डरता क्यों है?
0: क्या बात है,
1: पाने की कोशिश तो कर इतना डरता क्यों है? वही बात अलग अलग तरीकों से कही हमने, वही बात अलग अलग तरीकों से कही हमने, लेकिन अब तक मुझे वो कायर समझता क्यों है?
0: क्या बात है,
1: अब तक मुझे वो कायर समझता क्यों है? दूरी इतनी भी नहीं कि नजदीक ना आ सको, दूरी इतनी भी नहीं कि नजदीक ना आ सको, लोगों का तंज तुझे इस कदर अखरता क्यों है?
0: क्या बात है,
1: लोगों का तंज तुझे इस कदर अखरता क्यों है? अपने हाथों से फूलों को यूं मसलता क्यों है, क्या वजह है खुशबू से इतना जलता क्यों?
0: बहुत खूब, बहुत खूब।
1: इसका आखिरी मिसरा मेरे दिल से निकला हुआ है कि खुद खड़े होना भी जिनके लिए मुश्किल हो
0: जी।
1: समीर जी, मैं चाहूंगा इसको आप दिल से सुने और ये दिल तक पहुंचेगा, मेरा वादा है
0: जी। इरशाद,
1: खुद खड़े होना भी जिनके लिए मुश्किल हो, उनसे मत पूछना कि कोई और चलता क्यों।
0: अच्छा जी, क्या बात है, क्या बात है।
1: उनसे मत पूछना कि कोई और चलता क्यों।
0: ओहो,
1: अपने हाथों को फूलों को यूं मसलता क्यों है, क्या वजह है खुशबू से इतना जलता।
0: बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत जोरदार। क्या कहा है साहब, क्या कहा है, वाह। सुन के लुत्फ आ गया साहब, सुन के लुत्फ आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो संदीप भाई, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने किसी पसंदीदा गजल गायक की कोई गजल बताएं हमें, जो हम अपने दोस्तों को सुनवाएं।
1: और फिर वही हम सबके फेवरेट मेहंदी हसन साहब
0: जी,
1: और वो फेमस गजल रंजिश ही सही दिली दुखाने के लिए।
0: वाह जी वाह, क्या
1: बात है। है तो जमाने के लिए बेहतरीन गजल, बेहतरीन, बेहद उम्दा गजल, बेहद उम्दा अशार इसके, और उतनी ही बखूबी इसको निभाया उन्होंने अपनी आवाज।
0: बेहतरीन,
1: दुखाने के लिए।
0: आए दोस्तों, सुनते हैं मेहंदी हसन साहब की आवाज में ये प्यारी सी गजल संदीप जी की फरमाइश पर।

0: तो संदीप भाई, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आपकी गजलों में, आपके लफ्जों में काफी दर्द सुनाई देता है, ऐसा कुछ अगर आप इजाजत दे तो पूछूं कि क्या कुछ ऐसा गुजर गया जिंदगी में जिसने आपको मजबूर किया और आपके लफ्जों में इतना दर्द उभर आया जो आपने लिखा?
1: निश्चित रूप से भाई, कुछ ना कुछ तो जिंदगी में ऐसा हुआ ही होता है, क्योंकि कलम कोई यूं ही नहीं उठाता
0: जी।
1: बस ये होता है कि लिखने वाला जरूरी नहीं कि उन हालातों से गुजरा हो। तो मैंने अपनी किताब में ये बात लिखी भी है कि ये जरूरी नहीं कि आपकी हर रचना आपकी आप बीती हो
0: जी,
1: बल्कि ये वो शक्ति हो सकती है जो एहसासों को सिर्फ महसूस नहीं करती बल्कि जीती है।
0: क्या बात है। ओके।
1: और ईश्वर की कृपा से शब्दों को मोती की तरह जज्बात के धागों में पिरोकर गजल या कविता रूपी माला का रूप देती है।
0: क्या बात है। ओहो।
1: वीर रस का हर कवि सेना में नहीं होता।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल सही कहा।
1: इसी तरह हास्य रस का हर कवि आवश्यक रूप से निजी जिंदगी में सुखी या संतुष्ट नहीं होता।
0: जी हाँ जी हाँ।
1: ठीक इसी तरह से श्रृंगार रस का हर कवि प्रेम में दुखी नहीं होता, बल्कि शायद उसकी महसूस करने की शक्ति दूसरों से ज्यादा होती।
0: कुछ ज्यादा ही होती है। सही कहा आपने, कुछ ज्यादा ही होती है। वो उन लोगों के साथ एम्पथाइज कर पाता है, उनके दुख को या उनके गम को या उनके जज्बातों को समझ पाता है, इस वजह से वो ये सब कुछ लिख पाता है। बहुत सही कहा आपने, बहुत सही कहा।
1: बहुत अच्छा वर्ड आपने यूज किया। एग्जैक्टली एम्पैथी ही होती है ये, जो आपको जोड़ती है लोगों से।
0: जी,
1: जिससे आप उसको महसूस कर पाते हो, उस जगह खुद को पा पाते हो, और फिर जो एहसास उभरते हैं उनको आप अशारों का रूप देते हो।
0: जी सही कहा आपने, सही कहा। बहुत खूब। तो संदीप भाई, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी एक गजल और सुनाए हमें।
1: मैं अगर आप इजाजत दें तो कुछ शेर अपने सुनाना चाहूंगा।
0: इरशाद, इरशाद, इरशाद। जी जी जी, जरूर जरूर जरूर।
1: कुछ अच्छे शेर हैं, चंद शेर हैं, मतलब हैं तो बहुत, बट कुछ दिल के करीब होते हैं, जो चाहता है इंसान के वो लोगों के साथ। लिखने वाला चाहता है कि भाई, जो बच्चा सबसे ज्यादा प्यारा होता है ना, तो माँ बाप हमेशा उसको दूसरों के सामने खड़ा करते हैं ताकि उसकी तारीफ हो।
0: जी जी जी।
1: पसंदीदा शेर है मेरे।
0: जी इरशाद।
1: तेरी यादों की दराजों में जाले नहीं लगते, तेरी यादों की दराजों में जाले नहीं लगते, तेरे खतों के हर्फ मुझे काले नहीं लगते।
0: ओहो।
1: तेरे खतों के हर्फ मुझे काले नहीं लगते। और आप देखिए, एक लिखने वाला इंसान बीसियों साल लिखता रहता है। लोग पूछते हैं कि कब खत्म होगा ये सिलसिला, कब तक चलेगा, कितनी बार और क्या क्या चीजें, कितनी कठिनाइयां आती हैं, ये आसान नहीं है उसको मीटर में रखना। तो मैंने उस दिक्कत पे भी एक चीज लिखी थी, उसका पहला मिसरा कुछ इस तरह है कि कभी काफिया पकड़ता हूं तो रदीफ रूठ जाता है।
0: ओहो, क्या बात है।
1: कभी काफिया पकड़ता हूं तो रदीफ रूठ जाता है, तुझ पर जितना लिखूं कुछ ना कुछ छूट जाता,
0: कुछ ना कुछ छूट जाता। क्या बात है।
1: जितना लिखो कुछ ना कुछ छूट जाता है। ये रहता फिर वो जो छूट जाता है, वो नए सिलसिले, नई गजल, नए शेरों के रूप में आप सबके सामने आता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत खूब।
1: और कोई किस कदर किसी व्यक्ति को प्रभावित करता है या उसकी लाइफ में वो इम्पैक्ट डालता है, कि आप उसके मोहजाल, माया जाल, आप कुछ भी कह सकते हो, कि उससे बाहर नहीं आता
0: जी।
1: और उसका सही होना और गलत होना इन नतीजों से ऊपर होता वो इंसान। तो उस पर मैंने एक शेर लिखा था, मुझे बेहद पसंद है, कि मेरी जिंदगी का बस इतना सा फलसफा है
0: जी।
1: मेरी जिंदगी का बस इतना सा फलसफा है, ये दुनिया एक दो बार और तू कई दफा है।
0: ओहो, अच्छा जी।
1: ये दुनिया एक दो बार और तू कई दफा है,
0: तू कई दफा।
1: मेरी जिंदगी का बस इतना सा फलसफा है, ये दुनिया एक दो बार और तू कई दफा है।
0: वाह। क्या बात है, क्या बात है,
1: शान
0: बहुत बहुत खूब, अमेजिंग, बहुत खूबसूरत। अगेन ये छोटे छोटे शेर बड़े बड़े धमाके करने वाली चीजें लग रहे हैं साहब लेकिन हाँ, इनकी अपनी जगह होती है।
1: कोशिश कर रहा हूँ आपके जरिए लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ, सुनने वालों को के दिलों के तार को छू सकूं, कुछ ऐसा कह पाऊं कि जो उन्हें याद रहे या उन्हें दोबारा सुनने के लिए प्रेरित करे, बस यही कोशिश है।
0: बेहतरीन बेहतरीन ये जरूर होगा क्योंकि सुनने वालों को भी, सुनने वालों में बहुत बहुत सारे ऐसे लोग होते ही हैं जो दिलों को छू देने वाले अशआर और दिलों को छू देने वाले शेर भी बहुत शिद्दत से महसूस कर लेते हैं, तो ऐसा होगा और जरूर होगा। तो चलते चलते संदीप भाई, एक अपने गजल गायक की कोई पसंदीदा गजल सुनवाते चलिए।
1: एक नज्म है जगजीत सिंह ने गाई थी
0: जी,
1: तेरे खुशबू से भरे खत में जलाता कैसे,
0: ओहो
1: जी हाँ, प्यार में डूबे तेरे खत में जलाता कैसे, तेरे खत आज मैं गंगा में बहा के आया हूँ, आग बहते हुए पानी में लगा के आया हूँ।
0: बहुत
1: तेरे खुशबू से भरे खत में जलाता कैसे, ये सबको पसंद आएगी, आप सुनाएं, मेरी पसंदीदा गजल है।
0: बिल्कुल साहब, बिल्कुल। आइए दोस्तों, सुनते हैं जगजीत साहब की आवाज में ये प्यारी सी गजल।

0: संदीप भाई, आपका बहुत बहुत आभार जो आप हमारे प्रोग्राम में आए। आपकी गजलें हमने सुनी, आपके शेर हमने सुने जो हमारे दिलों तक पहुंचे, और मुझे पूरा यकीन है हमारे सुनने वालों के भी दिलों तक पहुंचे होंगे। आपका बहुत बहुत आभार।
1: मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत दिल से आभार कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं इतने दिग्गज लोगों की गजलें सुनाने के साथ हिमाकत कर सकूं कि अपना लिखा हुआ भी कुछ बोल सकूं, ये मौका देने के लिए और मुझे इस मौके के लायक समझने के लिए आपका हमेशा ताउम्र में शुक्रगुजार रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल को, ये लम्हे और ये इंटरव्यू मैं कभी भूलूंगा नहीं। जैसे इन लम्हों को सहेज के रखूंगा, जिंदगी में आगे ये बहुत काम आएंगे
0: जी। थैंक यू सो मच संदीप भाई,
1: फिर मिलेंगे हम लोग।
0: जी जरूर जरूर जरूर, शुक्रिया। चाहतों का दौर कुछ ऐसा चला कि तेरी आवाज हर जगह सुनाई दी। लीजिए दोस्तों, सुनते हैं अबीदा परवीन जी की आवाज में। हर

दोस्तों आज शाम गजलों के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल नई गजलें लेकर मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा आपके पास। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं।

0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM।
1: आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
2: नमस्कार साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी साथियों का कार्यक्रम खेती बाड़ी में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और बड़े सौभाग्य की बात है कि झाबुआ जिले में और झाबुआ जिले का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM अब स्टार्ट हो गया है, शुरुआत हो गई है इसकी। और सबसे खुशी की बात है कि यहाँ के किसानों के लिए ये वरदान साबित हो रहा है, खासतौर पर उन किसानों के लिए जहाँ पर जानकारी

0: का अभाव रहता है और जानकारी उन तक नहीं पहुंच पाती है। और आज हमारे स्टूडियो में बड़ी सौभाग्य की बात है, आज हमारे साथ सलिया जी डामोर जो कांकड़कुआ गांव के रहने वाले हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ अजमेर जी हैं, वो भी कांकड़कुआ गांव के रहने वाले हैं, आपका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तेर सिंह वाकला जी हैं, कांकड़कुआ गांव से हैं, इनका खेती में काफी अच्छा अनुभव रहा है, इनके अनुभवों को साझा करते हैं। क्योंकि हम और आप देखते हैं खेती, अगर झाबुआ जिले की बात करें, यहाँ के आसपास के इलाकों की बात करें, तो पथरीला इलाका है, पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। हम जानेंगे आज उन विषयों पर जानेंगे कि यहाँ पर हमारे किसान साथी किस तरीके से खेती कर सकते हैं। सबसे पहले सलिया जी, आपसे हमारा सवाल है कि यहाँ पर कौन कौन किस किस प्रकार की खेती की जाती है?
1: अभी हम खेती करने के लिए तैयारी कर रहा है, इसमें हमारे मक्का होती है और कपास, यह थुअर भी होती है, मूंगफली होती है, उड़द भी होते हैं। यह बारिश के समय में हमको यह फसल मिलती है, सोयाबीन भी होते हैं, यह फसल हमको मिलती है सर।
0: अच्छा सलिया जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे, यहाँ पर पथरीला इलाका है, आप जानते हैं पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत भी है, हमने देखा भी है, किस तरीके से आप, किस अनुभवों के साथ आप खेती करते हैं?
1: बस खेती यही करते हैं हम, सुमा समय बारिश आते है, इसमें कोई रुका पानी, कोई कुआ है थोड़ा बहुत, उसमें यही करते हैं।
0: अच्छा अच्छा,
1: हाँ, एक दो पानी कपास को मिल जाते हैं, ज्यादा पानी की आवत है ही नहीं।
0: अच्छा अच्छा, हाँ। अगर कपास की, सोयाबीन की अगर बात करें तो किस तरीके से, चूंकि आपका अनुभव हम देख रहे हैं कि काफी अच्छा अनुभव है, काफी सालों से आप खेती कर रहे हैं, तो किस तरीके से ये कपास की खेती की जाती है, कैसे की जाती है?
1: ये सर, इसमें अपन को बोवनी करते है कपास की, इसमें अपन को निंदाई खोदाई करनी पड़ती है और खाद बीज अपन को ये करना पड़ता है, दवाई भी करनी पड़ती है, टाइम टाइम से खाद मिलते हैं इनको, ये यूरिया भी मिलते हैं, क्या बोलते हैं, सुपरफास्ट और डीएफी कपास को, और मक्का तो यहाँ पर यूरिया खाद से पक जाती है।
0: अच्छा अच्छा,
1: हाँ, ये इनको डीएफी और पोटास खाद मिलते हैं, कपास को इनकी फसल डीएफी खाद से और दवाई से होती है।
0: अच्छा, सबसे पहला सवाल है कि आप किस तरीके से भूमि को तैयार करते हैं, जब कपास की खेती आप लगाते हैं किस तरीके से उसकी तैयारी करते हैं?
1: इसको अभी खेड़ाई जुताई कर रहे हैं
0: जी,
1: ये तैयारी कर रहा, अपन उसमें हल चलाया, उसके बाद अपन थोड़ा वखरा कर घेर के इनको थोड़ा कहना डेफा डेफी है या भाग तोड़ के थोड़ी कर तैयारी करेंगे, पानी बारिश को गिर गया तो इसके बाद अपन बोनी करनी है सर।
0: अच्छा, यहाँ पर किस किस प्रकार की मिट्टी यहाँ पर, चूंकि लाल भी मिट्टी है, किस किस प्रकार की, कौन कौन सी यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है?
1: ये लाल भी है और काली भी है,
0: काली मिट्टी है,
1: काली, हाँ, और इसमें भूरी मिट्टी भी है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
1: किसी किसी को भूरी मिट्टी भी है।
0: अच्छा, ढलान होने के साथ क्या क्या आपको खेती किसानी में समस्या आती है आपको?
1: ढलान में तो सर ये पानी की समस्या होती है, इसमें
0: कितने पानी लगते हैं कपास में?
1: कपास में बस ज्यादा पानी वाले कोई दो चार पानी कर देते हैं, नहीं पानी वाले तो बस एक दो पानी में हो जाता है,
0: एक दो पानी में हो जाता है कपास। कपास से कितना मुनाफा हो जाता है, यदि आपको किसान सुन रहे हैं तो कपास की खेती में बीज कहाँ से लाया जाता है और इससे पहले तैयारी क्या की जाती है उसकी?
1: इसमें बीज तो सर ये मिलते है काली बाजार से, हम लाते हैं कपास का बीज, और तैयारी इनकी है, अभी तैयारी में ही है, बैठा है, लोग कर रहा है, कोई हर काम जो भी है छोड़ के खेती पे लग गया है, तैयारी कर रहा है, बारिश की समय आ रही है ऐसे करके।
0: अच्छा अच्छा,
1: यही तैयारी चल रही है सर।
0: अच्छा, खेती के अलावा यहाँ पर और क्या हमारे किसान साथी करते हैं, क्या करते हैं?
1: मजदूरी जाते हैं सर।
0: अच्छा, खेती करने के बाद मजदूरी करने के लिए?
1: अभी अभी लोग बाग अभी भी बाहर है।
0: अच्छा,
1: बारिश की समय है तो
0: आ जाते हैं,
1: तो कोई एक दो घर पे है, नहीं तो आने वाले हैं।
0: अच्छा,
1: चार महीना करते हैं और वापस दिवाली बाद बाहर चले जाते, दाड़ की दपोड़ी यही करते हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, कपास की खेती में सर कितना फायदा आपको हो जाता है?
1: फायदा तो होता है सर, इस साल तो कपास का भाव भी थोड़ा ठीक रहा।
0: अच्छा,
1: तो इस साल तो फायदा लोगों का।
0: कितने महीने में फसल आ जाती है ये अपने लगाने के बाद?
1: ये लगाने के बाद तो करीब कपास को तो छह महीना हो ही जाते हैं।
0: अच्छा, जो किसान हमारे जैसे कपास नहीं करते, उनकी जानकारी नहीं है, उनको क्या बताना चाहेंगे कि किस तरीके से इसकी बीजों की रुपाई की जाती है, किस तरीके से इसको लगाया जाता है?
1: इसको सर उसको लगाना पड़ता है, तैयारी करते हैं अपन कपास करते हैं तो इस जमीन को जब अच्छी तैयारी करनी पड़ती है, खाद कई अपन ये गाय का ये खाद मिल जाते हैं, ये डाल देता है इसमें कपास अच्छा बनता है
0: जी।
1: हाँ, इसमें ठीक रहता है।
0: अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे, चूंकि अभी हम यूरिया और हम डीएपी की बात करते हैं, पहले ज़माने में जो खेती की जाती थी वो शुद्ध गोबर की गाय के गोबर से या फिर जो जैविक पद्धति होती थी उससे हम खेती करते थे, अब क्यों, ऐसा क्या कारण हो गया है कि इसको बंद कर दिया है और इसी पर हम लोग आश्रित हो गए?
1: इसमें सर ये अभी थोड़ा माल मेवा से कम पड़ गया है।
0: हाँ मवेशी
1: तो कम है अभी। क्या है कि पहला तो एक घर में मवेशी करना 20-15 एक घर में करनी दो दो चार चार आठ आठ दस दस गाय रहती थी, अभी है नहीं।
0: क्यों नहीं है, क्या कारण है?
1: अभी क्या है, अभी थोड़ा सारा सरनेमान सब थोड़ी कमी है।
0: हाँ,
1: तो अभी नहीं है, बस एक दो बैल है, किसी के पास भैंस है।
0: अच्छा,
1: सब ये कम है अभी।
0: जैसे छोटी छोटी जमीन है तो अभी भी आवश्यकता पड़ती होगी बैलों की, हल की या बकर की?
1: वो तो पड़े ना सर।
0: अच्छा, और भैंस पालन या बकरी पालन इस तरीके का नहीं करते हैं किसान इसके अलावा?
1: करते ना सर,
0: करते हैं,
1: बकरी भी है भैंस है।
0: तो कौन सी बकरी पालते हैं, किस तरीके से वो पालन पोषण उसका करते हैं?
1: बकरी तो सर ये देसी बकरी है।
0: देसी बकरी, फायदा होता है
1: इससे? होता है।
0: मुर्गी पालन करते हैं?
1: मुर्गी पालन तो ये देसी मुर्गा है घर पे।
0: अच्छा, करते हैं।
1: हाँ है ना।
0: अच्छा, अब जो समस्या जो आप कह रहे हैं कि कपास में हम लोग जैविक खाद यानी गोबर खाद का इस्तेमाल करते हैं, फिर हम रासायनिक खाद का इस्तेमाल क्यों करते हैं, मतलब क्यों डालते हैं डीएपी यूरिया?
1: तो वो अभी क्या है सर, लगातार अपन ने डाल दिया तो ये खाद तो डाले बिना तो नहीं होते है।
0: अच्छा,
1: अब तो वो क्या है, खाने की अपन को आदत कुछ पड़ गई तो वो खाद डाले बिना तो होते ही नहीं फसल।
0: अच्छा,
1: ऐसा है।
0: अच्छा, बहुत बढ़िया। आपसे जानना चाहेंगे आपके क्या अनुभव हैं खेती किसानी में, आप कितने वर्षों से खेती किसानी कर रहे हैं?
2: 26 साल हो गया है।
0: 20 साल से खेती कर रहे हैं। कौन कौन सी आप फसल उगाते हैं, कैसे करते हैं?
2: बस मूंगफली
0: भी करते हैं।
2: अच्छा, पूरा थोड़े करते हैं, ज्यादा नहीं करते हैं, 10-15 किलो।
0: अच्छा, कर देते हैं। आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनो रेडियो, आपड़ी बातें।
3: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। मैं आपका दोस्त आरजे अविनाश। आइए जानते हैं झाबुआ के मौसम का हाल। झाबुआ का अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 25.1 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 12.2 मिलीमीटर और अब तक की वर्षा 15.9 मिलीमीटर नापी गई है। खेती की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आइए जानते हैं किसान भाइयों के पास कौन कौन सी खेती के उपजाऊ खेत हैं।
4: कई प्रकार की जगह से, मतलब तार जगह के कितना से, मतलब बैडू है, घेरवाड़ी है, है ना, मालमई
2: है, काले जमीन है, काली ना भूरी ने भी हकली है।
4: ते तार खेतर में हूँ पाके
2: खेतर में कफा पकड़ी ने अड़द ने मुफला ने जो पकड़ी
4: ते या पर सुमा है ते यू पाके जाता है क्या?
2: सुमा है यू
4: या पर मुफला पाके जाता है, अड़द तो है, अंथुवर से ने अपड हेलिये थे ये हूँ केरा पर सोयाबीन है कि नहीं? ते फिर बीजी फसल लेवा हरू खेतर से नहीं मारा?
2: बीजी फसल लेवा हर खेतर रियो पर आती हूँ मैं, बीजी फसल हूँ लेवा फिर।
4: क्या पानी नहीं कमी से?
2: पानी नहीं कमी ना।
4: अच्छा, पानी नहीं कमी से ते तन मतलब एके एके फसल मारा है?
2: एके समासा उस फसल
4: में है ते इन्हीं खेत मतलब आप फसल ने अलावा फिर हूँ से मतलब फिर हूँ तो कमावार हूँ करिए आप हूँ બોકડા નહી મળે, બોકડું ડગરું
2: બોકડા
4: હા. પેલું કે તમે પેલખા હા ડુંગર વસ્યા નહીં આપડી કાન હે કે નહીં, ડુંગર વસ્યા નહીં કઈ નહીં, આપણું કાં સરાવા લઈ જાય હે કે નહીં, સમસ્યા એ બી હે, હા સારવાની થોડી દિક્કત હે. ઠીક ઠીક, તો તને શું લાગે કે આપણ અગર બોકડા આપણું પાળીએ તો બોકડામાં આપણને ફાયદો છે કે નહીં છે?
2: બોકડામાં
4: છે ફાયદો, હે ને? બોકડામાં ફાયદો હોય, લેકિન આપણ એક અસલ પ્રજાતિની બોકડી મળવી જોઈએ હે કે નહીં? હમણાં આપણા બોકડા થોડા છે એમાં માદા દુબળા પાતળા છે હે ને, તો આપણ થોડીક અસલ પ્રજાતિની થોડીક અસલ જે
1: થોડીક ઓલાદદાર
4: હે, થોડી અસલ એનું માં બી તાજું પડે, નીચે હોય દૂધ ખાવા બી આપણું લાવી થોડુંક બઢિયા ક્વોલિટીનું મળી જાય તો બઢિયા રહે. અને આપણું આપણ ડગરીઓમાં બી આપણું ઇમેજ દેખીએ ને, ડગરા હે આપણા ડોબા હે, એમાં બી આપણને અસલ અસલ
1: ખોસદાર બઢિયા,
4: ખોસદાર બઢિયા મળી જાય
1: તો આપણ
4: હા ઓલાદાર આપણ મતલબ સાજો થોડું ભણી શકે હે ને.
1: સહી
3: નમસ્કાર દોસ્તો, આપ સુન રહે હૈ રેડિયો ટાંટ્યાભીલ 90.8 FM, મેં આપકા દોસ્ત આરજે અવિનાશ. આઈએ જાનતે હૈ ઝાબા કે મોસમ કા હાલ. ઝાબા કા અધિકતમ તાપમાન 35.2 ડિગ્રી સેલ્સિયસ, ન્યૂનતમ તાપમાન 25.1 ડિગ્રી સેલ્સિયસ, વર્ષા 12.2 મિલીમીટર ઓર અબ તક કી વર્ષા 15.9 મિલીમીટર નાપી ગઈ હૈ. સલિયા ભાઈ, એના અલાવા તને શું લાગે આપણે ખેતીમાં શું શું કરવું જોઈએ? હજુ આપણે શું કરી શકીએ? હમણાં તો આપણે માન લો કે પાણીની સમસ્યા હે આપણી કન હમણે, લેકિન અગર પાણીની સમસ્યા એ આપણી થોડી કમ થઈ જાય તો આપણે શું શું કરી શકીએ?
1: બસ પાણીની સમસ્યા કમ થઈ જાય તો શું કરી શકીએ? પાણી ઉપર હે
4: હા સાંકળી પાણી પર છે, જેસે કે આપણું વાડી હે કે નહીં, અગર વાડી કરવા માંગીએ તો હમણે હમણે આપણું ભીંડા હે, ગુવાલફળા હે, કાકડા હે, આપણે તરબૂજા હે ને, હા તો જેના પાણીની સમસ્યા હે તેની હરું આપણું કહી શકી કે
5: આપ સુન રહે ઝાબુઆ કા પહેલા સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો ટાંટિયા ભીલ 90.8 FM, આપણો રેડિયો આપણી વાતે.
4: ભાઈઓ આપણું હમણાં ચર્ચા કરતેલા આપણ ડગરાના બારામાં, આપણ બોકડાના બારામાં કિકમ આપવું, ખેતીને અલાવા કંઈની અલગ અલગ હું હું આપણું કરી શકીએ તેના બારામાં આપણું વાતે કરતેલા, તે હાવ એની ચર્ચાને આપણું આગાડી બઢાવું, પર તીનતા આગાડી આપણું સાંભળીએ હાવ એક આપણ સંસ્કૃતિનું એક પ્યારું શું એક ગીત.

0: रेडियो टांडिया भील 90.8 एफएम आपरो रेडियो आपरी बातें।
1: किसान भाइयों ते हमने तमु ये हमलियो एक सुंदर सु भीली गीत ने अपनी खेतीबाड़ी नी चर्चा अगाड़ी बढ़ावता जाई। हाँ बापू जानी के अलग अलग किसानों ये की कम तिना खेतर मा पिछले वर्ष कई नी फसल लगाड़ेली अपना तिना अपना अपना खेतरों मा अने तिनी खेतरों मा हती तिना हूँ एक नवी सीज हिकवी मळी अन हूँ तिनी फसल ने करवा थी इनान की कम फायदो थायो की कम नुकसान थायो अन इनाई कई नी दवा वापरिया अपनी खेती मा इनाई हूँ करियो इना बारा मा आपू चर्चा करी। तो आइए शुरू करते हैं। तेर सिंह भाई तमार हूँ के हूँ मतलब कई नी खेती तमार ठीक रही। हाँ तेर सिंह भाई बोलो।
2: खेती बजे कफा मुफले।
1: अच्छा को कफा मुफले तमु ये भी कफा मुफलास करेला। अच्छा ते मतलब कपास सल रियो है ना।
2: कपास सल रियो माने सोयाबीन के सोयाबीन में भी लल पड़ी जाए।
1: हां को सोयाबीन में भी लल पड़े।
2: थुवर करे थुवर में भी लल पड़ी जाए।
1: हां थुवर में भी जेरी खाए है ना। दवा नाख्या वगैरह तो काम नहीं साले।
2: काम नहीं साले
1: ते आपो मतलब बाजार ने वाली दवा वापरो से कि आप घर बनावेली जैविक
2: ने बाजार ही लावी हम
1: बाजार थी लावी। ठीक ठीक ठीक। अजमेर जी तमु ये कई नी फसल करेली तमुन कई नी फसल में असल फायदो थायो ने इस साल तमु हूँ कई नी फसल करवानी होसी रहा है।
3: इस साल गे साल तमे कपाह करे लो।
1: कपाह करे लो
3: तो कपाह ना भाव भी रियो
1: है
3: तो कायदे सर ए भाव रे वो जो है और ठीक रियो।
1: अच्छा कपाह ठीक रियो ना। हाँ आवते भी कपाह करवाना विचार से
3: विचार थे पण आहू वाला केवो भाव आवे
1: केवो भाव आवे। अजमेर जी हूँ तन एम पूछवा मांगू कि अपना लोग लेखू देखे छे ने कि आई हुन मोवड़ी मतलब डोणा कम लाग्या से ते मुफला कम आवे अने आपण आमला जरीक आमला है ना ते आपण गाम मा एक एक कई नु कई नु झाड़ रहे या फिर झाड़ू ने देखीने कई नो लेखा देखे छे है केवी रीते
4: ना नोकरा है क्या करे से
1: है करे ते हूँ कीरा है इहुन हूँ चर्चा मा आवी नु के आपण हूँ पाकवानु से हूँ
3: तर हमलियो नहीं से
1: कोई हमलियो हाल
3: नहीं हमली।
1: अच्छा आपण सलिया भाई ते कई हमलवा मावी की नहीं कहीं बात के कहीं कहीं धान पाके कहीं लेखो देखना रहा हूँ कीरा है।
5: देखो देखवा मा अपुन इतनी लाखी रखी देखो।
1: हाँ
5: ना उन पर डोकरा के तेला
1: है
5: आमला असर लगे।
1: हाँ
5: तो मक्की बढ़िया पके।
1: अच्छा
5: हाँ और इन्हें बाद हूँ है कि उन आमला नहीं लग गया
1: है
5: ये वो है तब हूँ मतलब मक्का नो हूँ था ही हूँ नहीं मक्के कम भी पकी सके।
1: बिल्कुल बिल्कुल। अन आप अपना मोवड़ी नो कहीं मालूम है मोवड़ी ना या डोला
5: मोवड़ी नो क्या ना
1: है
5: मोवड़ी ने डोकरा कहता है मोवड़ी असली टोला लगे तो मुफला बढ़िया लगे
1: मुफला
5: और टोला कम लगे मोवड़ी नहीं लगे ना।
1: हाँ हाँ
5: मुफला कम पके हम डोकरा कहता तुम टोला भी उन कम है लगे
1: ला उन कम है लगे ऐसे तो आप देखो इन हूँ था क्या
5: हूँ था तू पारक कर हूँ आप
6: देखो ये बात बरोबर से आप हमने सोरा युवा है।
1: हाँ
6: आपो ई सोरा तो सोरा वाली बात राखी हमने आजकल ते बदा मोबाइल में देखता हुआ
1: बिल्कुल
6: आने मोबाइल में देखी ने त्यू काम करता हुआ इतरे। हाँ। सोरा जो डोकरा जो झाड़खा ही बात करे झाड़खा ने देखी ने एवं था घना मैं पण हामली तो के एक डोकरो बा कहते लो के।
1: नमस्कार दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम मैं आपका दोस्त आरजे अविनाश। आइए जानते हैं झाबा के मौसम का हाल। झाबा का अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान 25.1 डिग्री सेल्सियस वर्षा 12.2 मिलीमीटर और अब तक की वर्षा 15.9 मिलीमीटर नापी गई है।
6: कारण के जो हिमड़ो रे।
1: हाँ
6: तो हिमला ना जो डोडा लागे
1: डोडा
6: लागे फिर ये फटकी जाए पहले तीन माहिती उड्डे कपा ना रूजे वा
1: रुई। हाँ
6: ते इतरे इना देखिन डोकरा के कपा जबर लागे।
1: हाँ
6: पर अमी इनी बात पर वदार गौर नहीं करियो ने इतरे हो सके आवे डोकरा के डोकरा खरब भी केता होए।
1: हाँ ये आपड़े आपड़े डोकरा नी पणता रेली रे कहीं ना कहीं डोकरा नी पणता रेली रे ते एवी बातें करे है ना। जैसे कि आपू भी की के वादला देखिन भी आपू की हेला कोट काटिया से दा पानी पड़ी सके है ना। तो आपू आदिवासी भी आपू आपण प्रकृति था ने जंगल था जोड़ेला है तो ये बातें भी आपू मतलब जानिए घना खरा जाने भी खरा। हाँ कोई कोई बहुत सही बताता है मतलब सही सही बातें भी करे की हाँ खरी भी करे की जे कहती थे थाई भी खरी है ना। किसान साथियों तो हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से हमारे किसान भाई किस तरीके से बदलाव है, प्रकृति के बदलाव को देखते हुए वे अपने अनुमान लगाते हैं किस तरीके से बारिश होगी, किस तरीके से कौन सी फसल आएगी। इनके अपने अपने अपने पूर्वजों के द्वारा उनकी सुनी हुई बातें हैं, सो उन पर यकीन करते हुए ये लोग अपनी अपनी खेती पे ध्यान लगाते हैं किस तरीके से खेती में इस बार कौन सी फसल अच्छी होगी या कौन सी। और इसके अलावा भी हम देखते हैं कि प्रकृति इस बार का मानसून के ऊपर बहुत ही प्रभाव पड़ता है, किस तरीके का मानसून रहेगा और जिस तरीके से मानसून होता है उसी तरीके से खेती में हर एक फसल मानसून के अनुकूल रहकर अपनी अपनी फसल का उत्पादन होता है। मौसम से जुड़ी हुई और भी जानकारियों को लेकर हम चर्चा करेंगे, उससे पहले आइए सुनते हैं एक सुंदर से भीली गीत को।

0: किसान साथियों, हम सुन रहे थे खेती बाड़ी कार्यक्रम। वक्त हो चला है यहाँ पर हमारे इस प्रोग्राम को विराम देने का। आपसे फिर मुलाकात होगी कल इसी समय पर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांटिया भील 90.8 FM RJ अविनाश के साथ।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आप रेडियो, आपकी बातें।

0: झाबा के मौसम का हाल। झाबा का अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 25.1 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 12.2 मिलीमीटर और अब तक की वर्षा 15.9 मिलीमीटर नापी गई है।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
2: नमस्कार साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के कार्यक्रम खेती बाड़ी कार्यक्रम में। और किसान साथियों, आज के इस कार्यक्रम में आज हम बात करने जा रहे हैं, वो आज हमने जो विषय लिया है वो बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि खाद की अगर बात करें, जो हम कल्चर अपने खेतों में डालते हैं, फर्टिलाइजर जिसे हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो आज दिन प्रतिदिन महंगा होता चला जा रहा है। तो इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, मतलब दूसरा ऑप्शन इसका क्या हो सकता है, आज हम बताने जा रहे हैं कि कल्चर खाद हम किस तरीके से बना सकते हैं, जो भूसा से, पत्तियों से और गोबर से जो खाद बनाया जाता है वो किस तरीके से बनाया जाता है और इसका इस्तेमाल हम किस तरीके से कर सकते हैं। आप और हम जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने किसान साथियों को खेती किसानी से जुड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बातचीत हम कार्यक्रम के माध्यम से साझा करते चले आ रहे हैं और आगे भी करते चले आएंगे। हम कोशिश करते हैं वो छोटी सी छोटी बातें हमारे किसान साथियों तक पहुंचे, जो उनके लिए, उनकी खेती किसानी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो। आज हम ये देख रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है और आज किसान वहीं का वहीं है। आज हमें जागरूक होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और ख़ास तौर पर उन किसान साथियों के लिए कहना चाहेंगे कि यदि आप अपनी आय को बढ़ाना चाहते हैं तो आप जो परंपरागत खेती चली आ रही है उसको छोड़कर आज हम वैज्ञानिक खेती की ओर, यानी जो वैज्ञानिक ढंग से हम खेती करते हैं उसकी ओर अब हमें रुख करना होगा, क्योंकि जो वैज्ञानिक जो पद्धति बताते हैं, जो समय समय पर हमारे कृषि विभाग के अधिकारी जो समय समय पर जानकारी देते हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि उनको पता रहता है, उनको सब हालचाल पता रहता है खेती का कि हमारे इस मिट्टी में कौन सी उपजाऊ फसल है जिसको हम लगा सकते हैं, कैसे अपने बीजों का उपचार कर सकते हैं, क्योंकि हमें बीजों का उपचार करना नहीं आता है। हम क्या करते हैं, रखा रखाया जो बीज रहता है, बहुत सारे किसान साथी ऐसा करते हैं, खासतौर पर झाबुआ जिले की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे किसान साथी ये करते हैं कि जो भी पुराना बीज होता है उसको वो रखते हैं और उसको ही अपने खेतों में लगाते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि इसका हमें उपचार करके देखना चाहिए। उपचार का मतलब होता है कि आपको उस बीज को कुछ दाने हमें भिगोना चाहिए, यदि 70% से कम दाने अंकुरित होते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि ये बीज हमें अपने खेतों में नहीं लगाना है, क्योंकि ये बीज हमारे खेती के लिए सही नहीं है। आप और हम जानते हैं कि महंगाई के इस जमाने में खेती करना कितना मुश्किल हो रहा है, तो ऐसे में शासन की योजना के साथ साथ कृषि विभाग की मदद के साथ साथ यदि हम खेती किसानी करें तो हमारे आने वाले समय में हम अपनी आय को दुगनी कर सकते हैं। और दूसरी बात ये बताना चाहते हैं, आय तो ठीक है हम दुगनी कर सकते हैं, हम अपने जो खेतों में जो गेहूं या कोई भी अन्य फसलें जो उगाते हैं उसका हम डायरेक्टली सीधा हम मंडी में बेच आते हैं। क्या साथियों और हमारे किसान साथियों, आपने कभी ये सोचा है कि इसको रोक के रखें और इसका जो बाजार में आज चीज़ें बिकती हैं, खासतौर पर अगर सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन की बरी बहुत पसंद लोग करते हैं, उसको बनाते हैं, और देखा जाए यदि उसकी पैकेजिंग कर बरी बनाकर हम बाजार में, मार्केट में यदि उसको बेचा जाए तो आज हमारी जो फसल जो कम कीमत उसकी लगाई जाती है वो हमें दुगनी या तिगनी कीमत में वो हम अपने फसलों को बेच सकते हैं पैकेजिंग कर। दूसरा, मक्का का भी हम पैकेजिंग कर आटा बनाकर उसका हम बेच सकते हैं, गेहूं का आटा बनाकर हम बेच सकते हैं, और भी फसलें हैं जैसे धान की अगर बात करें तो धान की भी हम जो फसल करते हैं उसका चावल डायरेक्टली हम मंडी में देकर चले जाते हैं। तो हमने कभी ये नहीं सोचा है कि इस धान की जो फसल हम लेकर आते हैं उसको थोड़ा रोक कर रखें, उसको चावल बनाकर बढ़िया अच्छी तरीके से पैकेजिंग कर और उसको बाजार में बेचेंगे तो हमें जो रेट आज कम मिलता है उस रेट की बढ़ोतरी होगी और हम अपनी आय में भी वृद्धि हो सकेगी। दूसरी और तीसरी बात ये बताना चाहते हैं कि हमारे किसान साथी सब्जी भी अपने खेतों में लगा सकते हैं, क्योंकि अच्छा समय है और तैयारी भी हमारे किसान साथी कर सकते हैं। और उस तैयारी के साथ साथ हमारे किसान साथी क्या करें, पानी को बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए। खासतौर पर देखा जाए जहां पर पथरीला इलाका है, जहां पर देखा जाए पानी नहीं रुकता है खेतों में, वहां पर मेड़बंधान करना बहुत ज़्यादा आवश्यकता है हमारे किसान साथियों को। दूसरी, जो हमारे पुराने तालाब या बावरियाँ या कुआं, उनको रिचार्ज करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। रिचार्ज करने का ये मतलब है कि आप उसकी साफ़ सफाई करें, उसका गहरीकरण करें और साथ में आने वाले बरसात के दिनों में उसको, जो बरसात का पानी है उस तालाब या कुआं में हम डाल सकते हैं, जिससे आने वाली फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभा सकता है। और ये खास बातें हैं जो हम अपने किसान साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाह रहे थे। हम समय समय पर मौसम की जानकारी भी देते हैं। अब जो मौसम विभाग कहता है कि आने वाले दिनों में बादल छाए रहने की संभावनाएं को ध्यान में रखते हुए किसान साथी जो सब्जियों में अक्सर देखा जाता है कि गर्मियों में बहुत सारे जो कीड़े या फिर कीट व्याधियां जो रहती हैं उनमें लगते हैं और जिससे हमारी फसल नष्ट हो जाती है, फसल खराब हो जाती है। तो ऐसे में किसान साथी ध्यान रखें, उनको निगरानी करते रहें समय समय पर। दूसरी बात कि यदि आपको लगता है कि हमारे सब्जियों में कीट व्याधियों का प्रकोप देखा जा रहा है, तत्काल नज़दीकी हमारे कृषि विभाग में जाकर या KVK में जाकर उनसे संपर्क कर सकते हैं। जैसे कि तोमर साहब ने बताया था कि हम 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं और यहाँ पर रिसर्च किया जाता है, उनको पता रहता है कि अब इस मौसम में कौन से कीट व्याधि हमारे फसलों में लग सकते हैं। तो ये बातें हैं जो हमारे किसान साथियों को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तीसरी बात जो बताना चाहते हैं कि जो मौसम आने वाला मौसम है वो, अगर पशुओं की खास तौर पर बात करें तो अभी से तैयारी कर रखें कि पशु जहाँ पर हम लोग बांधते हैं वो छत सही है कि नहीं है। आप यदि छत सही नहीं है, बरसात के मौसम में गिरने की संभावना यदि आपको लगती है तो उसकी मरम्मत करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और तीसरी बात और चौथी बात बताना चाहते हैं कि पशुओं की, अगर पशुधन की बात करें, क्योंकि पशुधन ही हमारा सबसे बड़ा धन है खास तौर पर किसान साथियों का, और यदि पशुओं की हम देखभाल नहीं करेंगे तो हमें जायज सी बात है कि हमें इसका परिणाम देखने को मिलता है। क्योंकि बहुत सारे हमें हमारे किसान साथी, अब चूंकि आधुनिकीकरण है, ट्रैक्टर से लोग बखराई करते हैं, जुताई करते हैं, और कई कई जगह देखा जाए, अगर झाबुआ जिले की बात करें तो कई ऐसे गांव हैं जहां पर अभी भी हल और बखर से लोग खेती करते हैं। और उन, यदि हम पशुओं का ध्यान नहीं रखेंगे, बैलों का खासतौर पर, गायों का या भैंसों का ध्यान नहीं रखेंगे, उनको समय समय पर पानी पिलाते रहें, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और उनको मिश्रित जो जो घास फूस रहती है खासतौर पर हरा चारा उनको देते रहें, 25 किलोग्राम प्रतिदिन हमें अपने अपने जानवरों को हरा चारा देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और साथ साथ में इसके साथ जो मिनरल मिक्सचर आता है खासतौर पर जो जानवरों के लिए आता है, उनको भी खाने के साथ साथ मिनरल मिक्सचर भी हमारे किसान साथी दे सकते हैं। क्योंकि जब हम खेती करते हैं तो वो, यदि हमारे जानवर स्वस्थ रहेंगे तो हमें स्वस्थ हमारी खेती होगी, अच्छी खेती होगी और हमें मन भी लगेगा कि हमारे जानवर अच्छे हैं। दुधारू पशुओं में खासतौर पर गर्मियों में दूध कम हो जाता है, तो ऐसे में उनके खान पियन के साथ साथ नमक की मात्रा भी देते रहें, सब्जियों का ध्यान रखें और अभी से तैयारी करें, बीजों का चयन करके रखें, क्योंकि बरसात अब बस कुछ दिन बचे हैं कि बरसात आने वाली है, तो ऐसे में हमारे किसान साथी ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ये तो हमने अपने ओर से यानी रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM के माध्यम से आप लोगों को जानकारी साझा की है। अब वह हमारे किसान साथी इंतजार कर रहे हैं कि शुरुआत में मैंने बताया था कि हम अपने किसान साथियों को विषय विशेषज्ञ के पास ले चलेंगे और उनसे जानेंगे कि जो कल्चर खाद बनाया जाता है, कंपोस्ट तैयार किया जाता है पत्तियों से, भूसे से, धान के भूसे से जो कंपोस्ट बनाते हैं, और ख़ास तौर पर अगर यहाँ पर मक्का की खेती जाना होती है तो मक्का के जो डंठल निकलते हैं उससे हम कैसे कंपोस्ट, और जो घर की सब्जियाँ सड़ी गली सब्जियाँ रहती हैं उससे कैसे कंपोस्ट बनाया जाता है, इस पर हाँ ये चर्चा करते हैं। लेकिन चर्चा सुनने से पहले हम एक गीत सुन लेते हैं। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM, अपना रेडियो आप ही बात है।

0: नमस्कार। आज किसान भाइयों को हम बताना चाहेंगे जो धान का और भूसा, कोई भी भूसा का कैसा कंपोस्ट बना सकते हैं, एक समृद्ध जो कंपोस्ट बोलता है उसको, वो बनाने का विधि हम आपको बताएंगे। जैसा हमारा जो नॉर्थ इंडिया में जो भूसा, पर्टिकुलरली जो हमारा धान का भूसा होता है वो जला देते हैं। जलाने का कारण यही है, जो उसको लेबर बहुत लगता है खेत से उसको हटाने के लिए, तो जैसे बर्निंग कर देंगे, जला देंगे, उसमें आसान से वो खेत से निकल जाता है। और अगले क्रॉप के लिए जैसा गेहूँ लगाना है, गेहूँ का और धान का जो गैप होता है वो बहुत कम हो जाता है। इसी के कारण में जो फार्मर्स, जो हमारा चाषी भाई है, सारा जो भूसा है जला के ये देते। जैसे हमारा देश में फर्टिलाइजर का प्राइस हर दिन बढ़ रहा है, इसका कारण है जो फर्टिलाइजर डीएपी बनता है, डीएपी हमारा देश में बनता नहीं है। उसके लिए जो रॉ मटेरियल जरूरी है वो बाहर से लेके आते हैं हम, बाहर से जो लेने के कारण में उसको कॉस्ट बढ़ जाता है। और हमारा देश में जितना भी जो सॉइल है, जो सॉइल का हमेशा है जो नाइट्रोजन का मात्रा हमेशा कम होता है, जो पोर ही होता है, और फॉस्फोरस का मात्रा मीडियम से लो होता है, और पोटाशियम थोड़ा मीडियम से हाई होता है, लेकिन पोटाशियम बहुत यूज़ कम होता है। हमारा कृषक भाई मोस्टली वो जो यूरिया यूज़ करते हैं नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर के हिसाब से, बाकी जो फॉस्फोरस और पोटाशियम यूज़ करते नहीं। इसका कारण में जो इम्बैलेंस हमारा फर्टिलाइजर यूज होता है, इम्बैलेंस फर्टिलाइजर का मतलब है जो एक बैलेंस खाना हमने पौधा को देना चाहिए था वो नहीं देते हैं, उसको जगह हमने खाली यूरिया जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर उसी को दे रहे हैं, फॉस्फोरस और पोटाशियम नहीं देते हैं। हमारा जो FYM जिसको बोलता है फार्म यार्ड मैन्योर, वो फार्म मैन्योर बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल जरूरी है वो है जो गाय का जो काउडंग बोलता है, और बाकी जो यूरिन उसको बना के फिर कंपोस्ट बनता है। कंपोस्ट मतलब खाद बनता है, जो उसका नाम है फार्म यार्ड मैन्योर, और उसको ऐसे भी हमारा सीधा सीधा खाद बोलता है खाद, लेकिन ये खाद में मात्रा बहुत कम होता है। नाइट्रोजन का मात्रा 0.5% होता है, और फॉस्फोरस का 0.25, और पोटाशियम 0.5% हमारा उसमें मात्रा होता है। देसी खाद जिसको हमने जो कंपेयर करते हैं, जो खाद ही बोलते हैं कॉमनली, उसको खाद का मात्रा बहुत कम होता है। तो इसका कारण क्या है ना, जो एक हेक्टर में उसको कम से कम 15 से 20 टन पर हेक्टर देना पड़ता है, लेकिन इतना अमाउंट ऑफ जो हमारा खाद इतना मात्रा में हमारा देश में अवेलेबल नहीं है। इसका ऑल्टरनेट हमने एक दूसरा जो खाद बनाने का विधि बनाया है, उसका नाम है एनरिच कंपोस्ट, और हिंदी में उसको बोलेंगे समृद्ध खाद बनाने का तरीका। वो समृद्ध खाद बनाने के लिए हम दो चीज उसको जरूरी है, जैसा नॉर्मल खाद के लिए हमारा वो गाय का जो हमारा डांग है वो लेते हैं, लेकिन इसके लिए हमने लेते हैं कोई भी भूसा ले सकते हैं, तो उसको साथ जो देना है रॉक फॉस्फेट और माइका। रॉक फॉस्फेट जो है ये सभी जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर जो फॉस्फोरस के लिए होता है, DAP, SSP, ये बनाने का लिए जो रॉ मटेरियल जो मिनिमम ये चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, वो है रॉक फॉस्फेट। लेकिन जो हमारा इंडियन रॉक फॉस्फेट उसका फॉस्फोरस कंटेंट बहुत कम है, 20% से नीचे है। इसका कारण में जो खाद बनाने का जो कंपनी है वो नॉर्मली ये वाला रॉक फॉस्फेट यूज नहीं करते हैं, लेकिन ये रॉक फॉस्फेट नाम एसिड सॉइल जहाँ पर जो pH मात्रा बहुत कम है, उस सॉइल के लिए तो बहुत अच्छा है, जो नॉर्मली उसको सॉल्युबल हो जाता है और फिर जो पौधा उसको फॉस्फोरस ले लेता है। ये समृद्ध कंपोस्ट के लिए 1 टन 1000 kg और 1 टन कंपोस्ट बनाने के लिए हमने ये रखा है जो उसका कम से कम बायोडिग्रेडेबल जो भी होता है, जो बायोडिग्रेडेबल मतलब है जो भी जैविक पत्ता और भूसा वो कंपोस्ट बन जाता है उसको बोलता है जो बायोडिग्रेडेबल जो मटेरियल, वो हमने कंपोस्ट का थ्रू से डिकम्पोज करके अल्टीमेटली खाद बनाते हैं। तो इसके लिए 1 टन मटेरियल बनाने के लिए एक टन भूसा रखेंगे, 200 केजी उसको रॉक फॉस्फेट डालेंगे, 200 केजी माइका डालेंगे और थोड़ा सा यूरिया उसको 1% के हिसाब से, जैसा 50 से 100 केजी यूरिया भी डालेंगे तो उसको नाइट्रोजन का मात्रा बढ़ जाएगा, फास्फोरस का मात्रा भी बढ़ जाएगा, पोटेशियम मात्रा भी बढ़ जाएगा। इसका फायदा क्या है, जो हमने अल्टीमेटली जो एक कॉम्पोस्ट बनाया वो कॉम्पोस्ट में नाइट्रोजन का मात्रा 1 से 2% बढ़ जाता है और जो एफओएम जो देसी खाद है उसमें मात्रा है 0.5%, 0.5% नाइट्रोजन मात्रा है और 0.25% फॉस्फोरस का मात्रा है और पोटाशियम 0.5%, जो कि इस पद्धति जो अगर करेंगे समृद्ध पद्धति से करेंगे तो उसको मात्रा बढ़ जाएगा 1 से 2% नाइट्रोजन और 5 से 7% फॉस्फोरस जो P2O5 के हिसाब से माना जाता है और 2 से 3% पोटाशियम बढ़ जाता है। इसका कारण में जहाँ पर जो कृषक भाइयों के लिए 20 टन कंपोस्ट जरूरी था और खाद जरूरी था, इस मटेरियल अगर यूज करेंगे तो उसको जगह 3 से 5 टन, ज़्यादा से ज़्यादा 5 टन मटेरियल अगर यूज करेंगे एक हेक्टर के लिए, वो पूरा काम 20 टन का और 25 टन का हिसाब से जो देसी खाद डालेंगे उसको बराबर है। और भी एक इम्पॉर्टेंट जो जरूरी है वो है कार्बन। जो कार्बन है ऐसा है जो ऑर्गेनिक कार्बन बोलते हैं, ये ऑर्गेनिक कार्बन जमीन का जान है। अगर इसको मात्रा बढ़ जाता है तो फिर सभी जो सॉयल हेल्थ, पूरा सॉयल हेल्थ भी इम्प्रूव हो जाता है। इसी कारण में सॉयल का जो ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ना जरूरी है और ये जो उत्कृष्ट खाद है इससे जो कार्बन का मात्रा बढ़ जाएगा और कात्रा अगर ऑर्गेनिक मैटर वो बढ़ गया तो उसमें क्या होता है ना, जो पानी उसका अंदर ज़्यादा टाइम अंदर रहेगा, मिट्टी में अगर पानी ज़्यादा टाइम रहेगा तो वो नमी रहेगा और उसका कारण में जो प्लांट जो पौधा उसको बहुत लंबा समय तक जो न्यूट्रिएंट उसका जरूरी है वो सप्लाई देगा। तो इसका फायदा है जो ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ने के साथ साथ पूरा सॉयल हेल्थ उसका जो पीएच का जो कंडीशन है, पीएच और इसी और ऑर्गेनिक मैटर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जिसको बोलता है, जो पानी का धारण करने का जो क्षमता वो भी बढ़ जाता है, तो इसका कारण में ओवरऑल सॉयल हेल्थ इम्प्रूवमेंट हो जाता है। साथ के साथ हमने जो केमिकल फर्टिलाइजर जिसको बहुत कॉस्टली है आजकल, दिन दिन हर दिन इसको प्राइस बढ़ रहा है, तो उसको भी हमने मात्रा कम करके एक ऑर्गेनिक और जैविक खाद यूज करके जैविक खेती कर सकते हैं। ये जो पद्धति हमने अभी बताया, अगर किसी को जानकारी चाहिए तो ये IRI जो मृदा विज्ञान शाखा है जो सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का नाम पर जानते हैं, और मृदा विज्ञान संस्था, ये डिवीजन में आप संपर्क करके कर सकते और यहाँ पर जो हमने पूरा विधि जो चाषी भाई को बताएंगे इसके लिए हमारा साथ संपर्क कर कीजिए और आगे कैसा कैसा बनाना है इसको ये आपको जानकारी देंगे। इसके साथ एक हमारा और इम्पोर्टेंट जो खाद है उसको बोलता है भर्मी कंपोस्टिंग, जो केचुआ का खाद बोलता है, वो उसका तरीका ये है। जो भर्मी कंपोस्टिंग का जो कंपोस्टिंग है ये भी एक टेक्नोलॉजी है कंपोस्टिंग, इसको भर्मी कंपोस्टिंग मतलब है इसको केचुआ यूज करना है। जो कंपोस्ट का बनाने का टाइम है केचुआ डालते हैं, केचुआ अपना खाद खाना के लिए वो जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो अपना डिकम्पोज जल्दी जल्दी करता है, जल्दी करने के कारण में जो ये पद्धति है ये बहुत जल्दी बन जाता है, जो खाद बन जाता है बहुत कम टाइम में बन जाता है, 2 महीने में इसको खाद तैयार हो जाता है। इसका मात्रा में बहुत अच्छा है, इसका जो इम्प्रूव हो जाता है जो क्वालिटी ऑफ कंपोस्ट वो भी इम्प्रूव हो जाता है, बिकॉज केचुआ का जब खाना खाते ग्रैनुल निकाल के बाहर आते हैं उसको गीजर बोलते हैं, गीजर का अंदर से निकाल के बाहर आ जाते हैं, ये बहुत म्यूसुलेजनेस होता है। जैसे हमने खाद खेत में डालेंगे उसको अवेलेबिलिटी बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, और कोई भी जो कचरा है जो किचन का हमारा जितना भी वेजिटेबल का सब्जी का उसका और धान का भूसा का कोई भी जो कचरा है उसको भी यूज कर सकते हैं, और साथ के साथ इसको केचुआ का एक ये बनाने का तरीका ऐसा है, एक का हमने कंपोस्ट का जो पीट बोलता है कंपोस्ट का एक पेस्ट बना बना के जैसा 2 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर जैसा 2 मीटर लंबाई है, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर उसको डेप्थ, ऐसा एक ट्रेंच बनाना है। ट्रेंच बनाने से पहले बनाने के बाद उसको नीचे सबसे पहले वो हमने कोई ईंट का टुकड़ा उसको जमीन में डालते और फिर एक सॉइल का लेयर डालते जो लोमी सॉइल होना जरूरी है। फिर हमने केसुआ डालते इस 2 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर के लिए 600 जो स्पीसीज केसुआ का स्पीसीज है प्रजाति वो डालते हैं। जो केसुआ जिस लोकेलिटी में मिलता है वही केसुआ डालेंगे तो ये जो खाद बनने में जल्दी जल्दी हो जाता है। तो ऐसा जो सबसे जो बढ़िया जो हमारा केसुआ का प्रजाति है वो है आइसिन फोएटिडा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारा इंडिया में और इसी को ज़्यादा यूज होता है। तो एक जो ट्रेंच हम बनाते हैं 2 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर का, उसके लिए 100 केसुआ बहुत उसके लिए हमने एक लेयर का जो भूसा डालते हैं। फिर एक लेयर का भूसा डालने के बाद थोड़ा सा गोबर का खाद उसमें डालते हैं, फिर एक लेयर उसको भूसा डालते हैं, ऐसा ऐसा करके 1 मीटर हाइट जो हमने डेप है गिरा है उसको हमने लेयर वाइज कंपोस्टिंग बनाते हैं और केसुआ सबसे पहले नीचे डालते हैं। फिर उसको ऑप्टिमम जो मॉइस्चर डालना है, जो पानी डालते हैं, पानी डालने के कारण ही है जो उसमें नमी होना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा सूखा हो जाएगा तो वो केसुआ भाग जाएगा वहाँ से। इसीलिए 50 से 60% मॉइस्चर होना जरूरी है और जो पीएच का मात्रा भी वो 7 के आसपास होना चाहिए, उसमें 7 के आसपास 6 से 7 तक होगा तो वो सबसे बढ़िया है। उसके लिए हमने पीएच का मेंटेन करना जरूरी है और ज़्यादा टेम्परेचर भी ज़्यादा नहीं होता, तापमात्रा ज़्यादा से ज़्यादा 30 तक होना चाहिए, 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। तो इसका नाम वर्मी कंपोस्ट बोलता है और इसका फायदा ये है जो सबसे कम टाइम में खाद तैयार हो जाता है और जैविक खाद के लिए बहुत जरूरी है। जो कम खाद कम टाइम में कैसा कैसा हमने उसको खाद बनाने का तरीका कर सकते हैं। तो मेरा आवेदन है जो हमारा जो कृषक भाई को सबको ये जैविक खाद बनाने का अपना अपना तरीका आप फॉलो कीजिए और इसके कारण में आपको जो जमीन का जो मात्रा खराब हो गया, स्वास्थ्य खराब हो गया, उसको फिर से दोबारा लौट के आएगा और अच्छा फसल का उत्पादन देगा।
1: तो अभी आपने जाना भूमि सुधार के लिए क्या भूमिका है वर्मी कल्चर की और आप किस तरह से इसका प्रयोग कर सकते हैं।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो आपकी बातें।
3: कई बार हम कार्यक्रम के माध्यम से बताते रहते हैं और आपको जानकारी उपलब्ध कराते रहते हैं कि यदि आपको लगता है कि आपको खेती किसानी में कोई समस्या यदि आती है तो आप केबीके में जाकर संपर्क कर सकते हैं, वहां पर वैज्ञानिक हमारे उपस्थित रहते हैं, वहां पर संपर्क कर सकते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर तोमर साहब हैं, आइए इनसे जानते हैं कि किस तरीके से हमारे किसान साथी तैयारी कर सकते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस खास कार्यक्रम।
4: देखिए किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं झाबुआ जिला एक आदिवासी बाहुल्य जिला है, साथ ही साथ यहाँ खेती करने वाले ज्यादातर लोग हैं और छोटी जोत है, मतलब जमीन भी कम है इनके पास
3: जी।
4: और अभी जैसे आज अपन बात कर रहे हैं, सामान्यतः यहाँ पर जो मानसून की आवक है वो 10 से 15 जून के आसपास या 20 जून तक मानसून आ जाता है, मतलब बारिश शुरू हो जाती है
3: जी।
4: तो किसान भाइयों को एक सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो ये है कि हर बार हम ये देखते हैं कि किसान भाई जब मौसम जैसी बारिश का आता है
3: जी।
4: तो वो बीज के लिए बाजार की तरफ भागते हैं।
3: बिल्कुल सर।
4: और एक बड़ा एक नेटवर्क है जिसमें बीज वाले वो लोग बहुत पैसे कमा रहे हैं।
3: बिल्कुल सर।
4: तो किसान भाइयों को मैं एक पहली सलाह ये देता हूँ कि पिछले साल उन्होंने जो भी बीज बोया है
3: जी सर,
4: खासकर सोयाबीन का, उड़द का, मूंग का, गेहूं का, चने का जो बोते हैं
3: जी सर,
4: यदि उनके यहाँ वो बीज अच्छी तरीके से पका है
3: जी
4: और उसकी उत्पादन अच्छा मिला है
3: जी,
4: तो ये मानते हुए कि ये बीज आपके इस क्षेत्र के लिए अनुकूल है
3: जी,
4: और यदि आप इस बीज को उपयोग करेंगे
3: जी,
4: तो भी आपके पास फसल उतनी ही पकेगी जितनी की आप अच्छी अपेक्षा करते हैं।
3: बिल्कुल सर।
4: मतलब कई बार ये होता है कि वो जो बाजार से बीज लेके आते हैं वो बीज उतना अच्छा नहीं मिलता।
3: बिल्कुल सर।
4: जिससे कि उनकी उपज अच्छी मिल पाए, क्योंकि अलग अलग प्रजातियां आती हैं।
3: बिल्कुल सर।
4: और इन प्रजातियों में कई क्षेत्र वाइज होता है कि जैसे क्षेत्र की वो है कि नहीं
3: जी,
4: अधिसूचित है कि नहीं
3: जी,
4: तो इसमें क्या होता है कि कई बार खड़े जाते हैं।
3: बिल्कुल सर।
4: तो किसान भाई एक तो ये देख लिया, दूसरा जो बीज वो बोएंगे उस बीज को यदि अंकुरण उनको देखना है।
5: बिल्कुल सर।
4: अंकुरण का मतलब होता है कि यदि हमने 100 दाने लेके और बोए हैं
5: जी,
4: तो उसमें से यदि 70-80 दाने उग रहे हैं।
5: बिल्कुल सर।
4: इसका मतलब ये कि हमारा बीज बोने लायक है।
5: बिल्कुल सर।
4: इसको अंकुरण को देख लें
5: जी सर।
4: और दूसरा, जल्दी बिल्कुल भी बोने की में नहीं करें।
5: बिल्कुल।
4: क्योंकि सोयाबीन की खासकर जो फसल होती है वो थोड़ी सी संवेदनशील होती है
5: जी सर।
4: और कई बार क्या होता है कि थोड़ा भी पानी बरस गया और हमने बोनी कर दी, उसके बाद पानी नहीं आया
5: जी,
4: तो बीज खराब हो जाता है।
5: बिल्कुल सर।
4: तो ये सब चीज सोयाबीन में भी, मक्का में भी सब पर लागू होगी।
5: बिल्कुल।
4: तो बीज की व्यवस्था वो शीघ्र करके रख लें।
5: बिल्कुल।
4: खाद की व्यवस्था करके रख लें।
5: बिल्कुल।
4: मतलब आदान को लेके रखने का ये सबसे उचित समय है।
5: बिल्कुल।
4: और कम से कम 2-3 इंच बारिश
5: जी,
4: मतलब जमीन में 3-4 इंच गहराई तक उंगली, जो अपन हाथ से भी अपन देखें
5: जी,
4: 3-4 उंगलियों के बराबर गहराई जब तक हो जाए।
5: बिल्कुल।
4: और उसके बाद में आजकल एक बोनी की विधि होती है जिसको कहते हैं मेड़ कूड़ विधि
5: जी,
4: मतलब जिसमें थोड़ी सी मेड़ बन जाती है और बीच में नाली बन जाती है।
5: बिल्कुल सर।
4: वो इसलिए किया जाता है कि यदि हम ऐसी फसल बो रहे हैं जिसको मान लो पानी कम पड़ा
5: जी,
4: तो वो जो नाली में पानी भरा रहेगा
5: जी सर,
4: और पानी ज्यादा आता है तो उसी नाली से पानी बाहर निकल जाता है।
5: बिल्कुल सर।
4: तो ये इसका अटैचमेंट ट्रैक्टरों में आसानी से हो सकता है
5: जी।
4: यदि कोई किसान भाई जो हमारे आसपास के क्षेत्र में है
5: जी,
4: वो चाहे तो कृषि विज्ञान केंद्र में आकर यहाँ पर देख भी सकते हैं।
5: बिल्कुल
4: सर। और यहाँ से हमसे सलाह लेके वो हम बता देंगे किसी भी लोहार को
5: जी,
4: तो जो उनके पास सीड ड्रिल है
5: जी जी सर,
4: बोनिंग मशीन है
5: जी,
4: उसमें वो व्यवस्था हो सकती है।
5: बिल्कुल सर।
4: दूसरी बात ये है कि खाद बोने में हमको ध्यान रखना चाहिए कि जितनी भी अनाज वाली फसलें हैं
5: जी सर,
4: उन फसलों को हम बोते समय एनपीके से साथ बोए
5: जी,
4: मतलब उसमें खाद आगे और पीछे भी इस तरह की व्यवस्था होती है सीड ड्रिल में
5: जी सर।
4: और जितनी भी दाल वाली फसलें हैं
5: जी,
4: और खासकर सोयाबीन है या दाल वाली उड़द मूंग है, इस फसलों में इसमें डीएपी डाल सकते हैं।
5: बिल्कुल सर।
4: और यूरिया का प्रयोग खड़ी फसल में 20 दिन के बाद ही करें
5: जी,
4: मतलब अभी बोने के समय यूरिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए
5: जी।
4: कई किसान भाई नहीं समझते हैं तो वो यदि खाद डालते हैं तो उसका प्रभाव फसल को नहीं मिल पाता।
5: बिल्कुल सर।
4: तो ये 2-3 चीजें हैं वो जो अभी यदि करेंगे
5: जी,
4: तो किसानों के लिए उत्तम होगा। और कृषि विज्ञान केंद्र झाबुआ में स्थित है
5: जी,
4: और ये एक तरह से किसानों की विद्यालय है, पढ़ने की जगह है
5: जी।
4: और किसी भी किसान को जब भी कोई इस तरह की समस्या आती है
5: जी,
4: कि उसे क्या करना है
5: जी सर,
4: कौन सा बीज अच्छा हो सकता है, या उनके पास कोई समस्या आती है, कीड़े बीमारी आते हैं
5: जी,
4: तो वो आकर यहाँ पर हमसे संपर्क कर सकते हैं
5: जी।
4: हमारा दायित्व तो उन सब की समझाना है
5: जी,
4: बताना है, और आवश्यकता पड़ने पर किसान के खेत में जाके भी हम उसको तकनीकी ज्ञान देते हैं।
5: बिल्कुल।
4: तो ये यदि आप करेंगे तो मतलब आपकी फसल भी अच्छी होगी और मतलब ज्यादा लाभ होगा, तो आप केवीके से संपर्क में बने रहें।
3: सर, यहाँ पर एक सवाल आता है, चूंकि हमने गांव पे भ्रमण किया है और बहुत सारे किसानों का ये कहना है कि हमें उचित बीज की व्यवस्था यहाँ पर नहीं होती, हम दूसरी जगह जाते हैं वहाँ पर कम पैसों में हमें बीज उपलब्ध हो जाता है, तो सर क्या कारण है? और हमारे किसान साथी, हमारा दूसरा सवाल कि हमारे किसान साथी कौन सा बीजों का चयन करें जिससे उनकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो सके। सर,
4: अब जैसे इसमें क्या होता है कि यहाँ पर खरीफ में कई सारी फसलें बोई जाती हैं
5: जी सर,
4: मुख्य रूप से मक्का है
5: जी,
4: कपास है
5: जी,
4: सोयाबीन
5: जी,
4: जो कि 3 बड़े क्षेत्रों में बोई जाती हैं
5: जी सर।
4: अब इसमें से क्या होता है कि कपास का जो बीज है वो संकर बीज आता है।
5: बिल्कुल सर।
4: और संकर बीज में भी यहाँ पर डीसेल 32 के नाम से एक बीज आता है जो कि लंबे समय तक रहता है और उसकी रेशे की लंबाई भी काफी रहती है
5: जी।
4: वो बीज अच्छा होता है और मतलब उसको बोने से इनको फायदा यूं मिलता है कि बाजार में जो सामान्य कपास है
5: जी,
4: उससे इसका भाव करीब 2-3 हजार रुपये ज्यादा रहता है।
5: बिल्कुल सर।
4: क्योंकि ये ट्राइबल क्षेत्र है
5: जी,
4: मतलब हमारे बनवासी भाई हैं, सब लोग हैं
5: जी,
4: तो इनके पास श्रम शक्ति बहुत है।
5: बिल्कुल सर।
4: तो ये लोग कपास पैदा करके इससे अच्छा फायदा ले रहे हैं,
5: ले रहे हैं,
4: तो इनको ये ले सकते हैं, परंतु ये चूंकि संकर बीज है और इस बीज को हमको बार बार बदलना पड़ेगा।
5: बिल्कुल सर।
4: और ये दो देखिए, बीज मिलने के 2 स्रोत हैं
5: जी,
4: एक तो सरकारी बीज गोदाम होते हैं और एक प्राइवेट है।
5: बिल्कुल सर।
4: हमको पिछले कई सालों से जब हम खेती करते आ रहे हैं तो हमें पता है कि कौन सा बीज हमारी कौन सी कंपनियों के बीज हमारे लिए ज्यादा अधिक उपयुक्त है
5: जी सर।
4: अब मैं चूंकि कंपनियों का इसलिए नहीं नाम लूंगा क्योंकि कंपनियों का नाम लेना मेरे लिए वर्जित है।
5: बिल्कुल सर।
4: तो वो हम कपास का बीज ले सकते हैं
5: जी।
4: इसके अलावा मक्का के बीज भी क्या होता है, 2 तरह के होते हैं, संकर भी होते हैं और एक कंपोजिट वेरायटी भी होती है। तो यदि हमसे संपर्क करेंगे तो हम उनको बता देंगे कि कंपोजिट वेरायटी में कुछ वेरायटी है जो कि उपलब्ध हो सकती है
5: जी सर।
4: और अब आपको जब भी बीज हम खरीदते हैं जहाँ से भी लेते हैं
5: जी सर,
4: चाहे सोयाबीन का हो या कोई भी हो,
5: बिल्कुल
4: उस व्यक्ति से रसीद लेना बहुत आवश्यक है। क्योंकि होता ये कि यदि हमारे पास बीज खराब निकल गया
5: जी सर,
4: तो बीज के हम उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तब कुछ नहीं कर पाते यदि आपको रसीद नहीं
6: है। बिल्कुल सर।
4: तो दूसरा ये है कि हमारा जो बहुत भरोसे का आदमी है,
6: बिल्कुल सर,
4: जो व्यक्ति हमारे भरोसे पे खड़ा उतरता है, हमको पता है ये व्यक्ति काफी समय से काम कर रहा है, उससे ले। दूसरा, यदि उनको ऐसा लगता है कि कोई जानकारी इस संबंध में चाहिए,
6: जी सर,
4: तो आपके कृषि विज्ञान केंद्र में हम लोग यहाँ पर 2400 घंटे उपलब्ध हैं।
6: बिल्कुल सर।
4: छुट्टी के दिन भी यदि कोई आएगा तो हमारे यहाँ केंद्र खुला रहता है।
6: जी सर।
4: सब लोग यहीं रहते हैं।
6: जी सर।
4: तो हम उनको अपनी उनकी जानकारी के हिसाब से बता देंगे कि कौन कौन सी वेरायटी, जैसे अभी सोयाबीन की वेरायटी 335 है।
6: जी सर।
4: जवाहर 335 है।
6: जी।
4: एक JS 2098 है।
6: जी सर।
4: या अभी एक राज सोया 18 आई है।
6: जी सर।
4: जो नई नई जातियां आती रहती है।
6: जी सर।
4: तो वो हमारे क्षेत्र के लिए कौन सी उपयुक्त है उसके बारे में हम जानकारी उनको दे दें।
6: बिल्कुल सर।
4: और वो यहाँ से बीज ले आ सकते हैं। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि यदि भारत के सभी किसान एक छोटी सी बात समझ जाए,
6: जी सर,
4: कि उन्हें यदि इस साल 40 किलो कोई बीज मिल गया है,
6: जी सर,
4: वो जिसका उत्पादन यदि उन्होंने 4-5 क्विंटल कर लिया है, 10 क्विंटल कर लिया है,
6: जी सर,
4: और उसमें थोड़ी सी सावधानी ये रखना पड़ती है कि बीज बोने के बाद में फसल में निरंतर निगरानी रखें।
6: बिल्कुल सर।
4: और निगरानी रखने के बाद ये देख लें कि उसमें जो दूसरे प्रजाति के पौधे हैं वो देखने से पता चल जाता है।
6: बिल्कुल सर।
4: तो उन पौधों को निकाल के अलग करने और उस बीज को यदि आपके अच्छा पका है,
6: जी सर,
4: तो ऐसे बीज को आप 3 से 4 साल तक कर सकते हैं।
6: बिल्कुल सर।
4: तो झाबुआ जिले के यदि सभी गांव के लोग यदि अपनाने लगे इन सब चीजों को,
6: जी सर,
4: तो एक साल में ही करोड़ों रुपए का पैसे को बचाया जा सकता है।
6: बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने सर।
4: किसान को ये एक गलत फहमी है कि वो जो दुकान पे मिल रहा है या चमकने वाली पन्नी में जो बीज मिल रहा है,
6: जी,
4: वो अच्छा है,
6: जी,
4: जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है।
6: जी।
4: किसान अपने यहाँ स्वयं का बीज पैदा कर सकता है।
6: बिल्कुल सर।
4: या फिर कम मात्रा में बीज लाए,
6: जी,
4: और उस बीज को अच्छा है तो उसको पैदा करके बढ़ाए और उस बीज का उपयोग वो लगातार आने वाले 3-4 साल तक कर सकता है।
6: बिल्कुल सर।
4: उसका उत्पादन भी कम होगा तो हम लोग केंद्र में बैठे हैं कि हमारी जवाबदारी है कि इसी हम जानकारी उनको दें। तो मुझे लगता है कि ये आपका जो रेडियो है इसके थ्रू यदि इसी जीत पहुंचेगी,
6: जी सर,
4: और हमसे संपर्क करेंगे तो उनको निश्चित ही लाभ होगा ये काम करना।
3: सर, एक और सवाल है। यहाँ की हमने मिट्टी को देखा है, परखा है, जांचा है कि यहाँ पर दोमट मिट्टी, लाल मिट्टी और काली मिट्टी का मिश्रण है यहाँ पर। और यहाँ पर जो समस्या आती है कि सिर्फ 3 ही फसलें वो बोते हैं, चाहे वो सोयाबीन हो, मक्का हो या कपास हो, अन्य फसलों को वो क्यों नहीं बोते हैं? सर, आपका क्या कहना है इस बारे में? सर
4: देखिए, क्या है कि ये तो अभी जैसे हम पूरे जब जिले की बात करते हैं,
6: जी सर,
4: तो हमारे जिले में करीब 6 विकास खंड है।
6: बिल्कुल सर।
4: और यदि अलीराजपुर को भी जोड़ लिया जाए तो 12 विकास खंड, ऑलमोस्ट एक जैसी स्थिति है सभी जगह।
6: बिल्कुल सर।
4: अब इनमें जो पेटावत का क्षेत्र है या पॉकेट्स में काली देवी है, मेघनगर के आसपास है, थानला के आसपास है,
6: जी सर,
4: तो जो लोग सब्जियों की खेती कर रहे हैं,
6: जी,
4: तो वो लोग क्योंकि थोड़े समझदार हो गए, मतलब उन्होंने वो सब चीज समझ ली है।
6: जी।
4: अब आधे से ज्यादा किसानों के लिए हम बात करते हैं, पूछते हैं तो आप मक्का क्यों बो रहे हो, तो उनका एक सही सोच होती है कि हम मक्का खाने के लिए बो रहे हैं।
6: जी।
4: जबकि हमारी जो मिट्टी है, जैसा अभी आपने कहा,
6: जी,
4: कि हल्की है, दुमट है, और कई तरह की मिट्टी है, मिक्सचर है,
6: जी,
4: मक्का इन सभी फसलों में सबसे ज्यादा भोजन लेने वाली फसल है।
6: बिल्कुल सर।
4: और हमारी जमीन सबसे कमजोर है।
6: बिल्कुल सर।
4: तो यदि हम कमजोर जमीन में ज्यादा न्यूट्रिएंट लेने वाली फसल बोएंगे,
6: जी सर,
4: तो निश्चित ही उसमें उत्पादन कम होगा।
6: बिल्कुल सर। जय श्री
4: राम। तो यदि इनको ये चुनाव करके कि हमको क्या चीज बाजार में पैदा करके हम बेचें जिससे हमको ज्यादा पैसा मिले,
6: जी जी जी,
4: और मक्का हम बाजार से खरीद भी सकते हैं।
6: बिल्कुल सर।
4: तो इस तरह की यदि इनकी मानसिकता बन जाएगी, और अभी क्या हो रहा है कि सब्जियों में अभी क्या हो रहा है, सेचुरेशन की स्थिति तो नहीं है,
6: जी,
4: अभी आप लगा सकते हैं।
6: बिल्कुल सर।
4: और शुरुआत में भी क्या होता है, अभी जैसे आपने देखा होगा टमाटर का भाव उस समय 100 रूपये के आसपास है।
6: बिल्कुल सर।
4: और बीच में 2 रूपये होगा कभी, तब आप फिर न्यूज आएगी।
6: जी जी सर।
4: तो मतलब ये है कि जिनके पास संसाधन है,
6: जी जी जी,
4: या जिन्होंने पॉली हाउस बनाए,
6: जी,
4: ये सब चीजें उनके लिए हैं कि आप ऐसे मौसम में, साल में 365 दिन होते हैं।
6: बिल्कुल सर।
4: तो 365 दिन में से हमको ये पता होना चाहिए कि कब किस किस की चीज की मांग बढ़ती है।
6: बिल्कुल सर।
4: और किसकी कब उत्पादन होने से ज्यादा नुकसान होता है।
6: बिल्कुल सर।
4: तो आप उसको समय को परिवर्तित करके,
6: जी,
4: उसको ज्यादा पैसा कमा सकते हैं।
6: बिल्कुल।
4: तो हमारे मिट्टी की उतनी वो नहीं है दिक्कत है, लोगों में समझ के अभी उतनी नहीं है, अभी झाबुआ के आसपास भी लोग अभी खेती करने लगे।
6: जी,
4: किसानों को मैं जानता हूँ क्योंकि यहाँ पे हाट में आते हैं।
6: जी।
4: तो यदि आप सब्जियों की तरफ जाएंगे,
6: जी,
4: और 4-5-6 तरह की सब्जियां लगाना शुरू कर दें,
6: जी,
4: और चूंकि हमारे पास श्रम शक्ति भी ज्यादा है।
6: बिल्कुल सर।
4: तो वो लोग आके हाट में खुद बैठ के बेच
6: सकते हैं,
4: तो मंडी में बेचने और हाट के बेचने में आपको दुगने से ज्यादा अंतर फर्क पड़ जाता है।
6: बिल्कुल सर।
4: तो यदि वो बेचना शुरू करें तो मुझे लगता है कि उनकी माली हालत में सुधार हो सकता है। यदि वो 7 दिन में से 4-5 यदि 3-4 आठ भी बेच चुके अपनी सब्जी को मौसम के अनुसार, तो उनकी स्थिति में सुधार हो सकता है। तो मिट्टी नहीं, यदि वो खेती करना चाहेंगे तो किसी भी मिट्टी में या कोई भी खेती हो सकती है।
3: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम एक यहाँ पर विराम लेते हैं, सुनते हैं इस गीत को। इसके बाद डॉक्टर साहब से बहुत सारे हमारे सवाल हैं, उनसे भी हमें जानना है, उन सवालों के जवाब भी हमें जानना है। तो कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी बातें। आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM,
7: आपनो रेडियो अपनी बातें।

0: सर आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, हमारा बस आखिरी सवाल है कि यहाँ पर हमारे किसान साथी चूंकि उबड़ खाबड़ जमीन है, पानी का संसाधन बहुत ही कम है, ऐसे में कम पानी वाली फसलें वो कौन सी हैं जिसको वो कर अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकते हैं? सर
1: देखिए क्या है कि पानी तो ऐसी चीज है कि उसके बिना कोई खेती हो नहीं सकती
0: जी।
1: अब चूंकि हमारे यहाँ की जो व्यवस्था है जमीन की वो ढालू है,
0: बिल्कुल सर,
1: मतलब ऊंची नीची है, और इसमें किसान भाई हमारे बहुत समझदार हैं
0: जी।
1: यदि हम जाके कई बार खेतों में देखते हैं तो पता लगता है कि नीचे हमारे

0: हमारे यहाँ देखिए धान भी बोया जाता है,
1: बिल्कुल सर,
0: मक्का भी बोई जाती है
1: जी,
0: और उड़द भी बोया जाता है,
1: बिल्कुल सर।
0: तो जैसे ये उड़द है, मूंग है
1: जी,
0: है ना, ये दोनों जो फसलें हैं ये करीब 65-70 दिन में पक के तैयार हो जाती है
1: जी,
0: और इनमें पानी की आवश्यकता बहुत कम
1: बहुत कम होती है, बिल्कुल सर।
0: तो यदि किसी के पास पानी की कमी है
1: जी,
0: तो उड़द मूंग लगा सकता है,
1: बिल्कुल सर।
0: दूसरा ये है कि पानी के लिए हमको सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि दो तरह का पानी होता है, एक तो भूमिगत जल,
1: बिल्कुल सर,
0: और एक सतही जल,
1: बिल्कुल सर।
0: तो जो भूमिगत जल है उसको यदि बढ़ाना है तो हमको पानी जगह जगह रोकना पड़ेगा, तो नीचे का जल बढ़ेगा
1: जी सर।
0: तो बार बार हम कई जगह देखते हैं, सब जगह कहा जाता है कि जितना वर्षा जल आ रहा है
1: जी सर,
0: उसमें से अधिक जल को कैसे भूमि के नीचे उतारा जाए,
1: बिल्कुल सर।
0: तो वो यदि आपके तालाब है, नदी नाले है, उन सबको जिसमें कि पूर्व पानी को तो नहीं रोका जा सकता, परंतु हमको ये व्यवस्था करनी चाहिए कि आने वाले जो समय रहेगा बरसात के बाद, तो साल भर हमारे पास पानी मिलता रहे,
1: बिल्कुल बिल्कुल सर।
0: तो वो एक तो काम करना अपने को, जितने पुराने कुएं हैं उन कुओं को रिचार्ज करने के लिए, रिचार्ज का मतलब ये होता है कि आप उसमें पानी को डाइवर्ट करके ले जाएं
1: जी सर,
0: और उस पानी उसमें भरे, तो वो जो कभी पानी निकालने के लिए काम में आ रहा था वो जमीन में जल स्तर बढ़ाने के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं
1: जी सर, जी सर,
0: ये हो सकते हैं। दूसरा है जो फसलों की आपने जो बात की थी, उसमें होता क्या है कि यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि इस तरह की स्थिति है
1: जी,
0: उसमें एक चीज होती है कि यदि पानी कभी कम ज्यादा होता है तो हम दो तरह की फसलों को लगाते हैं
1: जी,
0: जैसे मक्का के साथ सोयाबीन है
1: जी, जी जी,
0: कब मक्का के साथ कपास है
1: जी,
0: ये जो इसको कहते हैं हम लोग इंटरक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग मतलब होता अंतर्वर्ती फसल पद्धति
1: जी,
0: ये इसलिए चुनाव किया जाता है
1: जी,
0: कि जिसमें से एक फसल की पानी की मांग अधिक होती है, एक की कम होती है
1: जी सर,
0: एक की जड़ों की गहराई ज्यादा होती है, एक की जड़ों की गहराई कम होती है
1: जी।
0: ये इसलिए चुनाव किया जाता है कि मान लीजिए किन्हीं परिस्थितियों में पानी बहुत कम बरसता है
1: जी,
0: तो एक फसल पक जाए,
1: पक जाए,
0: और यदि पानी ठीक बरसता है या ज्यादा बरसता है तो दोनों फसल पक जाए,
1: बिल्कुल।
0: तो ये जो इंटरक्रॉपिंग होती है ना वो करना चाहिए, और झाबुआ जिले में चूंकि अभी बैलों से खेती हो रही है
1: जी,
0: बहुत सारे किसान अभी करते हैं
1: जी,
0: तो उनको ये सलाह दी जाती है कि आप जितनी अंतर्वर्ती फसलों की खेती करेंगे उतनी आपकी मतलब पानी की जो परेशानी
1: जी,
0: कम पानी ज्यादा पानी की जो स्थिति बनती है
1: जी सर,
0: उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं,
1: बिल्कुल सर।
0: तो ये कर सकते हैं
1: जी।
0: साथ ही साथ अब एक ये देखिए कि आजकल तो बड़ी कई किसान क्या करते हैं कि पूरे खेत में ड्रिप लगा देते हैं,
1: ड्रिप सिंचाई,
0: और आवश्यकता पड़ने पर वो ड्रिप पर को चालू कर देते हैं,
1: बिल्कुल सर।
0: यदि मान लीजिए बहुत परिस्थिति खराब हुई, अब जैसे कपास की फसल है
1: जी सर,
0: आपने उसको यदि 4-5 बीघा में लगा रखा है
1: जी सर,
0: और यदि पानी की स्थिति खराब हुई
1: जी,
0: तो फसल खराब हो जाएगी,
1: बिल्कुल सर।
0: तो आप एक बार ड्रिप ले लें और उस ड्रिप को खेत में जब आवश्यकता पड़े चला दें
1: जी सर,
0: तो आपकी फसल बच सकती है,
1: बहुत बढ़िया।
0: और झाबुआ के जितने भी हमारे किसान भाई हैं उन सबके लिए तो सब्सिडी पर उपलब्ध है,
1: उपलब्ध है, बहुत
0: बढ़िया। वो ये रहा है कि लोगों में अभी तक ये जागरूकता तो ये कम है
1: जी सर,
0: कि जब हम किसी किसान कभी कार्यक्रम में जाते हैं और पूछते हैं
1: जी
0: कि आपके पास ड्रिप है या नहीं, तो कई सारे लोग कहते नहीं
1: जी जी जी,
0: और जब उनसे पूछते हैं कि तुमको पता है कैसे मिलती है, तो वो 99% लोगों को पता नहीं है,
1: बिल्कुल सर।
0: उनको बताया गया कि ऑनलाइन लेना है, तो ऑनलाइन का मतलब समझते नहीं,
1: बिल्कुल।
0: तो उनको हम लोग कई बार यहाँ पर जो आते हैं उनको तो प्रयास कर रहे हैं कि आप संबंधित विभाग है, जैसे कृषि विभाग है या हॉर्टिकल्चर विभाग है
1: जी,
0: यहाँ पर जाके अपना कागज सब ले जाएं और उनको अपना रजिस्ट्रेशन करवा दें, वो जिस स्कीम में आप चाहते हो उस स्कीम में आपका नाम लिख जाएगा,
1: बिल्कुल।
0: और यदि पहले पाए में यदि आपका नंबर आ गया तो आपको वो मिल जाएगी, नहीं तो आप घर पे बैठे रहोगे तो सॉरी कोई भी आके आपको कुछ देगा नहीं,
1: बिल्कुल सर।
0: तो ये जानकारी उनको पहुंचना बहुत जरूरी है, जो कि उनके लिए हितकर रहेगी और पानी का सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं।
2: सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।
0: जी जी जी बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, और जब भी आपको ऐसा लगता है कृषि विज्ञान केंद्र में आप आ सकते हैं
1: जी,
0: साथ ही किसानों को भी प्रेरित करें कि वो यहाँ पर आए
1: जी, जी, जी,
0: और हम लोगों का काम उनको यहाँ ज्ञान देना है,
1: बिल्कुल सर।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, आपरो रेडियो आपरी बातें।
2: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, और पता ही नहीं चला ये समय कितने जल्दी निकल गया है। हमने विषय विशेषज्ञ को भी सुना, साथ में हमारे झाबुआ जिले के डॉक्टर तोमर साहब जो कृषि विभाग यानी KVK में पदस्थ हैं, उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी भी दी। हम अपने बार बार किसान साथियों को ये जानकारी सुना रहे हैं कि ये जानकारी सुनकर, क्योंकि अभी तैयारी का समय है, किसान साथी खेतों की तैयारी करें, कम्पोस्ट इसलिए बता रहे हैं कि इससे लागत कम हो और आपकी आमदनी बढ़े। तो हमें आशा है कि इस कार्यक्रमों को सुनकर आपने अपने जीवन में कुछ बदलाव के लिए दृढ़ संकल्प लिया होगा। हम आशा करते हैं कि ये आप बातचीत आपको हम सुनाते हैं वो आपके लिए बेहद जरूरी हो। इसी के साथ साथियों हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी कार्यक्रम से जाने का। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आप रेडियो आपकी बातें।

0: तो तुमसे है।
1: दोस्तों आपका स्वागत है एक बिल्कुल ही नए प्रोग्राम में। आप सब हमारे लिए उतने ही इम्पोर्टेंट हैं, उतने ही बड़े सेलिब्रिटी हैं, जितना कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी होगा। आज की तारीख में आप हैं हमारे सेलिब्रिटी। तो दोस्तों आज के इन सेलिब्रिटी के लिए, उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, उनके चाहने वाले, उनके परिवार वाले, उनके दोस्त एक प्रोग्राम बनाते हैं, उनको संदेश देते हैं, शुभकामनाएं पेश करते हैं और उनकी पसंद के गीत हम प्रसारित करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्यारे से प्रोग्राम को हमारे आज के सेलिब्रिटी के साथ।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त नितिन। आज के बर्थडे प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बर्थडे मनाएंगे कल्पेश पटेल जी का। कल्पेश पटेल मेरे क्लासमेट है और हम सीनियर के जी से लेके 10वीं कक्षा तक साथ पढ़े हैं ब्राइट स्कूल वडोदरा में। तो चलिए शुरू करते हैं ये प्यारा सा प्रोग्राम। कल्पेश के दो बच्चे एरन और विहान, दोनों ने भी अपने पापा को बर्थडे विश किया है।
1: Hi Kalpesh, you are an amazing person. Thank you for all the effort you put in making our lives better and being supportive of my Amazon shopping obsession. You are a blessing in my life and I'm so very grateful to have spent these wonderful years with you. I don't say it often, but I do love you and hope you have a wonderful birthday. P.S. I'm not cooking.
2: Happy birthday, Dad. Thank you for everything that you have done in my life, especially these past few years where you have had to drive me back and forth from New York for all the various events that I have decided to attend. I may not spend much time at the house anymore, but there are many things that I remember and make me who I am thanks to all that you have done for me. I hope this 52nd birthday is very special and a much-deserved break for all that you do for us. Thank you once again and have a great birthday.
3: Happy birthday, Dad. Thank you for always supporting me, believing in my education, and buying the food and games that I want. I'm very appreciative of the hard work you do for us. Thank you.
0: कितना प्यारा सा मैसेज जो मेघना जी ने अपने पति कल्पेश को दे रही है। उस बात पर मुझे एक कविता याद आ रही है। तू है मेरा हमसफर, तू है मेरा सहारा, तेरे साथ हर रास्ता लगता है प्यारा, तेरे बिना अधूरी थी मेरी कहानी, तेरे संग पूरी हुई मेरी जिंदगानी, तेरे साथ हंसी है तेरे साथ रोना, बस तुझ में ही देखा मैंने अपना कोना, न शिकवा न कोई गिला है, तेरा साथ ही मेरा हौसला है, तेरे बिना कुछ भी अधूरा लगे, तेरा साथ ही पूरा लगे, तेरा प्यार मेरी पूजा है, हर पल मेरी आरजू सा है, हर सुबह तुझसे शुरू हो और हर रात तुझ पर ही खत्म हो, मेरी दुनिया तुझसे रोशन, तेरे बिना सब कुछ सुनापन, मेरे होठों की मुस्कान है तू, मेरे दिल की जान है तू, जीवन के हर मोड़ पर तेरे साथ चलना ही सबसे सुंदर सफर है। तो इस खूबसूरत कविता के बाद आइए सुनते हैं एक प्यारा सा नगमा।

0: हाय मुकेश, कैसा है भाई तू?
1: अरे मस्त नितिन, तू कैसा है? एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन एसएन ब्रोज लॉन्च, बोथ टू यू एंड समीर जी।
0: थैंक यू वेरी मच डियर, थैंक यू वेरी मच। कल्पेश का बर्थडे है, तू तेरा विशेष दे सकता है।
1: अरे सवाल ही नहीं, कल्पेश कल्पेश और मेरा नाता जाता है स्कूल में। हम लोग होते थे छोटे छोटे हाइट में, कल्पेश पूर्वेश और मैं, हम लोग सबसे आगे खड़े रहते थे लाइन में। और मजे की बात यह है कि हम तीनों फिर बाद में लंबे हो गए। तो ये था हमारा स्कूल वाला नाता। और बाकी बड़े होने के बाद फिर सब लोग अपना पढ़ाई वढ़ाई करने चले गए। कल्पेश अमित के साथ चला गया यूएस। तो लेकिन यूएस अभी बहुत सालों बाद फिर जब मेरा यूएस यूएस जाने का शुरू हुआ बिकॉज ऑफ काम के सिलसिले में, तो वहां पे मेरा रुकना कल्पेश के यहाँ ही होता है नितिन।
0: वेरी गुड,
1: तो इतना मतलब प्यार से वो है, मेघना उसकी वाइफ, दोनों बच्चे, इतना मजा आता है उन लोगों के साथ में। मैं जब जा रहा हूँ यूएस जाता हूँ तो ज्यादातर न्यू जर्सी में वो है, तो स्टॉप एक दो दिन का वहां पे होता है। तो उसी के घर पे हमने कितने गेट टुगेदर किए हैं, जो हमारे 6-7 लोग वहीं न्यू जर्सी के आसपास रहते हैं ब्राइट के, वो सारे लोग वहां जमा होते हैं।
0: वाह
1: तो कल्पेश के साथ तो बहुत अच्छी मेमोरीज है और आज उसका बर्थडे है तो बनता है भाई। कल्पेश हैप्पी बर्थडे माय डियर फ्रेंड, एंड गॉड ब्लेस यू मैन, एंड विश यू अ वेरी वेरी सक्सेसफुल एंड प्रॉस्परस फुल ईयर एंड ऑल लाइफ। यार मतलब दुआएं निकलती है तेरे लिए कल्पेश। सो अगेन हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ब्लास्ट, आई होप यू एंजॉय इट फुल्ली। हैप्पी बर्थडे कल्पेश।
0: थैंक यू मुकेश, थैंक यू वेरी मच,
1: थैंक्स नितिन, थैंक्स फॉर लेटिंग मी डू दिस।
0: थैंक यू। बहुत ही बढ़िया मैसेज मुकेश ने कल्पेश को दिया है उसके जन्मदिन पर। आज का दिन है सबसे प्यारा, तेरे नाम का सजा है सारा नजारा। खुशियां मिले तुझे बेहिसाब, हर ख्वाब तेरा हो लाजवाब। हंसी तेरे होठों से ना जाए, तेरे जीवन में उजियारा ही छाए। सपनों की उड़ान तू भरता रहे, हर मोड़ पर तू मुस्कुराता रहे। दुआ है रब से मेरी ये बार बार, तेरी उम्र हो 100 के पार। तो दोस्तों सुनते हैं खिलखिलाता हुआ गीत।

जान के लाले बोला मुझको कोई बचा ले। चूहा आगे पीछे बिल्ली पीछे बिल्ली चूहा आगे पीछे बिल्ली पीछे बिल्ली चूहा आगे पीछे बिल्ली पीछे बिल्ली चूहा आगे आ।

झगड़े रोज के लफड़े लफड़े झगड़े अरे झगड़े।

0: के आया, दरवाजे पे
1: उस दिन बीवी बन गई भोली, कुंडी खोली हंस के बोली, जाने तमन्ना अंदर आओ, पहले तो कुछ

हर नफरत हारी और पर जीती लुड़ी खुशी पे लौट के आए आए रे आए रे आए रे आए रे आए पीना छूट गया पीना छूट गया बीवी ने इतना जिया प्यार पीना छूट गया फिर दोनों ऐसे मिले फिर दोनों ऐसे मिले प्यार में ही डूब गए प्यार अगर मिले तो हर नशा है बेकार जहां चारिया।

0: मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे कल्पेश, हैव अ ग्रेट टाइम एंड ग्रेट ईयर।
1: आशीष का ये प्यारा मैसेज के बाद एक कविता पेश है। आज का दिन है सबसे

0: से प्यारा खुशियां लाया ये सुनहरा सवेरा, हर पल तेरा मुस्कुराता रहे, हर ख्वाब तेरा सजता रहे।
1: तो दोस्तों
0: सुनते हैं एक खूबसूरत सा गीत जो आशीष डेडिकेट कर रहा है कल्पेश के लिए, तो आइए ना सुनते हैं।

0: हिमांशु कैसा है भाई?
1: बस फाइन, आप बताइए नितिन भाई।
0: बस मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। कल्पेश का बर्थडे है तो तू अपना विश दे भाई।
1: मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे।
0: थैंक यू भाई, थैंक यू। चल सर,
1: ओके, चल बढ़िया।
0: चल भाई भाई भाई, चल। हिमांशु ने बहुत ही प्यारा सा मैसेज दिया है कल्पेश को, तो आइए सुनते हैं अगला गीत।

हैप्पी बर्थडे कल्पेश, मे गॉड ब्लेस यू विद लॉट ऑफ सक्सेस दिस ईयर एंड ऑल्सो थ्रू आउट योर लाइफ। और मुझे बेहद खुशी है कि मेरे रेडियो चैनल पर तेरा बर्थडे मनाया जा रहा है। हमारे ब्राइट के क्लासमेट्स तुझे विश कर रहे हैं और हम ग्रुप में थ्रू ये रेडियो तेरे बर्थडे को मना रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये प्रोग्राम काफी पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के कलाकार के इस प्यारे से प्रोग्राम में, जहां कुछ ख्वाब आवाज बनकर सचते हैं, कुछ जज्बात गीतों में ढल जाते हैं, और जब दिल गाता है तो हर सुनने वाला अपना सा लगने लगता है। आज हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही कलाकार जिनकी आवाज में सच्चाई है और सुरों में जादू। तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करें।

0: आज के कलाकार का, ये लीजिए एक और बहुत ही मासूम, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम लेकर हम हाजिर हैं रेडियो एसएन और रेडियो टांटिया भील पर। और आज जो प्रतिभा, जो गायिका, जो टैलेंट हमारे साथ हैं, वो हैं श्वेता जी। तो हम लोग श्वेता जी से ही बात करेंगे। उनका थंडर उनसे स्टील करना, उनसे चुराना बिल्कुल उचित नहीं होगा। श्वेता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत आभार कि आप आई। तो हमारे सभी सुनने वालों के लिए और आज के कलाकार के जो मेंबर्स हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो आज आपको स्वीकारेंगे, आपकी बातचीत सुनेंगे, आपके गीत सुनेंगे और झूमेंगे, तो उनसे बातचीत कीजिए और उन्हें बताइए आप भला कौन हैं, कहाँ हैं, क्या करती हैं आप।
1: जी, मैं अभी बैंगलोर में लोकेटेड हूँ और फिलहाल मैं जॉब करती हूँ। मैं कैम ग्लोबल AI मीडिया नाम की कंपनी में हेड ऑफ द केमिस्ट्री डिपार्टमेंट हूँ। यहाँ हम एडो AI ट्यूटर्स ब्रांड के तहत नीट और JEE कोचिंग्स पर काम कर रहे हैं और हमारा काम बेसिकली AI ड्राइवन लर्निंग कंटेंट और कोचिंग सॉल्यूशंस रेडी करने का है ताकि स्टूडेंट्स एग्जाम प्रिपरेशन को बेटर वे में कर सकें।
0: बहुत बढ़िया। तो दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग श्वेता जी, वेरी इंटरेस्टिंग। आप लोग कंटेंट रेडी कर रहे हैं या स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, दोनों में से क्या चीज चल रही है या दोनों चल रही है?
1: कंटेंट, दोनों दोनों कंटेंट भी रेडी कर रहे हैं हम लोग, CBSE का कंटेंट भी रेडी कर रहे हैं और उसके अलावा हम लोग नीट एंड JEE कोचिंग्स पर भी आज का काम कर रहे हैं। हमारा कोचिंग के एड्स वगैरह आ रहे हैं तो काफी एडमिशन भी हो रहे हैं।
0: ओके ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। खैर श्वेता जी, एक और चीज मेरे दिमाग में आ रही है जिसके बारे में हम दूसरे प्रोग्राम में आपसे बात करना चाहेंगे। ये प्रोग्राम तो म्यूजिक का है, संगीत, गीत। तो हम लोग यहाँ पर संगीत और गीत की ही करेंगे, लेकिन आपका जो कार्य क्षेत्र है वो बहुत ही दिलचस्प है, उसके बारे में मैं जरूर आपसे इधर ऑफलाइन या फिर हम लोग ऑनलाइन भी बात करेंगे तो मजा आएगा। चलिए दोस्तों, आपने सुना श्वेता जी कहाँ हैं, क्या करती हैं। एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट जॉब, बच्चों के भविष्य को सुधारना, उनको बनाना, उनको गाइड करना, ये छोटा मोटा काम नहीं होता दोस्तों। तो चलिए उस काम के गंभीरता को थोड़ा सा एक बार विराम देते हुए थोड़ा म्यूजिक का, संगीत का आनंद उठाते हैं। श्वेता जी की ही आवाज में पेश करता हूं ये पहला गीत।

0: बहुत बढ़िया श्वेता जी, शानदार शुरुआत और प्यारी सी गायकी। श्वेता जी अब मुझे ये बताओ कि जब आप छोटे थे, बच्चे थे, है ना, तब आप क्या बनना चाहते थे? जिंदगी में बड़े होके आपके क्या सपने थे? किसी को देखा होगा आपने, पापा को शायद, या किसी और को रोल मॉडल होगा कोई, क्या बनना चाहते थे आप?
1: जब छोटे थे तो बेसिकली म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट था। सिंगर्स में लता जी के जैसे गाना चाहती थी, उनके गीतों को नोट करती थी, कॉपी में नोटबुक बना के रखी थी और पूरे टाइम रेडियो पर उनके गाने को सुनती थी और प्रैक्टिस करती थी। सोचती थी कि काश कुछ ऐसा हो जाता जो मैं भी म्यूजिक के क्षेत्र

0: कर पाती। तो बेसिकली म्यूजिक में ही जाना चाहती थी, बट उस टाइम घर में मतलब बेसिकली एजुकेशन का एनवायरमेंट ज्यादा था, तो हम लोग एजुकेशन में ही आगे ज्यादा रहे
1: बहुत
0: रादर देन
1: बढ़िया,
0: म्यूजिक की।
1: बहुत बढ़िया। वैसे श्वेता जी, आप कहाँ को बिलोंग करते हो एग्जैक्टली? आपके मतलब पुरखे हुए, पिताजी हुए, या वो कहाँ के थे? बेंगलोर के ही?
0: नहीं, मेरे पिताजी कानपुर एंड मेरी मदर लखनऊ की थी, लेकिन मैं बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली हूँ। मैंने बचपन अपना दिल्ली में ही गुजारा है,
1: वाओ,
0: बाद
1: ये तो
0: बैंगलोर शिफ्ट हो गए।
1: देखे क्या होता है ना कि ये ऊपर से इशारा सा हुआ मुझे, पता नहीं क्यों मेरे को लगा कि मैं आपसे पूछ लूं, तो मैंने पूछा। और अब आपको जानकर बहुत आश्चर्य भी होगा, खुशी भी होगी कि मैं खालिस कनपुरिया हूं। मैं कानपुर में ही पैदा
0: वाह,
1: हुआ, मेरे मम्मी पापा अभी भी वहीं रहते हैं।
0: दैट्स ग्रेट।
1: चलिए, बहुत बढ़िया। तो बहुत बढ़िया दोस्तों, आपने जाना कि जब श्वेता जी छोटे बच्चे थे तो वो क्या सोचते थे, संगीत की तरफ उनका प्यार हमेशा से था। आइए आगे बढ़ते हुए एक प्यारा सा गीत सुने, फिर आगे बातचीत शुरू करते हैं श्वेता जी से। लीजिए, पेश खिदमत है।

0: बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो ठीक है, आपने कहा कि बचपन से ही आपको संगीत का शौक था, बचपन से ही आप संगीतज्ञ बनना चाहते थे या गायक गायक बनना चाहते थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि घर में कैसा मतलब पढ़ाई का माहौल था, वो होना भी चाहिए। मेरा पर्सनली मानना यह है, किसी भी तरीके का माहौल आपकी प्रतिभा को दबा नहीं सकता। नथिंग कैन एक्चुअली हाइड योर टैलेंट, यू सर्टनली सर्टनली विल कम अप। तो छोटे से लेकर बड़े तक आते आते आते आते जब तक जब आपने अपनी गायकी शुरू कर दी, प्रॉपरली गाना गाना शुरू कर दिया, मे बी इन कॉलेज और मे बी जब आपको स्टार मेकर मिला होगा या जब भी, तो जब आपने गाना शुरू किया, मैं आपको थोड़ा सा इंस्टिगेट करूंगा, थोड़ा सा आपको पुश करूंगा ये सोचने के लिए कि कब आपने गाना शुरू किया था। तो बट क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है आपको किसने मोटिवेट किया कि बेटा तुम्हारी आवाज अच्छी है, तुम गाते हो, अच्छा गाते हो, या किसी फ्रेंड ने कहा हो कि श्वेता यू आर अ गुड सिंगर, प्लीज कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। तो कौन था वो जिसने आपको मोटिवेट किया?
1: फ्रेंड्स का तो नाम मैं बाद में लूंगी और पेरेंट्स का भी नाम मैं बाद में लूंगी, लेकिन सबसे पहले जिसने मुझे संगीत के लिए प्रेरित किया वो थे मेरे टीचर्स। स्कूल में मैं गाती थी एंड मेरे टीचर्स मुझे बहुत एडमायर करते थे और वो मुझे बहुत कहते भी थे कि श्वेता तुम अपना भेजो वॉइस सैंपल कहीं पर, यू विल डेफिनेटली बी कंसीडर्ड। लेकिन बस मैंने जैसा आपको बताया उस समय ऐसा नहीं हो सका। तो उसके अलावा मेरे फादर भी अच्छा गाते थे और मेरी मदर भी इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करती थी, हारमोनियम बजा लेती थी। लेकिन तो फिर पिताजी और उसके अलावा फिर मेरे फ्रेंड्स थे। हाँ, बाद में लेटर ऑन लाइफ में जब मैं प्रोफेशनल वर्ल्ड में आई तो मेरे जितने भी कोलीग्स थे और जो मेरे मैनेजर्स या मेरे हेड्स थे वो सभी मुझे बहुत सिंगिंग को लेकर एडमायर किया करते थे। तो मोटिवेशन तो सभी से मिला। उसके बाद SM पे गए, स्टार मेकर पे भी गए तो बहुत लोगों ने मुझे एडमायर किया। तो हाँ, मुझे मोटिवेशन तो जरूर मिला।
0: ओके,
1: इन सभी से।
0: तो लेकिन प्लीज मेरे को बताइए ना, किसी एक व्यक्ति का नाम तो लीजिए। आपने कहा सबसे पहले आपके टीचर्स ने आपको अप्रिशिएट किया और मोटिवेट किया, तो जस्ट गिव मी अ नेम।
1: मैं अपने टीचर्स में जिनका नाम लूंगी, एक नरूला सर थे, हमारे फुल नेम तो इतना ध्यान नहीं, नरूला सर हुआ करते थे, वो मेरी बहुत तारीफ करते थे।
0: तो दोस्तों हम लोग इसको ऐसे ही लेते हैं, नरूला सर ने दरअसल श्वेता को मोटिवेट किया, उनको इंस्पायर किया, इंस्टिगेट किया कि बेटा गाओ गाओ गाओ। तो चलो वहां से इनकी एक सेकंड के लिए कह लें गायकी की शुरुआत हुई। कंट्रीब्यूट तो हर व्यक्ति ने किया, लेकिन अगला गीत हम श्वेता जी का निरोला साहब को डेडिकेट करते हुए पेश करना चाहते हैं। आइए दोस्तों सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: बहुत बढ़िया श्वेता जी, बहुत बढ़िया। उसके बाद स्टार मेकर आ गया, मजा आ गया। मैं डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड के डेवलपमेंट को पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता हूं, दरअसल मैं पुराने ख्यालात का आदमी हूं ना, लेकिन स्टार मेकर जिसने भी बनाया या एसम्यूल जिसने भी बनाया, मैं उनको जरूर जरूर धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनकी वजह से इतने सारे हिंदुस्तान के टैलेंट्स हमारे सामने आ गए, वरना तो कुछ थे दो तीन वही गा रहे थे। तो अभी आज हम आपकी गायकी सुन पा रहे हैं उनकी वजह से, बहुत खूब। तो स्टार मेकर पर आपने गाना शुरू किया
1: जी,
0: स्टार मेकर पर गाना खाने के बाद, मतलब जैसे आपने गाना शुरू किया तो आपको कई खट्टे मीठे एक्सपीरियंसेस आई एम श्योर हुए होंगे, कभी सुर नहीं बैठा होगा, कभी ताल नहीं बैठी होगी, कभी म्यूजिक आगे, कभी आप आगे, ये सब चलता रहा होगा। फिर धीरे धीरे धीरे धीरे आपकी और स्टार मेकर की दोस्ती हो गई होगी और फिर दोनों साथ में चल पड़े हवा के साथ साथ, ऐसे ही कुछ। लेकिन आप जब स्टार मेकर पर गाते हो तो जाहिर सी बात है प्रैक्टिस हो गई आपको, फिर भी आप क्या कोई रूटीन में एवरी सिंगल डे कोई प्रैक्टिस करते हो, जैसे सिंगर्स रियाज करते हैं ना, सो डू यू डू समथिंग एंड इफ इट ऑल? क्या
1: टाइम तो कम मिलता है, लेकिन मैं थोड़ा रियाज जरूर करती हूँ, नॉर्मली खरज का रियाज एंड कुछ अलंकार या सरगम का रियाज मैं जरूर करती हूँ। इसके अलावा कुछ ऐसे हिंदी सॉन्ग्स जो कॉम्प्लेक्स हिंदी सॉन्ग्स हैं उनका उन पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करती हूँ, तो यही मेरे बेसिकली डेली रूटीन।
0: वाओ दोस्तों, आपने सुना कि श्वेता जी ना कुछ टेक्निकल टर्म्स यूज कर रही हैं, इसका मतलब है कि उनको संगीत के क्लासिकल साइड की जानकारी भी है। अब या तो उन्होंने सीखा है या किसी ने उनको सिखाया है, क्या हुआ था श्वेता जी, आपने सीखा या किसी ने सिखाया?
1: हाँ, सीखना तो शुरू किया, बहुत देर में शुरू किया, पहले तो वैसे ही गाती रही कई साल तक। उसके बाद जी हाँ, मेरे पिताजी ने मुझे बोला कि एक जगह जाके सीख लो, तो मैं सीखना थोड़ा शुरू किया। लेकिन बेस्ट पार्ट इज कि जब मेरा मैरिज हो गया उसके बाद मेरे फादर इन लॉ ने मुझे बोला कि व्हाई डोंट यू लर्न प्रॉपरली व्हेन यू आर सिंगिंग सो नाइसली, तो फिर मैंने सीखने जाना शुरू किया एंड फिर मैंने डिग्री भी की अपना म्यूजिक में।
0: अब ये बात हुई ना, देखिए ये चीज तो आपने नहीं बताई थी, ये चीज निकल के आ रही है कि श्वेता जी को, श्वेता जी ने रादर ऑफिशियल प्रॉपर म्यूजिक की शिक्षा ली हुई है, तो जाहिर से बात है उनकी गायकी और बेहतर हो जाती है, क्योंकि टेक्निकल समझ में आए तो उसके हिसाब से हम क्या नहीं करना है उसको रोक लेते हैं और क्या करना है वो करते हैं, उसी वजह से गायकी इतनी खूबसूरत हो जाती है। तो चलिए ना, इसी खूबसूरत सी गायकी का आनंद उठाते हुए दोस्तों पेश करता हूं दूसरा, तीसरा, एक और गीत श्वेता जी का ही गाया हुआ।

0: ठीक है श्वेता जी, अब जाहिर सी बात है, ओवर द पीरियड ऑफ सो मेनी ईयर्स यू हैड बीन सिंगिंग, देन यू लर्नड, आपके फादर ने भी, आपके फादर इन लॉ ने भी आपको सपोर्ट किया एंड यू लर्नड, फिर कभी स्टेज पर जाने का मौका मिला? और अगर आप गए तो आपकी क्या फीलिंग थी सबसे पहली बार जब आप स्टेज पे गए?
1: देखिए, स्टेज पर जाने का मौका तो बचपन से बहुत बार मिला, ना केवल सिंगिंग और अदर ड्रामा और अदर कॉम्पिटिशन्स या अदर इवेंट्स भी होते थे स्कूल लेवल पर एंड कॉलेज लेवल पर भी। लेकिन एक चीज जो मुझे बहुत परेशान करती थी वो था स्टेज फियर, और स्टेज फियर मुझे बहुत समय तक रहा। इवन स्टार मेकर पे तो हम किसी को देख भी नहीं सकते, तब भी मुझे फियर होता था गाने के लिए। जी हाँ, पर धीरे धीरे मैंने अपने आप को उस तरीके से समझाया कि अगर मैं कुछ गाऊं तो जो भी मेरा गाना सुने उसको दिल में एक शांति का अनुभव होना चाहिए, उसका दिल प्रफुल्लित होना चाहिए, खुश होना चाहिए। तो और वो तभी हो सकता है जब हम स्टेज फियर रिमूव कर दें, अपने आप को बिल्कुल टेंशन फ्री होकर गाएं, स्ट्रेस फ्री होकर गाएं। तो ये सोच अपने दिमाग में रखते रखते धीरे धीरे अब मैं स्टेज फियर से बाहर आ रही हूँ। हाँ, पर स्टेज फियर होता तो है, बट एक बार गाना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे ठीक हो जाता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, स्टेज फ्रेट, उससे डिटैच होना, उससे आजाद हो जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी कुछ ही दिनों पहले किसी टैलेंट से बात हो रही थी, तो और उनसे ही नहीं, उनसे पहले कई सारे टैलेंट्स ने ये बात खुल के कही कि अरे यार डरो मत, ये मत सोचो कि कोई जज करेगा आपको कि अरे क्या गा रहा है, मस्त होके गाओ, जो होगा देखा जाएगा। अरे भाई आप अपने लिए गा रहे हो ना, किसी दूसरे को सुनाने के लिए थोड़ी गा रहे हो, यू आर एंजॉयिंग योर ओन म्यूजिक। बहुत बढ़िया। और वैसे भी स्टार मेकर पे जब तक आप वीडियो ऑन ना करें कौन देख रहा है आपको, है ना? अरे मस्त होके गाइए, सेकंड गाना अच्छा नहीं लगे तो डिलीट कर दीजिए। बिल्कुल ठीक बात है। अभी कुछ ही दिनों पहले मैं बड़ा प्रभावित हो गया आप सब लोगों से, है ना, वो कहते हैं ना कौवा चला हंस की चाल, मैं चल पड़ा, मैं कहा मैं भी गाऊंगा, स्टार मेकर डाउनलोड किया, गाया, इतना हॉरिबल था कि मैंने ऐप ही अनइंस्टॉल कर दिया, हिम्मत ही नहीं हुई मेरी आगे बढ़ने की।
1: अरे बाप रे।
0: बट नोबडी जज्ड मी, यू नो हाउ ब्यूटीफुल। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हुए, अभी तो श्वेता जी की मधुर आवाज में उनके प्यारे से गीतों का आनंद उठाते हैं। फॉरगेट अबाउट मी, लिसन टू श्वेता जी।

0: बहुत बहुत खूब। चलो थोड़ा सा आपकी पसंद को जानने की कोशिश करते हैं, तो हमें पता चलेगा कि आपके गीतों में जो ये मधुरता आ रही है भला कहां से आ रही है। देखो क्लासिकल सिंगिंग लर्निंग तो हो गई, पूरे म्यूजिक वर्ल्ड में, दुनिया में, संगीत की दुनिया में आपके सबसे देखो ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है श्वेता जी, मुझे मालूम है इसका बड़ा जेनरिक आंसर आता है, सबसे पसंदीदा गायक और गायिका कौन है और क्यों, व्हाई?
1: गायिका और गायिकाओं के नाम में मैं एक तो नहीं दो नाम तो जरूर लेना चाहूंगी, क्योंकि वो दो नाम एक ही हैं और मेरे ख्याल से ये सभी लोग जानते हैं कि वो दो नाम कौन से हैं
0: जी।
1: मेरे ख्याल से सभी जानते हैं और आप भी शायद जानते ही होंगे कि मैं बात कर रही हूँ लता जी और आशा जी की, जिन्हें हम दो अलग नहीं मान सकते, वो दोनों उन दोनों की ही आवाजों का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। और तो गायिकाओं में तो लता जी और आशा जी, और गायकों में किशोर एंड मोहम्मद रफी साहब, ये मेरे फेवरेट्स हैं।
0: तो आगे बढ़कर श्वेता जी ये बताइए ना क्यों, व्हाई?
1: क्योंकि एक तो मुझे लगता है इनकी आवाजों में वो गहराई थी और सुर ताल तो ठीक है, लेकिन इनके जो अभिव्यक्ति थी संगीत में, जो जिस तरीके से गाते थे, जो इनकी भावनात्मक गहराई हुआ करती थी इनके गीतों में, उससे हम अपने आप को अटैच्ड फील करते हैं, हमें लगता है कि जैसे ये हमारी रूह की आवाज है, तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं इन लोगों से ज्यादा प्रभावित हुई और
0: ये बिल्कुल
1: इसलिए लोग मेरे आइडल्स बने।
0: यस, ये बात देखिए मेरे को बिल्कुल समझ में आती है कि अगर मोहम्मद रफी साहब गाते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे दिल से आवाज निकल रही है। ठीक है, मेरी आवाज मोहम्मद रफी जैसी नहीं है ना, मैं मोहम्मद रफी जैसा गा सकता हूँ, नेवर एवर, लेकिन ऐसा लगता था कि उनकी जो आवाज की मिठास है वो बहुत ज्यादा भावुक करके जाती है।